मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 21 जून 2026, 5:57 होने को हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने को है समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। आज मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व करेंगे। इस कार्यक्रम में देश विदेश से लाखों लोगों के वर्चुअल माध्यम से जुड़ने की संभावना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक विशेष योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम में 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से सदर इलाके के गैरिसन ग्राउंड में होगा। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वीं

0: दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति आज कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जनजातीय समुदाय चीतों की देखभाल करने वाले कर्मियों और उद्यान कर्मचारियों से मुलाकात भी करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण करेंगे। इनका विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दूनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रे तटीय रक्षा के लिए टारपीडो रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा है कि इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में हो रही है। परीक्षा अंग्रेजी और 12 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वे जयपुर में खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। श्री वैष्णव उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा विकसित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। श्री सोनोवाल ने कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की अनुचित टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। फीफा विश्व कप फुटबॉल में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और FM पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:05 हुए हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। इसमें पहले सुनिए देश वंदना समूह स्वर में।

पंडित भीमसेन जोशी के गाए इस भजन के बाद लीजिए अब सुनिए देवकी पंडित के स्वर में कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

0: इस भजन के साथ ही आज की वंदना संपन्न हुई। ये आकाशवाणी रायपुर है, अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:30 होने को हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में पश्चिम बंगाल के रेड रोड से 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सामूहिक योग की ऑफ ट्यूब कमेंट्री आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित सामूहिक योग प्रदर्शन का आंखों देखा हाल सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं नीलम मलकानिया हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में। आमंत्रित विशेषज्ञ हैं परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। आइए आपको योग दिवस कार्यक्रम में ले चलते हैं।
2: नमस्कार, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी खेल प्रेमियों को, स्वास्थ्य प्रेमियों को और योग प्रेमियों को बहुत सारी शुभकामनाएं और इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत। आज पूरा विश्व 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरी

0: मानवता आज एक सुर, एक ताल और एक श्वास में बंधी नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में रेड रोड पर विशेष आयोजन हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में यहां सामूहिक योग प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी स्वयं योगाभ्यास कर पूरे देश का नेतृत्व करेंगे। आयोजन का विवरण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कॉमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में अपने दो विशेषज्ञों का भी स्वागत कर रही हूं। हमारे साथ हैं परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनेश सिन्हा और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार।
2: थैंक यू, नमस्ते। एंड वी कैन सी दैट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री रविंद्र नारायण रवि एंड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी हैव अराइव्ड एट द आइकॉनिक रेड रोड एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल बी लीडिंग द नेशन टुडे एंड ही विल personally be performing asanas at the iconic Red Road on the occasion of the 12th International Day of Yoga. And the Red Road is chock-a-block with people from all walks of life, and it is indeed, Neelam, a very momentous day for all the people who have assembled here at Red Road to be performing asanas to be led by the Honorable Prime Minister. And there's a huge crowd we can see from the one end of Red Road till the Eden Gardens. It is chock-a-block with people. And the theme of this year's International Day of Yoga is healthy aging. And we can see that everyone is assembled here and they're looking forward to join the Honorable Prime Minister and perform asanas.
0: 21 जून 2026 की इस सुहानी और अलौकिक सुबह में कोलकाता की इस ऐतिहासिक भूमि पर हुगली नदी के पावन तटों की गवाही में भव्य तैयारियां की गई हैं आज के आयोजन के लिए। यहां से माननीय प्रधानमंत्री जी इस वैश्विक उत्सव का नेतृत्व करेंगे। इस बार की थीम है योग फॉर हेल्दी एजिंग। बढ़ती उम्र में भी ऊर्जावान और गतिशील बने रह सकते हैं हम, योग के साथ स्वस्थ रह सकते हैं। और आपको बताएं कि बहुत विशाल मंच एक यहां पर बनाया गया है जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी और साथ ही अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति है। पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, साथ ही माननीय गवर्नर साहब हैं और यहां पर अब संबोधन हो रहा है।
2: श्री प्रताप राव जाधव, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष।
0: विशाल जनसमूह इस संबोधन को सुनता हुआ।
3: जिन्होंने योग को पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाया, ऐसे हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल श्री आर्यन रवि जी, पश्चिम बंगाल के ओजस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी, आदरणीय सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित गणमान्य जन, योग प्रेमियों, मीडिया के मित्रों एवं लाइव टेलीकास्ट के द्वारा हमारे साथ पूरे दुनिया से जुड़े हुए करोड़ों देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित करवाकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जो अभूतपूर्व कार्य शुरू किया, वह अब 180 से अधिक देशों में मनाए जाने वाला एक वैश्विक स्वास्थ्य जन आंदोलन बन गया है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संस्करण की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग है, जिसमें हमने योग 365 जैसा एक अनोखा अभियान शुरू किया है, जिसमें नागरिकों के लिए योग केवल एक दिन का उत्सव न रहकर योग को पूरे वर्ष अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाने को प्रेरित करता है। इस वर्ष के योग दिवस के सेलिब्रेशन के लिए आयुष मंत्रालय ने काफी नए

0: इनिशिएटिव लिए है जिसमें हमने यूट्यूब पर योग लाइव स्ट्रीम करके सबसे अधिक लोगों की सहभागिता का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। हवाई यात्रा में योग के लिए एक नया प्रोटोकॉल विकसित किया गया। 13 जून से 20 जून तक माँ गंगा के तट पर गंगोत्री से गंगा सागर तक 8 अलग अलग घाटों पर योगाभ्यास करके योग श्रृंखला का आयोजन किया गया। कोलकाता में दौड़ से ध्यान का कार्यक्रम आयोजित किया गया और कोलकाता में ही ड्रोन और लाइट शो का भी भव्य आयोजन किया गया। आज बहुत समय के बाद बंगाल की इस धरती से योग की गूंज पूरे विश्व भर में सुनाई दे रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा आयुष मंत्रालय भारत की प्राचीन विरासत वाली पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का विस्तार करने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए इस वर्ष के केंद्रीय बजट में आयुष मंत्रालय को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है, जिसमें 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की घोषणा भी शामिल है, जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने इस वर्ष के योग दिवस के अभूतपूर्व आयोजन के लिए अपने नेतृत्व में प्रशासन के साथ अपना पूरा योगदान दिया। अंत में मैं यह विश्वास व्यक्त करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी व्यक्तित्व और उनके गतिशील नेतृत्व में योग और आयुष की पताका पूरी दुनिया में लहराएगा तथा भारत को विश्व गुरु बनाने में योग और आयुष की महत्वपूर्ण भूमिका भी सिद्ध हो सकेंगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई। वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे योग।
1: माननीय केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रताप राव गणपत राव जाधव ने अभी सभी का यहां पर स्वागत किया और साथ ही आयुष मंत्रालय ने योग को बढ़ावा देने के लिए जो पहल की है उनके बारे में बताया। हम आपको बताएं कि माननीय राज्यपाल पश्चिम बंगाल श्री आर एन रवि, माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी और प्रधानमंत्री जी स्वयं आज के दिन के लिए विशेष तौर पर तैयार किए गए परिधान में इस समय है। योग को परिलक्षित करती हुई टी शर्ट्स हैं और साथ ही पतलून पहनी है और जो भी योगाभ्यर्थी यहां पर बैठे हैं, योग साधक यहां पर बैठे हैं रंग बिरंगे मैट्स पर, वो बेहद उत्साहित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में उल्लास है लेकिन साथ ही अनुशासन भी है।
2: यस एंड एवरी एंथुजियास्ट हियर एंड नाउ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी।
3: वंदे समवेत सुनागरिक भद्रमंडली, आमादेर मध्य उपविष्ट हुएछेन विश्वेर सबचेये जनप्रिय नेता भारतवर्षेर यशस्वी प्रधानमंत्री एवं जार हात धरे सिटी अफ जय एई कल्लोलनी तिलोत्तमा कलकाता तथा पश्चिमबंगे जो कम्स टू होम जो बंगे फिरे एलो से माननीय नरेंद्र मोदी जी के 11 कोटी पश्चिमबंगवासीर पक्ष थेके राज्य सरकारेर पक्ष थेके हृदय थेके स्वागत अभिनंदन श्रद्धा कृतज्ञता एवं प्रणाम निवेदन करछि। महामहिम राज्यपाल माननीय आर एन रवि जी रयेछेन, भारत सरकारेर माननीय स्वाधीन दायित्वप्राप्त राष्ट्रमंत्री प्रताप राव जाधव जी रयेछेन एवं सम्मानित व्यक्तिबर्ग मीडियार बंधुरा एवं योगप्रेमी जनगण रयेछेन। माननीय प्रधानमंत्री नेतृत्वे एकटु परेई एकटि सुविशाल बृहत् ऐतिहासिक कार्यक्रम होते चलेछे। इतिमध्ये कार्यक्रमेर आज के जे आंतर्जातिक योगा दिवस जा माननीय प्रधानमंत्री गोटा पृथ्वीते छड़िए दिएछेन

एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में, यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत। स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है। साथियों, योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है। इसी बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग अलग रहने में नहीं बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल भाव है। महर्षि अरविंद भी कहते थे, हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या ना हो। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। साथियों, योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है। योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव जीवन के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है।

इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। फ्रेंड्स, व्हेन वी स्पीक ऑफ योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इट मींस दैट वी कैन वर्क टू एंश्योर दैट एज डज नॉट रिड्यूस ह्यूमन पोटेंशियल। योग कैन हेल्प ह्यूमन लाइफ टू एस्पायर फॉर कॉन्स्टेंट ग्रोथ। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर फ्लेक्सिबल एट 40 देन वी वेर एट 20। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर एनर्जेटिक एट 50 देन वी वेर एट 30। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर रेजिस्टेंट टू लाइफस्टाइल डिसीज एट 70 देन वी वेर एट 50। दिस इज वेर योगा कैन हेल्प अस। इट हेल्प्स अस ट्यून अवर बॉडीज टू बी फ्लेक्सिबल। इट कीप्स अवर एनर्जी लेवल हाई। इट ऑल्सो हेल्प अस मेंटेन अ काम स्ट्रेस फ्री लाइफ एंड हेल्प टू कीप लाइफस्टाइल डिजीज अवे। मोर ओवर विथ रेगुलर प्रैक्टिस योगा टीचिज अस टू रिमेन लाइफ लॉन्ग लर्नर्स ऑफ अवर ओन बॉडीज एंड माइंड्स। द मोर वी नो अबाउट अवर सेल्व्स द बेटर वी कैन मैनेज अवर सेल्व्स। दैट इज व्हाई योगा फॉर हेल्दी एजिंग, दिस थीम मस्ट बी सीन एज वन फॉर पीपल ऑफ ऑल एजेस, नॉट जस्ट फॉर द एल्डरली। साथियों, गीता में भगवान कृष्ण ने योग के विषय में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुखः। अर्थात संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रियाओं और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। ये संतुलन ही योग का आधार है। यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है। लेकिन ज्यादातर लोग आज इस आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन से ही जूझ रहे हैं। बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है उनको। योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है। और जब हम

0: हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध, ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है, इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है इतना ही नहीं है, योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करोड़ों लोग योग से जुड़ते हैं, लेकिन आज का ये दिन हमें अपने साझा संकल्प को फिर दोहराने का अवसर देता है। आइए हम संकल्प लें योग को केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रखेंगे, योग को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखेंगे, हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, इसी दिशा में इस वर्ष योग 365 योग 365 की पहल को भी आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत 100 दिन के ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अभूतपूर्व जनभागीदारी देखी गई है। 130 देशों के 30 लाख से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया है। साथियों, जब समाज स्वस्थ होगा तब राष्ट्र भी अधिक सक्षम, अधिक समृद्ध और आत्मविश्वासी बनेगा। मैं इसके लिए मैं सबके लिए कामना करता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: That was the Honourable Prime Minister Shri Narendra Modi addressing the gathering at Red Road, Calcutta on the occasion of the International Day of Yoga 2026. And lakhs of yoga enthusiasts have assembled here at the Red Road Neelam, and everyone is looking forward to the Honourable Prime Minister who will lead in the day's yoga आसनास सेलिब्रेशंस हियर टुडे।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी विशाल जन समूह को संबोधित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता से स्वागत का उल्लेख किया, साथ ही महर्षि अरविंद को भी याद किया। और महर्षि अरविंद ने कहा था, हमारा पूरा जीवन योग है, हमें इसका बोध हो या ना हो, ये हमें फिर से याद दिलाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योग से हम ऊर्जावान रह सकते हैं, योग सबको जोड़ता है और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता है, योग से विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है।

0: आपको बताएं, ये जो विशाल जन समूह है, जहां जहां तक रेड रोड पर नजर जा रही है वहां योग साधक बैठे हैं और योग के प्रिंट वाली टी शर्ट्स पहनकर पूरी तरह से तैयार हैं, रंग बिरंगे मैट्स पर बैठे हैं अनुशासित रूप से। माननीय प्रधानमंत्री जी अब स्वयं योग कर पूरे देश का और इस वैश्विक आयोजन का नेतृत्व करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी योग वाली टी शर्ट पहनी है और साथ ही आपने बाटिक प्रिंट वाला एक स्टोल भी धारण किया है जिस पर कमल का फूल दमक रहा है। और योग साधक बेहद उत्साहित इस समय नजर आ रहे हैं क्योंकि स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी को वो योगाभ्यास करते हुए देखेंगे और सामूहिक योगाभ्यास का क्रम यहां पर शुरू होगा। एक एक कर आसन किए जाएंगे और हम सभी जानते हैं कि योग के जो आसन हैं वो न केवल शारीरिक रूप से हमें लाभ पहुंचाते हैं बल्कि वो मानसिक रूप से भी हमें बेहद शांत करते हैं, संतुलित करते हैं और आत्मिक रूप से भी हमें प्रकृति के साथ जोड़ते हैं। योग यानी शरीर का मन से जुड़ना और मन का आत्मा से, फिर आत्मा का प्रकृति से जुड़ना।
1: Yes, and the Honorable Prime Minister will be shortly arriving at the venue where he will be leading the countrymen in performing the yoga asanas here at the iconic Red Road. And as you rightly mentioned, Neelam, that the Honorable Prime Minister today made us all remember about the uniqueness of yoga.
0: Ji, aur is samay यहाँ पर सामूहिक प्रार्थना की जा रही है। ये हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी खूबसूरती कि हम विश्व शांति की कामना करते हैं, हम प्रार्थना के साथ किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। इस वक्त जितने भी योग साधक हैं सभी अपने अपने स्थान पर सुखासन में बैठे हुए हैं, नमस्कार मुद्रा में सभी के हाथ जुड़े हुए हैं और प्रार्थना इस समय यहाँ पर की जा रही है। हमारी संस्कृति जिसमें विश्व शांति की कामना है, साथ ही हम जड़ चेतन की शांति की कामना भी करते हैं, प्राकृतिक तत्वों की शांति की कामना करते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम सब एक ही हैं।
2: धीरे धीरे दोनों आंखों को खोलिए, आस्ते आस्ते दोनों चौके खुलून, दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए, दोनों हाथ के स्वाभाविक अवस्था ले आसुन, जिस स्थान पर आप बैठे उस स्थान पे खड़े हो जाइए।
0: मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं और योग साधक उन निर्देशों का पालन करते हुए अपने अपने स्थान पर योगाभ्यास शुरू कर रहे हैं। पंक्तिबद्ध तरीके से मैट्स बिछाए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन अब हो रहा है। योग साधकों के बीच
1: एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज जस्ट अराइव्ड and he will be going to the designated area and he has just arrived there and he will be performing the asanas from here and he is flanked by ordinary people from all walks of life here at the Red Road and we can see that the officials are now ready for the International Day of Yoga 2026 main celebrations at Red Road, Kolkata.
0: माँ काली का आशीर्वाद लिए स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसी विभूतियों का दर्शन इस भूमि में है। सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक विरासत है ये हमारे योगियों की, हमारे मुनियों की। विशेष तैयारियों के साथ आज यहाँ योगाभ्यास किया जा रहा है और इस समय ग्रीवा चालन का अभ्यास यहाँ पर किया जा रहा है। और जब हमारे यहाँ पर योग साधक सभी इस कॉमन प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं तो मैं प्रतिमा जी आपसे जानना चाहूँगी, ग्रीवा चालन इस समय हो रहा है, आप हमें इसका लाभ बताएं।
3: जी, ग्रीवा चालन जो है वो मानसिक लाभ भी देता है और साथ ही शारीरिक लाभ भी देता है। मानसिक लाभों की बात की जाए तो वर्तमान समय में जो तनाव से सभी लोग गुजर रहे हैं उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है
0: जी।
3: साथ ही जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उसको भी प्रिवेंट करता है और साथ में इसको के थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स भी हैं। और जितने भी ये आसन ग्रीवा संचालन में किए जा रहे हैं ये सभी के सभी हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करते हैं
0: जी।
3: और इसके अलावा जो और भी बेनिफिट्स हैं वो हमारे पूरे संपूर्ण जो संस्थान, नर्वस संस्थान है, नर्वस सिस्टम है,

0: तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं उसके
1: जी
0: लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि सारे जो भी क्रियाकलाप है हमारे दैनिक वो हम अपने ब्रेन के कारण ही संपन्न कर पाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। साथ ही हमारे जो हेड का सिर का वेट है
1: जी
0: उससे रिलेटेड जो हमारी मसल्स, आपने देखा होगा जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी गर्दन हिलना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए भी ये प्रिवेंट करता है, मसल्स को स्ट्रेंथन करता है।
1: जी, यानी हम नॉर्मल एक्सरसाइज करते हुए जिसे एक हल्का फुल्का वार्म अप मानते हैं उसके बहुत सारे लाभ हैं, ये हमें आपने अभी बताया। हम श्रोताओं को बताएं कि गर्दन को धीरे धीरे दाएं बाएं करना, ऊपर नीचे करना, ये ग्रीवा संचालन में आता है। ग्रीवा चालन इस आसन का नाम है और सूक्ष्म व्यायाम इन्हें
0: हाँ,
1: कहा
0: ये
1: जाता है।
0: सूक्ष्म यौगिक अभ्यासों में से है।
1: जी, और यहाँ पर सभी निर्देशों का पालन करते हुए हम देख पा रहे हैं कि जो योग साधक हैं उनके बीच माननीय मंत्रीगण तो है ही, गणमान्य अतिथि हैं, और साथ ही भारत में इस समय जो विदेशी मौजूद हैं हमारे वो अतिथि भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने हैं।
2: गुरुजी, मनीष सिन्हा जी, वी वुड ऑल्सो लाइक टू नो फ्रॉम यू अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द बिगिनिंग ऑफ दिस आसना।
3: यस, एक्चुअली आसन को हम इस तरह से समझें कि सीट ऑफ अवेयरनेस, हमारी चेतना हमारे शरीर को फॉलो करती है, हम चित्त से काया की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो ग्रीवासन है इसमें हम क्या होता है कि हमारी जो चेतना है, हमारी जो शरीर को चलाती है सूक्ष्म रूप से,
1: जी
3: ये जागृत होती है और उसकी आसन वहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। मतलब उसकी इंटेंशन, उसकी पहुँच, उसकी सेंसेशन आत्मा की और चेतना की, ये यहाँ से शुरू होती है और ये बहुत ही रियली बहुत ही फायदेमंद है जब हम आसन शुरू करते हैं तो।
1: जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी मुनेश सिन्हा जी कि एक आध्यात्मिक गुरु के दृष्टिकोण से आप हमें बताएं योग का वास्तविक और गहरा अर्थ क्या है आध्यात्म में।
3: योग पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्म, पूरा विश्व, पूरा जगत एक यौगिक स्थिति को जी रहा होता है, बस
1: जी
3: जानता नहीं है ना। अगर हम कहते हैं, जब हम अपने अंदर के असूक्ष्म, जो हमारी जो अव्यक्त स्वरूप है, उससे जब हम जुड़ जाते हैं तो हम व्यक्त हो जाते हैं। इसीलिए व्यक्ति कहा जाता है ना,
1: जी
3: जितने लोग हैं उनको व्यक्ति कहा जाता है। इसलिए व्यक्ति कहा जाता है कि वो अव्यक्त को व्यक्त कर रहे हैं। तो अव्यक्त को व्यक्त करने की जो प्रोसेस है, आप जब भी हम योग करते हैं अपने स्वयं से जुड़ते हैं, किससे जुड़ रहे होते हैं, जोड़ कौन रहा होता है, हमारी चेतना, हमारी
1: जी
3: चेतना हमारी तीनों शरीर को अलाइन कर रहा होता है, हमारा स्थूल शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा कारण शरीर। जब हम इन तीनों को अलाइन करते हैं, जब हम तीनों के साथ जुड़ जाते हैं, तो अवेयरर ऑफ द अवेयरनेस, एक्सपीरियंसर ऑफ द एक्सपीरियंस, ये हमें जो हमारी अव्यक्त स्वरूप है वो जागृत होनी शुरू हो जाती है। फिर
1: जी
3: उसका प्रेजेंस हमारे टोटालिटी पे रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है। आप चलते फिरते उठते बैठते आप यौगिक एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, इससे कलेक्टिव कॉन्शसनेस रेज होती है, प्रकृति की जागृति होती है। और आज इस पूरे विश्व में जिस भी हम संघर्ष से जुड़ रहे हैं, इसका मतलब ही है कि हम योग से बहुत दूर हो गए हैं, हमारी कलेक्टिव कॉन्शसनेस हमसे बहुत दूर हो गई है। आज इस पूरे समाज को, इस पूरी जगत को, इस पूरे वातावरण को योग की बहुत बहुत बहुत जरूरत है।
1: जी, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आज विश्व की आवश्यकता है योग, तो इस समय यहाँ पर स्कंध चालन का अभ्यास किया जा रहा है। प्रतिमा जी, आपसे जानना चाहेंगे इसके लाभ क्या हैं।
0: स्कंध चालन जो है ये पूरा थोरेसिक कैविटी पर काम करता है, और थोरेसिक कैविटी जो है उसके अंदर हम सभी को पता है कि लंग्स सिचुएटेड होते हैं, और जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं उधर काम हो रहा होता है, और लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी काम करता है, और बहुत सारे अन्य बेनिफिट्स भी इसके होते हैं।
1: जी, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर उम्र के योग साधक उपस्थित हैं, युवा भी हैं तो प्रौढ़ भी नजर आ रहे हैं इस विशाल जनसमूह में। और यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो कि योग को एक विषय के रूप में पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि योग जो है अगर हम कहते हैं कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा

0: ना चाहिए, तो योग में करियर भी है। और ये हम प्रतिमा जी को देखकर यहाँ समझ सकते हैं कि आपने अलग-अलग संस्थानों में कार्य किया है, योग को बढ़ाया है, विभिन्न पदों पर आप रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी प्रतिमा जी, योग में जो करियर है उसके क्या ऑप्शंस हैं हमारे युवाओं के लिए, आप बताएं।
1: योग में करियर के ऐसे जो ऑप्शंस हैं वो डिग्रीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं।
0: जी
1: इसमें कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हैं जो हमारे यहाँ से भी चले जाते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं,
0: जी
1: एमएससी है, एमए है और पीएचडी है।
0: जी
1: तो इसमें जिस तरह की आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी उस तरह से आपका करियर आप डिसाइड कर सकते हैं,
0: जी
1: वेलनेस इंस्ट्रक्टर के रूप में और योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, योगा थेरेपिस्ट के रूप में, वेलनेस कोच के रूप में, योगासन कोच के रूप में आदि।
0: जी मैं गुरु मुनेश सिन्हा जी आपसे जानना चाहूंगी, युवाओं में आजकल तनाव, अवसाद और अकेलापन बहुत बढ़ गया है, जीवन शैली का हिस्सा होता जा रहा है अकेले रहना, योग और ध्यान उनके इस आंतरिक खालीपन को भरने में कैसे मदद कर सकता है?
2: बहुत बढ़िया। एक्चुअली क्या है कि जैसे जैसे हम सत्य से दूर हो जाते हैं
0: जी
2: तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। जैसे कि आप अपने घर से जब दूर हो जाते हैं तो आप घर वापस आने की सोचते हैं, जितने हम घर से दूर चले जाएंगे हम उतने स्ट्रेस में रहना शुरू करेंगे।
0: जी
2: तो आज पूरी दुनिया की ये जो हालत है, हम अपने ही मूल स्वरूप से, अपने ही सोर्स से, अपने ही घर से, अपने ही कहते हैं अस्तित्व से इतने दूर चले आए हैं कि इतने दूर चले आए हैं कि अब हमें वापस आने के लिए भी एक लंबी दूरी की तय करनी पड़ेगी। कहते हैं जब यू टर्न होता है, यू टर्न आप लेना चाहते हैं, आपकी जीवन की स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि आप यू टर्न लेते लेते भी कई किलोमीटर आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए आज के युवा को खास करके ये मानना होगा, जानना होगा कि उसकी सच्चाई क्या है, उसके व्यक्तित्व की सच्चाई क्या है, उसके अस्तित्व की सच्चाई क्या है। जब हम अपने सत्य से जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे सोल की तरफ, हमारे टोटालिटी की तरफ जुड़ जाता है। आज देखना कि सत्य और सत्य में फर्क है। सत्य सबके अलग अलग होते हैं लेकिन पूरे विश्व का सत्य एक ही होता है।
0: जी
2: यस
0: और इस समय यहाँ पर ताड़ासन का अभ्यास किया जा रहा है, दोनों हथेलियों को आपस में मिलाकर ऊपर की ओर दोनों हाथ उठाए गए और अपने पंजों पर सभी सीधे खड़े हुए। संतुलन में तो ये आसन मदद करता ही है लेकिन साथ ही हमारी जो मेरुदंड है उसे भी एकदम सीधा कर देता है। और ताड़ के पेड़ की तरह हम सीधे खड़े हों तो ताड़ासन कहा जाता है और बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए ये बेहद फायदेमंद है। प्रतिमा जी सही कहा मैंने?
1: बिल्कुल 100% आप सही कह रहे हैं
0: जी।
1: एडोलेसेंट स्टेज वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये आसन।
0: जी
3: यस एंड एज यू वर मेंशनिंग नीलम दैट टुडे इज द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा एंड द थीम ऑफ दिस ईयर्स इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज योगा फॉर हेल्दी एजिंग एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो मेंशनड इन हिज स्पीच दैट इन द 1920s परमहंस योगानंद सेट अप द योगा सेंटर इन कोलकाता एंड ऑल्सो एट अदर प्लेसेस एंड टुडे द पॉपुलैरिटी ऑफ योगा हैज spread far and wide. In the 132nd episode of Mann Ki Baat, the Honorable Prime Minister has said that the attraction of yoga is rising across the world. And he also highlighted the work of Mr. Almis in popularizing yoga in Djibouti, Africa through his Arvind Yoga Center. Similarly, there are many such yoga centers now even in South America. So the popularity of this gift of India, this gift of healthy life for everyone is indeed a gift for humanity by India to the world.
0: जी, यहां पर अभी पादहस्तासन का अभ्यास किया गया और उसके बाद अर्धचक्रासन का अभ्यास अभी किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि जमीन पर जब पीठ के बल लेटकर हम पैर और हाथों के बल अपने पूरे शरीर को ऊपर उठाते हैं तो चक्रासन होता है, लेकिन जब खड़े होकर हम केवल थोड़ा सा झुकते हैं पीछे की तरफ तो अर्ध चक्रासन है, हमारे मेरुदंड को लचीला बनाने के लिए। और जैसा कि अभी कौशिक जी ने कहा कि ये भारत का एक अनुपम उपहार है विश्व को, हम अब तक गर्व करते हैं कि हमने दुनिया को शून्य दिया है, हमारा दर्शन विश्व में अलग अलग देशों को आगे बढ़ने में प्रेरणा देता रहा है। और माननीय प्रधान

0: प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से, उनके नेतृत्व से और उनकी प्रेरणा से अब हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने दुनिया को योग भी दिया है और अब ये कागजों में भी दर्ज हो चुका है, जिसे कि यूनेस्को और यूएन ने भी माना है। यहाँ पर अभी त्रिकोणासन का अभ्यास होता हुआ त्रिकोण जैसी आकृति बनाई जा रही है शरीर से। प्रतिमा जी, त्रिकोणासन के लाभ क्या क्या हैं?
1: ये खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यासों में शामिल है। ये घुटने और थाई मसल्स और साइड का जो फैट होता है और मसल्स होते हैं वहाँ काम करता है, साइड फैट को भी रिड्यूस करता है। साथ में जो स्पाइन है, स्पाइन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और जो गर्दन की नर्व्स हैं उनको भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है, मसल्स को भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है। और ये इवन आईज के लिए भी बेनिफिशियल आसन कहा जाता है।
0: ये मेरे लिए भी चौंकने वाली बात है कि त्रिकोणासन से आंखों को लाभ होता है, क्योंकि मैं भी बचपन से योगाभ्यास करती आ रही हूँ, लेकिन नई जानकारी ये मुझे आपसे मिली है।
1: और ये साइटिका वाले लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल आसन होता है
0: जी। और हम यहाँ देख रहे हैं कि बेहद मनोयोग से सभी योग साधक जो हैं वो निर्देशों का पालन करते हुए एक के बाद एक आसन कर रहे हैं। यहाँ मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति इन योग साधकों के बीच है, सबसे बड़ी प्रेरणा यही है। और गुरु मुनेश जी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि जो साधक माननीय प्रधानमंत्री जी के नज़दीक बैठकर योग कर रहे हैं, जीवन भर की एक सुखद स्मृति उनके पास है, और अब भला कोई योग से दूर कैसे हो सकता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रेरित करें। और इस समय सभी योग साधकों के बीच आत्मीय भाव से माननीय प्रधानमंत्री जी चलते हुए और सभी के नज़दीक से होकर गुजर रहे हैं, सबको देख रहे हैं और प्रेरणा दे रहे हैं। और अभ्यर्थी भी हम देख रहे हैं कि बेहद उत्साहित दंडासन में इस समय सभी बैठे हैं, मेरुदंड को एकदम सीधा करके। और अब दंडासन से भद्रासन में सभी योग साधक।
2: एंड वी कैन आल्सो सी नीलम एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज going to many enthusiasts and volunteers who have come here, and he is interacting with them and he is just pepping them up. This shows that how much he cares for the well-being of the common people of this country. And this is, as you rightly mentioned, indeed a moment that everyone will cherish, and every person with whom the Honorable Prime Minister is interacting will carry this memory with him or with her forever in their lifetime.
0: Ji, bilkul. Aur ye jo aasan hai, इनके अगर हम लाभ की बात करें तो हर आसन का विशेष लाभ है। वैसे तो कहा जाता है कि योग में अगर आप सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो सर से लेकर पांव तक हमें लाभ उसके प्राप्त होते हैं, लेकिन फिर भी शरीर के विभिन्न अंगों के लिए अलग अलग आसन हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत से भी प्रतिनिधि उपस्थित हैं, आमंत्रित अतिथि उपस्थित हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए, और सभी अपने अपने स्थान पर, निर्दिष्ट स्थान पर बैठकर योग कर रहे हैं निर्देशों का पालन करते हुए। अब धीरे धीरे वज्रासन की स्थिति में सभी आए हैं, एक ऐसा आसन जो हमारे पाचन तंत्र को बेहद तेज कर देता है और कहा जाता है कि हमारे पेट को वज्र के समान मजबूत कर देता है, यानी हम जो भी खाएं वो पच जाए। और प्रतिमा जी, जहां तक मेरी जानकारी है, ये एक इकलौता आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल 100% ये ही एक ऐसा आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद करते हैं, और ये हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एब्डोमिनल रीजन में इंक्रीज करता है, इसलिए वो डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करता है। और जो हमारी पंचवायु कही गई है, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, इन वायुओं में से जो समान वायु है उस पर विशेष रूप से काम करता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम डेफिनेटली इंप्रूव होता है। साथ में हमारी जो स्पाइन है वो स्पाइन अलाइंड होती है
0: जी। और अब वज्रासन के बाद अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास यहां पर किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं सभी अभ्यर्थियों के बीच से वो जा भी रहे हैं, और अभी हमने देखा कि किस प्रकार से एक योग साधक की उन्होंने मदद की है, उसकी जो स्थिति है उसे ठीक किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हाथों की स्थिति को ठीक किया है और सभी को प्रेरित

0: करते हुए स्वयं उनके बीच में। यहाँ पर ये बोलना गलत नहीं होगा कि जैसे हम अपने गुरु के निर्देश का पालन करते हैं, उनके सामने योगाभ्यास करते हैं, जैसे हमारे ट्रेनर्स होते हैं या हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग हमें कुछ सिखाते हैं, उसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे परिजनों की तरह एक शिक्षक की नज़र से सभी को देखते हुए और सभी को वो सही तरीके से कैसे हमें आसन करना है ये भी बताते हुए बेहद सुंदर ये भाव, बेहद सुंदर ये दृश्य। कौशिक जी,
1: यस एब्सोल्युटली, एंड एज वी मेंशन्ड अर्लियर आल्सो, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टेकिंग कीन इंटरेस्ट स्पेशली अमंग द teenagers and youngsters who are present here and just guiding them how to do the asanas in the correct manner. And this is just as you rightly mentioned, how an elder of the family takes care of the youngsters. The Honorable Prime Minister is doing absolutely just that.
0: जी, और अब यहाँ अभ्यास किया जा रहा है शशक आसन का। खरगोश की स्थिति में हम आते हैं जब हम शशक आसन करते हैं, और यहाँ पर जब भी बैक बेंडिंग के आसन किए जाते हैं उसके बाद शशक आसन करने के बाद फॉरवर्ड बेंडिंग करके तुरंत बैलेंस किया जाता है, और यही है योग की बेहद सुंदर अनुभूति कि हमें वो संतुलन सिखाता है। और अब यहाँ पर उत्तान मंडुकासन का अभ्यास किया जाएगा सभी इस आसन की मुद्रा में आते हुए। उत्तान मंडुकासन, प्रतिमा जी इस आसन के बारे में आप हमें बताएं।
2: जैसे कि अभी आपने कहा कि शशांक आसन जो किया जाता है, शशांक आसन भी बोलते हैं उसको, उसके बाद उत्तान मंडुकासन। शशांक आसन जो है वो स्ट्रेस को रिमूव करने का काम करता है और इस पर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं। उसके जस्ट बाद जो काउंटर पोस्चर किया जाता है वो बैठकर किया जाने वाला उत्तान मंडुकासन, ये स्पेशली लेडीज़ के लिए, फीमेल्स के लोअर बॉडी पार्ट्स के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बेनिफिशियल होता है। साथ में आप देख रहे हैं कि जो बॉडी अलाइनमेंट है वो ऊपर की तरफ एल्बोज का डायरेक्शन रहता है, तो ये थोरेसिक कैविटी पर भी काम करता है, साथ में मन को भी शांत करता है और हमारे घुटनों के लिए और जो बटक्स हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होता है। एंड नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं, साथ में मन को भी शांत करने वाला आसन है ये।
0: जी, और अगर हम अपने शरीर को थोड़ा समझने का प्रयास करें तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी तनाव होता है, हम किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं जो हमारे लिए जटिल है, हमारे लिए कठिन है, तो हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में स्ट्रेस जो है वो इकट्ठा हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता, और बाद में किसी ना किसी बीमारी के रूप में वो सामने आता है। तो योग एक ऐसी स्थिति जिसमें पूरे शरीर का तनाव जो है वो दूर किया जाता है और साथ ही मानसिक तनाव भी दूर किया जाता है।
1: Now I think the enthusiasts are performing Vakrasan.
0: जी बिल्कुल, वक्र यानी तिरछा, तो थोड़े टेढ़े होकर हम ये आसन करते हैं जो हमें बिल्कुल सीधा कर देता है। प्रतिमा जी
2: बिल्कुल सही है कि हमें सीधा कर देता है, क्योंकि इस आसन को जो हमारा डायबिटीज है, शुगर जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल आसन है। ये मोड़ कर किए जाने वाले आसनों में से आप देखेंगे तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड से किया जाता है ये, और हमारे जो पैंक्रियाज है और लीवर दोनों के लिए पर प्रेशर क्रिएट करता है। तो ये पूरे हमारे जितने भी डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद है, इसीलिए इसको डायबिटीज वालों के लिए रामबाण कहा जाता है। साथ में ये आंखों के लिए भी बेनिफिशियल है, गर्दन भी इसमें ट्विस्ट होती है, तो पूरी स्पाइन की ट्विस्टिंग करता है ये आसन।
0: और महिलाओं का बहुत इसमें इंटरेस्ट रहता है कि हमारा कटी प्रदेश जो है, कमर वाला हिस्सा जो है वो लचीला रहे, पतला रहे, तो ये आसन उसमें बेहद लाभदायक होता है, क्योंकि हमें कॉलेज में बहुत करवाया गया ये आसन
2: और साइड फैट को भी रिड्यूस करता है।
0: जी, और यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा कि हमने कहा कि एक शिक्षक की नज़र से सभी को देखते हुए और परखते हुए, यहाँ पर एक अभ्यर्थी जो है, योग साधक जो है, उनसे जब ठीक से आसन नहीं हुआ तो
1: जस्ट गाइडिंग देम टू डू द आसन, उन्हें बिल्कुल गाइड कर रहे हैं परफेक्ट मैनर। एंड नाउ प्रतिमा जी, अबाउट दिस पर्टिकुलर आसना, इफ यू कैन शेयर विद आवर लिसनर्स।
2: मकरासन, ये पेट कर किए जाने वाले आसनों का शिथिलीकरण आसन है, और ये इसमें देखेंगे आप, जब हम जनरली पीठ के बल लेटते हैं इसमें पेट के बल लेटना होता है, और ये हमारी पूरी जो स्पाइन, अभी तक किए जाने वाले आसनों में

0: जो स्ट्रेच हुई है उसके बेनिफिट को बढ़ाने के लिए किया जाने वाला आसन है, और साथ में जो हमारा लेफ्ट और राइट बॉडी जो पार्ट्स हैं और लोअर लिम और अपर लिम है, इसमें आप देखेंगे हील्स अंदर की तरफ हैं, टोज बाहर की तरफ हैं, तो ये पूरी बॉडी को एक तरह से ट्विस्ट भी कर रहा है और अलाइन भी कर रहा है
1: जी।
0: तो इस आसन के और भी बहुत बेनिफिट्स हैं, साथ में ये जो सर्वाइकल जिन लोगों को होता है उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद होता है, साथ में जो तनाव मुक्त है वो भी करता है ये
1: जी। और बेहद खूबसूरत बात यह है कि हम जिन आसनों के नाम ले रहे हैं, अर्ध उष्ट्रासन हो या मकर आसन हो जो अभी हो रहा है, ये हम अपने जीव जंतुओं से प्रेरणा लेते हुए ये आसन हमने अपनाए हैं। अगर हम वज्रासन की बात करें तो हमने पत्थर से भी प्रेरणा ली है, हम बात कर रहे हैं वृक्षासन की, ताड़ासन की, तो प्रकृति से प्रेरणा ली है। तो किस तरह से योग ने समाहित किया है अपने आप में पूरे ब्रह्मांड को और प्रेरित किया है हमें कि हम जिसमें जो अच्छाई है उसे लेकर उसका अनुसरण करके स्वयं को बेहतर करते चलें। मकर आसन, मकर यानी मगरमच्छ जिस तरह स्थिति में होता है बिल्कुल सीधा, उस तरह की स्थिति में रहते हुए हम आसन का अभ्यास करते हैं, और अब हम वो आसन कर रहे हैं जिसका नाम है भुजंगासन। यहां पर योग साधक भुजंगासन कर रहे हैं। भुजंग यानी सर्प से तो वैसे ही डरा जाता है, लेकिन हमने उससे भी सीख लिया है कि स्वयं को किस तरह से लचीला रखना है। इसके लाभ डॉक्टर प्रतिमा,
0: भुजंगासन और सर्पासन दो नाम सुने होंगे, ये भुजंगासन, भुजंग मतलब कोबरा पोज, और ये हमारे स्पेशली जो स्पाइन है उस पर काम करता है, और ये कुंडलिनी जागरण से संबंधित आसन है जो ग्रंथों में कहा गया है। साथ ही जो फीमेल्स हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल आसन है, स्पाइन भी फ्लेक्सिबल करता है, शोल्डर्स को भी स्ट्रेंथन करता है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स मसल्स को पर भी काम होता है
1: जी।
0: ये कहा जाए कि ये पूरे शरीर पर काम करता है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। सर्वाइकल वालों के लिए भी आसन बेनिफिशियल कहा जाता है, और सर्पासन अलग है, भुजंगासन अलग है। यहाँ पर भुजंगासन किया गया है क्योंकि भुजंगासन के बहुत सारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ हैं
1: जी। गुरु मुनेश सिन्हा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम योग के लाभों के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि इस तरह के आसन है जिन्हें हर उम्र के साधक आसानी से कर रही हैं, आपका क्या विचार है, क्या योग को हमारे स्कूली शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए जिसमें आध्यात्मिक पक्ष भी शामिल हो?
2: जरूर जरूर, एक्चुअली जब तक हम अपने रूट से नहीं जुड़ेंगे ना, तब तक हमारी पूर्ण विकास नहीं हो सकती। अगर हम बच्चे से ही, बहुत छोटे कॉन्शसनेस से ही जब हम योग बताना शुरू करते हैं, योग से उनको जोड़ते हैं, तो हम पूरी पृथ्वी पे एक अच्छे नागरिक को पाते हैं, एक अच्छे इंसान को बनाते हैं, और इससे बहुत पूरी पृथ्वी का भला होने वाला है, पूरी जगत का भला होने वाला है। और मैं तो ये बहुत खुश हूँ कि अपने प्रधानमंत्री जी की जो वो आज एक इंस्ट्रक्टर की तरह हर रो में घूम घूम के सबके पॉस्चर्स ठीक कर रहे हैं, इससे यही योग की जो नेचर है, योग का जो नेचर लव है, यही दिखाता है, जॉय ऑफ गिविंग है, यही दिखाता है। आज वो अपने व्यवहार से, अपने एक्शन से जॉय ऑफ गिविंग, सेल्फ लव और लव फॉर ऑल वो दिखा रहे हैं। तो ये मतलब इतनी रोमांचक जगह है, इतनी इतनी अच्छी हो रही है, मतलब कह नहीं सकता हूं मैं, बहुत ही सुंदर
1: जी।
2: बहुत ही
1: और यहाँ पर हम अद्भुत अनुशासन भी देख रहे हैं जो कि योग भी हमें सिखाता है, प्राणों के साथ जुड़ना, और सेतु बंध आसन का यहाँ पर अभ्यास किया जा रहा है। सेतु यानी पुल, तो शरीर से पुल जैसी आकृति बनाना सेतु बंध आसन, इसके लाभ हमें डॉक्टर प्रतिमा बताएंगी।
0: ये आसन जो है वो जैसा कि नाम है वैसा काम
1: जी,
0: बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है। साथ में ये जो हमारा एब्डोमिनल रीजन है, आप देख रहे हैं इसमें स्पाइन ऊपर की तरफ जाती है और पेट ऊपर की तरफ जाता है, तो स्पाइन पर भी काम करता है, एब्डोमेन पर भी काम करता है, शोल्डर्स पर भी काम करता है, थाई मसल्स पर भी काम करता है
1: जी।
0: और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट आसन है हमारे थेरेपी एस्पेक्ट से, और इसको जब किया जाता है तो हमारी काफ मसल्स पर भी, जो गैस्ट्रोनियस मसल्स होती हैं उनके उन पर भी काम होता है सेतु बंधासन
1: जी। सेतु बंधासन, और हम यहाँ देख रहे हैं कि लगातार अपनी अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आसन सभी

0: रहे हैं। योग के बारे में एक अच्छी बात यह भी है कि जितनी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं बढ़ती उम्र के साथ हमें कहा जाता है कि या तो वो कम कर दीजिए या ध्यान से कीजिए, लेकिन योग एक इस तरह की क्रिया है शारीरिक कि अगर हम लगातार करते रहते हैं तो बढ़ती उम्र, एक तो उसका बढ़ना धीमा हो जाता है यानी एजिंग के जो असर हैं वो धीरे धीरे आते हैं, और दूसरा ये भी होता है कि हम सहज भाव से वो आसन कर पाते हैं। और यहाँ पर अब हम देख पा रहे हैं अर्ध हल आसन शायद यहाँ पर किया जा रहा है, और हल जैसी आकृति शरीर से बनाते हैं तो पांव पीछे की तरफ ले जाकर, सर के पीछे की तरफ ले जाकर जमीन को छूते हैं, लेकिन ये उसका आधा हिस्सा ही किया जा रहा है सभी ताकि सहज भाव से कर सके। अर्ध हल आसन, पांव सीधे किए गए जमीन पर लेटकर, और अब पवन मुक्त आसन का अभ्यास सभी कर रहे हैं। शरीर की वो वायु जो हमें कष्ट दे सकती है उससे शरीर को मुक्ति देना पवन मुक्त आसन। डॉक्टर प्रतिमा,
1: पवन मुक्त आसन जो है आप देख रहे हैं कि लेटकर सुपाइन पोस्चर है ये
0: जी,
1: और पवन मुक्त जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है ये पवन मुक्त आसन समूह के आसनों में से किया जाने वाला आसन है। और क्यों? क्योंकि शरीर में 80 प्रकार के जो रोग हैं वो वायु विकार के कारण होते हैं, वायु विकार से संबंधित होते हैं, तो ये हमारे शरीर में जितनी भी प्रकार की वायु हैं उन सभी पर काम करता है, इसीलिए इसको पवन मुक्तासन नाम दिया गया है। वायु विकार के कारण हमारा हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इवन सारे जितने भी हमारे सिस्टम हैं उन सभी सिस्टम से रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो वायु के कारण होती हैं। तो ये पवन मुक्तासन ग्रुप का किए जाने वाला आसन है पवन मुक्तासन, जिसके कि वायु को व्यवस्थित करने का काम ये हमारे शरीर में करता है
0: जी। गुरु मुनेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपका क्योंकि ऐसा अनुभव रहा है कि आप हमारे सशस्त्र बलों को भी और अर्धसैन्य बलों को भी योगाभ्यास करवाते रहे हैं, मेडिटेशन की क्लासेस आप लेते हैं, मुझे आप ये बताएं कि किस प्रकार से हमारा मेडिटेशन जो है, ध्यान जो है, वो मदद करता है हमारी।
2: एक्चुअली क्या है, योगा में उसकी जो डेफिनेशन है, योगा चित्त वृत्ति निरोध
0: जी।
2: हमारी चित्त की वृत्तियां अगर जब तक कंट्रोल नहीं होती हैं तब तक हम अपने जीवन को ढंग से जी नहीं पाते हैं। आप कितना भी सशक्त हो जाएं, अगर आपकी वृत्तियां ही आपके अंडर कंट्रोल नहीं है, आपकी वृत्तियां ही आपको हर वक्त ऐसे कार्यों में लगाती हैं जो नहीं करना चाहिए, आपकी वृत्तियों से आपका जीवन पूरा चारों तरफ बिखर जाता है। तो सबसे बड़ी जरूरत है कि आज योग करके अपनी वृत्तियों को कंट्रोल करें, इसीलिए आसन को सीट ऑफ अवेयरनेस कहा गया है, हमारी वृत्तियों को कैसे कंट्रोल किया जाए, और खास करके मेडिटेशन और खास करके योग और ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, वो दुनिया के लिए अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं, हमारे जितने सैनिक हैं, हमारे भारत के जितने फोर्स हैं, जितने भी आर्म फोर्स में काम कर रहे हैं, उनकी जीवन में एक बहुत स्ट्रेस होता है, वो घर से बाहर होते हैं, तो उनके लिए योग करना, ध्यान करना, अपनी वृत्तियों पे काम करना, सो दैट अपने देश की रक्षा, अपनी देश की सुरक्षा उनका 100% वो डाल पाए, ये बहुत ज़रूरी है कि ध्यान करके अपनी चित्त को कंट्रोल किया जाए, उसमें समाया जाए और उसको उसी की ज़िंदगी जिया जाए, है ना। योग योग में सबसे पहली बात मैंने देखा है जीवन में, जिनकी चित्त की कंट्रोल नहीं है, जो जो अपने कॉन्शसनेस से कनेक्टेड नहीं है, तो उनकी प्रॉब्लम।
3: Dr. Pratima, now I think we are seeing the Kapalbhati, so you can throw some light on this particular aspect.
1: कपालभाति षट क्रियाओं में से एक क्रिया है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कपाल भाति। कपाल मतलब मस्तिष्क प्रदेश, ब्रेन रीजन, और भाति मतलब वो जो आपने लोहार देखा होगा उसको जो धोकनी चलाता है, उस तरह से हमें फोर्सफुली एक्टिव एक्सेलेशन और पैसिव इन्हेलेशन कपाल भाति में करना होता है। और जो हमारे ग्रंथ हैं वो इसको विशेष रूप से ये कहते हैं कि कफ दोष नाशनी, हमारे शरीर में जो कफ विकार है वो इसको करने से संतुलित होता है। और योग एज सच जितने भी हमारे विकार हैं, बात विकार हो, कफ से संबंधित हो, पित्त से संबंधित हो, जो भी बीमारियां हैं वो इन्हीं के असंतुलन के कारण होती हैं, और उन्हीं को संतुलन करने का काम योग करता है। तो कपालभाति

0: मस्तिष्क को चमकाने के लिए भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा तो आपके सभी काम अच्छे होंगे। और यहाँ मैं एक बात कहना नहीं भूलूंगी कि जो योग है अपने आप में, वो मैंने जो समझा वो यूथफुलनेस ऑर्गेनाइजिंग ऑल द सिस्टम ऑफ द बॉडी गारंटी फॉर हेल्थ हैप्पीनेस एंड हार्मोनी, ए स्टैंड फॉर एनालिसिस फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो
1: जी
0: योग करने से हमारा जो मस्तिष्क है वो तो अच्छे से काम करेगा ही, जब वो अच्छे से काम करेगा तो आपका एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा होगा, और जब एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा होगा तो सोसाइटी में हम इंटरेक्ट पॉजिटिव वे में करेंगे।
1: जी और अब यहाँ पर नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है। योग साधक जो हैं वो पद्मासन में बैठे हैं, ज्ञान मुद्रा में हाथ हैं, एक हाथ से नाड़ी शोधन प्रक्रिया आप कर रहे हैं, और कुछ साधक जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते वो सहज आसन में सुखासन में बैठे हैं और नाड़ी शोधन किया जा रहा है। तो नाड़ियों की शुद्धि इससे होती है डॉक्टर प्रतिमा?
0: हाँ, 72,000 नाड़ियों के विषय में योग ग्रंथों में कहा गया है, उन
1: जी
0: सभी नाड़ियों की शुद्धि इससे प्राणायाम से होती है।
1: जी
0: प्राण और आयाम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हम प्राण ऊर्जा के कारण ही संपूर्ण जीवन की क्रियाकलाप संपन्न कर पाते हैं। तो ये प्राणों को भी लंबा करता है, आयाम मीन्स लॉन्ग करना, लंबा
1: जी
0: करना। और ऐसा कहते हैं कि हम गिनी चुनी श्वासें ईश्वर से लेकर आए हैं, तो हम कॉन्शियसली अपनी लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं। और जैसा कि ग्रंथ कहते हैं, प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेत, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्व रोग समुद्भवा।
1: जी
0: मतलब इसका यह है कि प्राणायाम अगर सही ढंग से किया जाए तो सभी रोगों का नाश करता है। लेकिन यहाँ पर योग शब्द है, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्व रोग समुद्भवा, मतलब यदि गलत ढंग से योग अभ्यास या प्राणायाम का अभ्यास किया जाए तो सभी प्रकार के रोग हो सकते हैं। इसीलिए प्राणायाम को हमें या योग अभ्यास को हमें बहुत सावधानी पूर्वक कहा गया है। ये भी
1: जी
0: कहा गया है युक्तम युक्तम त्यजेत वायु युक्तम युक्तम च पूरयेत, मतलब धीरे धीरे श्वास को लेना है, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। और प्राणायाम जैसे कि कई प्रकार के हैं।
1: जी और जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर अब शीतली प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है, गर्मी में भी शीतलता का आभास देने वाला, जो कि कहा जाता है कि स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, स्किन को ग्लोइंग कर देता है। और चेहरे पर अगर किसी भी प्रकार के, किशोर अवस्था में आमतौर पर किशोर जो है वो मुहासे और पिंपल्स का सामना करते हैं, तो उन्हें भी ठीक करता है। डॉक्टर प्रतिमा,
0: जैसा कि आपने कहा कि शीतलता देने वाला प्राणायाम है, निश्चित रूप से ये हमारे शरीर को शीतल प्रदान करता है, साथ ही भूख और प्यास पर भी नियंत्रण लाता है ये। और जो हमारी अग्नि है, वात सॉरी पित्त जो है हमारा,
1: जी
0: उसको व्यवस्थित करने का काम करता है। और अगर पित्त सही होगा, आग सही जल रही होगी, तो निश्चित रूप से चमक आएगी ही।
1: जी जठराग्नि को पूरी तरह से
0: व्यवस्थित
1: कर
0: करता
1: देता है।
0: है
1: जी और अब भ्रामरी प्राणायाम किया जा रहा है।
0: भ्रामरी प्राणायाम के तो इतने फायदे हैं जिसकी की कोई हद। क्यों? क्योंकि ये हमिंग बी जैसे आवाज निकालना होता है इसमें, और षण्मुखी मुद्रा में किया जाने वाला अभ्यास है। डिफरेंट वे में भी किया जा सकता है ये।
1: जी
0: और इसमें आप देख रहे हैं कि आंखें बंद हैं, कान बंद हैं, और बाकी की जो फिंगर्स हैं वो अलग अलग मर्म स्थानों पर रखी हुई हैं। इसमें सांस लेते हैं और आवाज के साथ सांस को छोड़ते हैं। उस समय हमारे जो आवाज निकलती है वो गले से निकलती है, और जो वाइब्रेशंस जो होते हैं वो हमारे से जो सी हॉर्मोन सीक्रेट होते हैं, चाहे वो सेरोटोनिन हो, डोपामाइन हो, इनका सीक्रेशन प्रॉपर करता है,
1: जी
0: ऑक्सीटोसिन हो, तो ये ब्रेन और ब्रेन की फंक्शनिंग को बहुत फायदा करता है। और जैसा कि योग है वो पेट और पीठ
1: जी
0: दोनों पर काम करके ब्रेन पर अल्टीमेटली काम करता है, तो
1: जी
0: इसके बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन हाँ, इसको किसे नहीं करना चाहिए या लाउडर पिच में इसको नहीं करना चाहिए, वो हार्मफुल हो सकता है।
1: जी
0: जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत लाउडर पिच पर नहीं करना चाहिए।
1: यानी शरीर के जो अंदर सॉफ्ट टिश्यूज हैं, कंपन से हम उन्हें एक्टिव करते हैं और इस तरह से उन्हें मजबूत करते हैं।
0: हाँ।
1: और ये हाथ इसलिए रखे जाते हैं द्वार पर कि जो कंपन से जो हवा है वो बाहर नहीं निकले, शरीर के अंदर जब वो रहेगी तो हमारे टिश्यूज को हेल्दी करेगी।
0: हाँ।
1: जी भ्रमर जैसी आवाज हम इसमें
0: और बाहर से कनेक्शन कट भी करना होता है, ताकि हम अपने आप में, योग अपने आप में जुड़ना सिखाता है,
1: जी
0: तो हम अपने आप से जुड़ पाए,
1: स्वयं से ही हम जुड़ते हैं अपने भी।

0: अधिकतर हम जाते हैं
1: जी। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द आसनास दैट इज ध्यान और मेडिटेशन विच इज अ टाइम फॉर आवर सेल्फ असेसमेंट एंड becoming one with the universe. Dr. Pratima,
0: meditation is not just meditation, it is medication of body as well as mind. जी, क्योंकि मैंने कुछ ध्यान के जो लोग हैं उनको से जुड़ी हुई हूँ, देखा है मैंने कि ध्यान से उन्होंने अपनी बीमारियों को ठीक कर लिया। तो मेडिटेशन केवल मेडिटेशन नहीं है, बैठ गए आंख बंद करके और मन कहीं और भटक रहा है, वो नहीं है। मेडिटेशन है श्वास को देखना, जो प्राण का आवागमन है हमारे शरीर में जो हो रहा है उसको देखना, उससे अलाइन होना। तो इसीलिए ये कई प्रकार के रोगों को भी ठीक करता है
2: जी। और गुरु मुनेश सेना जी, आप तो आध्यात्मिक जगत से जुड़े हैं, आप ध्यान करवाते हैं और स्वयं भी ध्यान में रहे हैं, तो अपना अनुभव आप हमारे साथ साझा करें, किस प्रकार की दिव्य अनुभूति ध्यान से हमें हो सकती है।
3: मैं तो इतना ही कहूंगा कि अगर आपके जीवन में कुछ काम नहीं बन रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है आप कहां जाना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ अगर स्टक हो

0: से जुड़ी हुई हूँ, देखा है मैंने कि ध्यान से उन्होंने अपनी बीमारियों को ठीक कर लिया। तो मेडिटेशन केवल मेडिटेशन नहीं है, बैठ गए आंख बंद करके और मन कहीं और भटक रहा है, वो नहीं है। मेडिटेशन है श्वास को देखना, जो प्राण का आवागमन है हमारे शरीर में जो हो रहा है उसको देखना, उससे अलाइन होना। तो इसीलिए ये कई प्रकार के रोगों को भी ठीक करता है
1: जी। और गुरु मुनेश सेना जी, आप तो आध्यात्मिक जगत से जुड़े हैं, आप ध्यान करवाते हैं और स्वयं भी ध्यान में रहे हैं, तो अपना अनुभव आप हमारे साथ साझा करें, किस प्रकार की दिव्य अनुभूति ध्यान से हमें हो सकती है।
2: मैं तो इतना ही कहूंगा कि अगर आपके जीवन में कुछ काम नहीं बन रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है आप कहां जाना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ अगर स्टक हो गई है, आप बिल्कुल जैसे मानो कि अंधेरी कोठरी में आपकी जीवन बिल्कुल सिमट गई है, आपको लग रहा पता नहीं चल रहा आप क्या करें, आप ध्यान करना शुरू करें। मैंने अपने जीवन में न जाने हजारों लोगों को ध्यान करवाया है और कई लोग ध्यान की सिर्फ वो शरीर में ही नहीं, आपके पूरे जीवन के हर क्षेत्र के रास्ते को खोल देता है। सारी अपॉर्चुनिटी इंफॉर्मेशन जो भी वेव्स में अभी तरंगित हैं, द मोमेंट आप ध्यान करते हो, द मोमेंट आप साइलेंस में जाते हो, द मोमेंट आप अव्यक्त स्वरूप में जाते हो, इमीडिएटली आपका सोर्स बहुत पावरफुल होना शुरू हो जाता है और आपके लिए बनी जो भी इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटीज पूरी दुनिया में है आप स्वयं उसको अट्रैक्ट करने लगते हो। सारी चीज़ें मैंने लाइफ बताऊँ कि मेरी स्पाइन बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गई थी, वो मैं किसी की हील कर रहा था और वो एम्स के डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि बिना ऑपरेशन के आप ठीक नहीं हो सकते, आपको ऑपरेशन कराना ही कराना होगा। मैंने सिर्फ ध्यान करके उस स्पॉट पे एक प्रकाशित सूर्य को देखा, प्रकाशित शिवलिंग को देखा और विद इन 3 months मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैं ध्यान के, जैसा कि अभी मैम कह रही थी कि ध्यान से आप अपने पूरे जीवन का उत्तर पा सकते हो, आंसर पा सकते हो। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए ना, आप सिर्फ ध्यान करना शुरू करो, आपकी पूरे जीवन की क्वालिटी बदल जाएगी, आपका सोचने का ढंग चेंज हो जाएगा, आप रिएक्टिव कम हो जाओगे, आप रिस्पॉन्सिव ज्यादा हो जाओगे। और सबसे बड़ी बात है कि ध्यान आपके परम स्वरूप से जोड़ता है और जो परम स्वरूप है ना, वही आदि स्वरूप है, वही शिव है, वही अनंत है, वही चैतन्य है
1: जी। आदि योगी से हमें जोड़ता है हमारा ध्यान। और यहाँ पर अब प्रार्थना
3: शांति
1: मंत्र का पाठ किया जा रहा है।
3: दोनों हथेलियों को घर्षण कीजिए, कोमलता से दोनों हथेलियों को चेहरे और आंखों
1: और
3: पर,
1: जैसा कि हमने कहा कि हमारी संस्कृति जो है
3: और धीरे धीरे
1: ये अद्भुत बात है, ये विशेषता है कि हम विश्व शांति की कामना करते हैं, हम प्रकृति की शांति की कामना करते हैं। और मैं गुरुजी आपकी बात जब सुन रही थी तो ये भाव मन में आया कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, हम नेचर के साथ अलाइनमेंट की बात करते हैं, हम पंच तत्वों की बात करते हैं और साथ ही हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात भी करते हैं। तो आपने जैसा कि बताया कि ध्यान हमें खुद से जोड़ता है और कहीं ना कहीं ध्यान में मैं ये सब पा रही हूँ जो आपने कहा कि हमारे बहुत सारे जो अनसुलझे सवाल होते हैं उनके जवाब हमें अपने आप मिलने लगते हैं और आप एक नेट की तरह हो जाते हैं। आपने कहा कि विश्व में जो कुछ भी हमारे लिए निर्धारित है वो स्वयं हम तक पहुंचने लगता है, तो बहुत ही अद्भुत बात आपने ये कही ध्यान से जुड़ी हुई।
4: एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज नाउ मेकिंग हिज वे टुवर्ड्स द एग्जिट ऑफ द रेड रोड एंड एवरीवन हु वर प्रेजेंट हियर एंड हु वर लेड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन द ओकेजन ऑफ द 12th International Day of Yoga really felt touched when the Prime Minister himself went to every enthusiast and guided them in doing the asanas in the correct manner. This was indeed a great celebration at the iconic Red Road in Kolkata, where more than 3 lakh people had assembled to perform the yogasanas and were led by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi.
1: Ji, jal, thal, nabh, sabhi योग में होंगे। हम जानते हैं कि भारत में तो सूर्योदय जब हो रहा है तो हमने नमस्कार किया है और साथ ही योग अभ्यास किया है। दुनिया के ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनमें जहां जहां भारतीय दूतावास हैं उनकी ओर से विशेष आयोजन होंगे। और अब क्योंकि बहुत सारे देश दुनिया के योग को अपना चुके हैं, पहले से योग प्रचलित रहा है

0: कभी हम इसे जिम में होता देखते हैं, कभी वेलनेस सेंटर में देखते हैं, और इंजर्ड होने के बाद फिजियोथेरेपिस्ट हमें जिस तरह की एक्सरसाइज बताता है वो हमारे योगासनों से ही प्रेरित होती है। तो योग हमारे जीवन का हिस्सा रहा है, लेकिन अब ये पूरी दुनिया मान चुकी है कि भारत ने दुनिया को योग दिया है, और आधिकारिक तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए प्रयास किए और यूएन यूनेस्को ने इसे माना कि भारत का ये उपहार विश्व के लिए अनूठा है और आज संघर्षों से भरी हुई इस दुनिया में बेहद जरूरी भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा कि योग को हम केवल एक दिन का उत्सव ना बनाएं, बल्कि इसे अपनी दिनचर्या के साथ जोड़ें।
1: योगा 365, that is what the honorable prime minister had mentioned, and we would also like to inform our listeners that as the Honorable Prime Minister has mentioned that the gift of India was just not only Lord Buddha or peace but also yoga, and this yoga has been practiced by Indians since times immemorial. It is as old as our civilization, which is more than 5,000 years old. And today, as Neelam rightly mentioned, that the entire world has accepted yoga, has embraced yoga, as it promotes not only healthy lifestyle, but also healthy mental lifestyle. It brings about a total balance in healthy living. And Guru Munesh Sinhaji, you were mentioning about the importance of meditation. So how do a layperson begin to meditate, if you can inform our audience?
2: Yes, सबसे पहले मैं जो लोग ध्यान करना चाहते हैं या ध्यान की दुनिया में आना चाहते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में वो ना जाएं, सिर्फ स्टैचू बन के 10 मिनट रोज एक महीने की प्रैक्टिस करें। एक समय चुनें 10 मिनट या 15 मिनट, वो सिर्फ स्टैचू हो जाएं। जैसे बच्चे में हम लोग स्टैचू गेम खेलते थे, चलते चलते अचानक कोई स्टैचू चिल्लाता था और हम जिस पोजीशन में होते थे उसी पोजीशन में रुक जाते थे। अपने जीवन में भी आप अपनी किसी एक फेवरेट जगह पे, घर के किसी कोने में आप बैठें और 15 मिनट के लिए सिर्फ स्टैचू हो जाएं, और स्टैचू होने के बाद आपके मन की मन, आपकी आंखों की आंख जो आपके अंदर है, वो बहुत सारी वृत्तियों को देखेंगी। कई सारे आप पिक्चर्स देख रहे हैं, इमेजिनेशन देख रहे हैं, आप कपड़े देख रहे हैं, खेल देख रहे हैं, ये सारी आपके मनस्पटल के इसमें चलती चली जाती हैं। आपको सिर्फ उसको देखते रहना है और ये कहना है कि आई एम ओनली द ऑब्जर्वर ऑफ दिस, मैं एक विटनेसर हूँ जो हमारे मन के पटल पे चल रहे सारे पिक्चर्स को मात्र देखने वाला हूँ। मैं एक दृष्टा हूँ। द मोमेंट आप दृष्टा के भाव में जाते हैं तो आपका आपके मन से कनेक्शन दूर हो जाता है, आप शरीर और मन से अलग एक प्योर कॉन्शसनेस हो जाते हैं, जहां पे आपका शरीर और मन जन्म लेता है, पलता है और फिर उसी कॉन्शसनेस में विलय हो जाता है। जैसे ही आप इस अस्तित्व में जाते हैं तो समझने वाला और समझ एक हो जाता है। फिर पता चला शरीर और मन जो अभी विचार देख रहे थे, विचार को देखने वाला, ये सारी चीज एक हो जाती है। फिर थोड़े ही टाइम में आपके विचार आने खत्म होने शुरू हो जाते हैं और सिर्फ बचता है तो एक प्योर कॉन्शसनेस, जो सिर्फ कहते हैं बीइंग होने का एहसास, इसीलिए ह्यूमन बीइंग कहते हैं, ह्यूमन डूइंग नहीं कहते। ह्यूमन जितने भी इस पूरी पृथ्वी पे, जगत पे जितनी भी सृष्टि में लोग हैं, उनको ह्यूमन बीइंग कहा गया है, इसीलिए कि वो अपने अस्तित्व के उस सोर्स से कनेक्ट हो जाएं। द मोमेंट उस सोर्स से वो कनेक्ट होते हैं तो वो जाने अनजाने में इस पूरी ब्रह्मांड के अनंत के एक पार्ट बन जाते हैं, और वो अनंत फिर उनके पूरे अस्तित्व में डोमिनेट करने लगता है। शरीर की जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो वर्ल्डी लाइफ को सिर्फ और सिर्फ 25% ऑपरेट करने के लिए वो रहता है, बाकी उसके पूरे अस्तित्व में 75% उस प्योर कॉन्शसनेस की रेडिएशन, उस प्योर कॉन्शसनेस की लाइट रेडिएट हो जाती है। इसलिए ध्यान तो मैं कहूँगा कि हर आदमी को, हर इंसान को, अगर वो इस पूरी जगत का भला चाहते हैं, इस पूरे विश्व का भला चाहते हैं, तो ध्यान करें, इससे हमारा कलेक्टिव कॉन्शसनेस रेज होगा और कलेक्टिव कॉन्शसनेस

0: से हमारी प्रकृति रेज होंगी, हमारा जो आज ग्लोबल वार्मिंग, टेररिज्म और ये सारी चीज़ें हम विश्व में देख रहे हैं, ये सारी चीज़ हो ही रही है कि हम अपने से दूर चले गए हैं। अगर इस प्रयास पे जो आज प्रधानमंत्री जी ने 21 जून का ये दिन इतना सुंदर चुना है कि पूरे विश्व की कलेक्टिव कॉन्शसनेस एक हो रही है, और ये पूरे विश्व की कलेक्टिव कॉन्शसनेस जब एक होती है तो प्रकृति की भी कॉन्शसनेस एक होती है, क्योंकि हम और प्रकृति अलग नहीं है, जो हम हैं वही प्रकृति है, जो प्रकृति है वही हम है।
1: जी, बहुत सुंदर बात आपने कही। और ध्यान के बारे में हमने सुना है कि जब ध्यान करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सिर्फ एक यंत्र मात्र हैं और प्रकृति प्राण के रूप में हम में बह रही है, हमारे थ्रू बह रही है। और ये भी हमने कहीं पढ़ा कि हम सिर्फ कॉन्शियस माइंड से चलते हैं, लेकिन ध्यान हमारे सबकॉन्शियस को भी जागृत करता है, और असीम जो ताकत हमारी है किसी भी कार्य को करने की, समझने की, वो हमें देता है। कुछ पंक्तियां यहाँ पर मुझे याद आ रही हैं। स्वयं से स्वयं की मुलाकात है योग, बिखरे हुए अंतस की नई शुरुआत है योग, तन को जो साधे, मन को जो शांत करे, मानवता के कल्याण की पावन सौगात है योग, ऋषियों की वो खोज जो वेदों से आई है, आज विश्व ने इसकी शक्ति मानी, अपनी श्रद्धा दिखाई है।
2: Yes, and as Guru Munish Sinha ji mentioned, and as you also mentioned, Neelam ji, that today we saw the Honorable Prime Minister lead the nation in performing yogasana at the Red Road, Kolkata. But at the same time also, yoga was just not restricted onto the land. The Indian Navy, the Indian Coast Guard and other units also performed yogasanas aboard the naval ships and Coast Guard ships, and also adjacent to Red Road, there flows the River Ganga, which is also known as Hooghly, and on 500 boats, yoga enthusiasts performed yogasanas there, and in the wonderful mangrove of Sundarbans also, people performed yogasanas on board their boats and yachts. And in the mighty Himalayas, the men who guard us are vanguards of the borders. The Indian Army personnel, the ITBP personnel and others also performed yogasanas there. And also our border security force personnel performed yogasana on the Thar Desert. So this is what the uniqueness of International Day of Yoga is all about, that brings together all Indians across all walks of life to perform this particular yogasana, which is our mantra for healthy aging and to stay fit both physically and mentally.
1: जी, जैसा कि हमने कहा कि जल, थल, नभ सभी आज योग में होंगे, और अलग अलग जगह पर विभिन्न विद्यालयों में, कार्यालयों में, संस्थानों में योग के विशेष आयोजन होते रहे हैं। इन दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग 365 का उल्लेख किया, योग पार्क जो हैं वो डेडिकेटेड किए गए हैं, योग को समर्पित किए गए हैं। 100 दिनों के लिए ऑनलाइन माध्यम से योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दुनिया भर से लोग जुड़े। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उल्लेख किया कि 130 देशों से प्रतिभागी इसमें शामिल हुए। और हम बताना चाहेंगे अपने श्रोताओं को कि 14 जून को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। देशव्यापी योग सत्र में एक साथ 4,00,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया है, और ये ताकत है हमारी संस्कृति की, हमारी इस सभ्यता की, हमारे देश की, कि हम एक साथ एक भाव से जहां खड़े हो जाते हैं, हमारे पास संख्या बल भी इतना है, जनमानस का जो आत्मिक बल है वो भी इतना है कि जब हम एक साथ खड़े हो जाते हैं तो हम वर्ल्ड रिकॉर्ड उस समय बना लेते हैं। और हम अक्सर देखते रहे हैं कि अलग अलग जो आयोजन है उनकी जो स्मृति है वो संजो कर रखी जाती है। तो इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किए गए हैं, और कोलकाता तो आज एक विशेष रंग में रंगा हुआ है। स्थान स्थान पर योगाभ्यास वाले होर्डिंग्स हैं, बैनर्स हैं, स्टैंडीज लगे हैं। आज मेट्रो ने भी सुबह 4 बजे से पूरी रफ्तार से दौड़ लगाकर योग साधकों की सेवा की है। और जैसा कि आपने कहा कौशिक जी, कि हमारी नदियां जो हैं उन पर जो नाव सजती रहती हैं, उन्होंने भी आज एक अलग रूप दर्शाया है कि उन पर योगाभ्यास किया गया है। और पूरे देश में विशिष्ट 100 स्थानों पर

0: बड़ी संख्या में सामूहिक योगाभ्यास किया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि जब मैं ऑफिस आ रही थी तो इंडिया गेट पर मैंने देखा कि बहुत ही सुंदर तरीके से वहां पर योग साधक जुटे थे और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अपने एरियाज में विभिन्न माध्यमों से योग से जुड़ रहे हैं। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे जीवन शैली का हिस्सा है, क्योंकि योग जो है वो कोई आयोजन नहीं है, सभी का ये एक आत्मिक पल बन गया है, सभी की निजी उपलब्धि है आज के इस आयोजन में शामिल होना। विश्व भर में 2500 से ज्यादा स्थानों पर उत्सव के रूप में आज योग किया जाएगा और हम उन सभी विदेशियों को भी नमन करते हैं जो हमारे इस गर्व में शामिल हैं। आज पश्चिम बंगाल में कोलकाता में रेड रोड पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। इस बार की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग। आपने आकाशवाणी दिल्ली के माध्यम से ये प्रसारण सुना। मार्गदर्शन रहा मनीषा जैन का, प्रस्तुतकर्ता थे प्रमोद कुमार वत्स। मैं नीलम मलकानी अपने साथी कॉमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ और साथ ही हमारे दो विशेषज्ञ जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए, डॉक्टर प्रतिमा योग मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से आप, वहां पर सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ और परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनेश सिन्हा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। सभी को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए इस विशेष प्रसारण से अब अनुमति लेती हूँ। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: अभी आप रेड रोड कोलकाता पश्चिम बंगाल से 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित हुए सामूहिक योग प्रदर्शन का आंखों देखा हाल सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे नीलम मलकानिया हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में। कार्यक्रम में आमंत्रित विशेषज्ञ थे परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया। 8 बजने को हैं, अब कुछ पलों में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: और अब मुख्य समाचार। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के तीन स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और आग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में NEET UG पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे तीन टैंकरों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं,

0: तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
1: कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को शांतिपूर्ण बनाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संदेश में कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परम्परा का प्रतीक है, जो मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में योग सत्र में भाग लिया। भारत में नॉर्वे की राजदूत मेयलिन स्टेनर भी कार्यक्रम में शामिल हुईं। ब्रह्मकुमारी संगठन ने ऐतिहासिक लाल किले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इसमें लगभग 20,000 लोगों ने भाग लिया।

0: आज उत्तर प्रदेश में भी विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष और सभी राज्य मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने विभिन्न जिलों में आयोजित योग सत्रों में भागीदारी की। आज गुजरात में भी कई जिलों में योग सत्र आयोजित किए गए। मुख्य आयोजन गांधीनगर के मनसा में हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उपस्थित हैं। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद के प्रहलाद नगर में योग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ओडिशा में हजारों लोग योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। प्रमुख आयोजन विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रांगण में किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा ने आज पूरे देश के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जश्न बड़े उत्साह और लोगों की भारी भागदारी के साथ मनाया जा रहा है। इस साल के आयोजन के लिए चुने गए 12 खास हेरिटेज स्थलों में से एक मशहूर कोणार्क सूर्य मंदिर में एक भव्य योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। भुवनेश्वर में राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि योग जीवन का एक अहम हिस्सा है और इसके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग की थीम पर मनाए गए इस समारोह के साथ ही एक हफ्ते तक चल योग महोत्सव का समापन भी हुआ। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और संगठन योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शांति पथ पर समारोह में भाग लिया। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग वैश्विक स्तर पर पहुंचा है और इस अवसर पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। ये कार्यक्रम सदर इलाके गैरिसन ग्राउंड में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य लोगों को ध्यान के महत्व से अवगत कराना और मानसिक, शारीरिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है।
3: ध्यानेनात्मानि पश्यन्ते केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है, जिसका उल्लेख वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों में मिलता है। ये शरीर को स्वस्थ रखने, मन को एकाग्र करने, आत्म चेतना बढ़ाने और आंतरिक शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया है। योग की ही एक शाखा ध्यान भी है। ध्यान प्राणायाम के माध्यम से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर कुछ यूं कहा जाए कि ध्यान सचेतन नींद है और नींद अचेतन ध्यान, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ध्यान एक तरह निद्रा की ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति एक तरह की नींद में तो होता है, लेकिन साथ ही उस समय उसके भीतर पूर्ण चेतना

0: होती है। ठीक इसके उलट नींद में व्यक्ति चेतना में तो होता है, लेकिन उसके मन के भीतर तमाम तरह के विचार हिलोरे ले रहे होते हैं। वैज्ञानिक शोध भी ये सिद्ध करते हैं कि योग और ध्यान करने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और व्यक्ति की कार्यक्षमता बढ़ती है। विश्व योग दिवस हमें ये संदेश देता है कि आंतरिक शांति और संतुलन के बिना वैश्विक विकास की संकल्पना अधूरी है। इसीलिए कहा भी गया है कि योगः कर्मसु कौशलम्, अर्थात कुशलता के साथ कर्म करना ही योग है।
1: इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने वाले इन पोत का विकास नौसेना युद्ध पोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोत का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दुनागिरी ब्रह्मोस मिसाइल और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रह तटीय रक्षा के लिए टॉर्पीडो, रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा कि इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परीक्षा सफल रूप से कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
3: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। NTA भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक होर्मोज जलडमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेलाड। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। ये वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: 5 दिनों तक सिनेमा का शानदार उत्सव प्रस्तुत करने के बाद मिफ 2026 का आज समापन होगा। मिफ के अंतिम दिन महान फिल्मकार वी शांताराम की 125वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में उनकी स्मृति को समर्पित फिल्म वी शांताराम द पायनियरिंग स्पिरिट का प्रदर्शन होगा। आज शाम मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में आयोजित होने वाले समापन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्गों की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को कुल 18 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों में ट्रॉफी और प्रमाण पत्रों के साथ कुल 45,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि भी शामिल है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं असम के नौगांव जिले की जुमरमुर पंचायत के प्रयासों पर। इस पंचायत को हाल ही में स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये चर्चा आज सुबह 9:10 पर 100.1 फ्रीक्वेंसी पर आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर सुनी जा सकेगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में भी बृहस्पतिवार तक कुछ स्थानों में तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में इस महीने की 26 तारीख तक अत्यधिक बारिश की संभावना है। इस बीच विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने मछुआरों को इस महीने की 25 तारीख तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में न जाने की सलाह दी है। श्रीलंका में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अपने अंतिम राउंड रॉबिन मैच में अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत

0: दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती को 3-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर।
1: धन्यवाद फरहत। एनटीए ने सख्त सुरक्षा इंतजामों के साथ आज नीट यूजी पुनः परीक्षा कराने की तैयारी पूरी कर ली है। सभी समाचार पत्रों की ये पहली खबर बनी है। हिंदुस्तान लिखता है, अभूतपूर्व इंतजामों के बीच आज दोबारा नीट। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, नीट का शुद्धि योग, छात्रों से ज्यादा सिस्टम की परीक्षा। लेबनान में इसराइल के हमले, हारमूज फिर बंद, जनसत्ता की सुर्खी है। नवभारत टाइम्स ने भी इस खबर को अहमियत दी है। ईरान ने अमरीका को घेरा, इसराइल अपनी सुरक्षा पर अड़ा। मानसून की 2 हफ्ते की सुस्ती टूटेगी, 23 से फिर आगे बढ़ेगा, दैनिक भास्कर की खबर है। योग करने में भी महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा, दुनिया में योग का बिजनेस 12 लाख करोड़ तो भारत में 57,000 करोड़ पार, लोकसत्व की सुर्खी है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दैनिक जागरण ने भी योग को अपने संपादकीय पन्ने पर अहमियत दी है। पत्र लिखता है, मानवीय क्षमता बढ़ाता है योग। 7 सबसे ऊंचे शिखर छूने के करीब उत्तराखंड का युवा रुद्रप्रयाग के आकाश नेगी ने फतेह की यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, दुनिया के सभी महाद्वीपों के 7 शिखरों में से 6 पर फतेह की, अब अंटार्कटिका की बारी। आज फादर्स डे पर विशेष राजस्थान पत्रिका ने भावुक कर देने वाली खबर सचित्र प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, पिता नहीं रहे पर हर दिन मिल रहा उनका आशीर्वाद, प्रतिमाओं में स्मृतियां, हर शुभ कार्य से पहले लेते हैं बच्चे आशीर्वाद।
0: धन्यवाद रवि। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुनिया भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में नीट UG पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे 3 टैंकरों ने हुरमुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

सूरज की किरणों संग जागें, योग से जीवन को भाग्यशाली बनाएं। मजबूत शरीर शांत मन होगा, योग से जीवन स्वस्थ और सुखद होगा। इन्हीं विचारों के साथ आज के किसले कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी तृप्ति दीदी, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज की भागदौड़ भरी इस जीवन शैली में स्वस्थ रहना हम सब की प्राथमिक आवश्यकता है। बच्चों, हमारा शरीर हमारा सबसे अच्छा साथी है। अगर हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें आलस, बीमारियों जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बच्चों, योग एक ऐसी शारीरिक और मानसिक कसरत है जो हमारे शरीर में स्फूर्ति, उत्साह और हमें काफ़ी एक्टिव बनाए रखती है। बच्चों, जहाँ ताड़ आसन हमारे शरीर की मुद्रा यानी बॉडी पोस्चर को सुधारने में हमें पीठ दर्द, कंधों के दर्द से राहत देता है, वहीं वृक्षासन हमारे संतुलन और एकाग्रता को बढ़ाने में सहायता करता है। बच्चों, भुजंगासन से हमारी पीठ मजबूत बनती है, साथ ही शरीर में लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप योग रोज करेंगे। और जहाँ ये भी है बच्चों कि आज 21 जून को

वर्ल्ड योगा डे यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिसका उद्देश्य विश्व में सभी को योग के लाभ से अवगत कराना है। बच्चों, क्या आपको पता है योग हमारी प्राचीन परंपरा का एक अनमोल उपहार है, जो हमारे शरीर को मजबूत, मन को शांत और सोच को सकारात्मक बनाता है। बच्चों, वो कहते हैं ना, वसुधैव कुटुंबकम, इसका उद्देश्य होता है बच्चों कि पूरे विश्व एक परिवार है, और इसी प्रेरणा को और योग के लाभ को पूरे विश्व में प्रचार करने के लिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया जाता है। तो बच्चों, आज के दिन आप योग जरूर करें और अपने जीवन में ये प्रण करें कि आप योगासन से अपने शरीर, अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायता लेंगे। तो बच्चों, करते कार्यक्रम की शुरुआत इस गीत के साथ।

0: कभी आप भी खेल खेल में कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं होता? होता है ना, पता है बच्चों, जब मैं छोटी थी ना तो अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए कभी हम एस्ट्रोनॉट बनते, कभी हम डॉक्टर बनते, कभी हम इंजीनियर बनते और उसके बारे से जुड़ी हुई बातें करते। तो बच्चों, आज हमारे अगले क्रम इन्हें भी जाने में हम जानेंगे कि आकाशगंगा क्या होती है और इस पे हमें जानकारी देंगी सुश्री प्रतिज्ञा अय्यर। तो बच्चों, आइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: नमस्कार प्यारे बच्चों, आकाश की ओर देखना हम सभी को बहुत अच्छा लगता है। नीला और स्वच्छ आकाश, उसमें उड़ते हुए पक्षी, आकाश में दिखाई देने वाला इंद्रधनुष, उड़ता हुआ हवाई जहाज, टिमटिमाते तारे और चंदा मामा, ये सभी मिलकर आकाश को अत्यंत सुंदर बना देते हैं। ये सब तो हमें सहज ही दिखाई दे जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी रात के समय खुले आसमान को देखा है? कभी गांव में, छत पर या किसी खुले मैदान में खड़े होकर ऊपर चमकते तारों को, कितने सुंदर लगते हैं ना तारे? कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ ज्यादा चमकीले। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने काले आसमान पर लाखों छोटे छोटे दीपक जला दिए हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये तारे आखिर है क्या, कहाँ है? क्या ये बस यूं ही आसमान में बिखरे हुए हैं या इनका कोई घर है? तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अद्भुत रहस्य की जिसका नाम है आकाशगंगा। बच्चों, आकाशगंगा शब्द सुनते ही मन में एक सुंदर सी छवि बनती है, जैसे आसमान में कोई चमकती हुई नदी बह रही हो। पुराने समय में जब बिजली नहीं होती थी, जब मोबाइल, टीवी या बड़ी दूरबीन नहीं थी, तब आसमान को देखकर क्या सोचा जाता होगा? उस समय लोग तारों को देखकर कहानियां बनाते थे। कोई उन्हें देवताओं से जोड़ता था तो कोई उन्हें रास्ता दिखाने वाला मानता था। पुराने नाविक समुद्र में दिशा पहचानने के लिए तारों की मदद लेते थे। यानी तारे केवल सुंदर ही नहीं थे बल्कि लोगों के काम भी आते थे। और रात का आसमान बहुत साफ दिखाई देता था, तब लोग रात में एक सफेद धुंधली पट्टी आसमान में देखते थे। उन्हें लगता था मानो आसमान में दूध की नदी बह रही हो। इसी कारण अंग्रेजी में आकाशगंगा को मिल्की वे यानी दूध जैसा रास्ता कहा जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर आकाशगंगा होती क्या है? तो इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। आकाशगंगा एक बहुत बड़ा परिवार है जिसमें अरबों खरबों तारे, ग्रह, धूल और गैसें मौजूद है। हमारा सूर्य भी इसी आकाशगंगा का हिस्सा है। जी हाँ, वही सूर्य जो हर सुबह हमें रोशनी देता है, वह भी इस विशाल परिवार का एक सदस्य है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि हमारी आकाशगंगा इतनी बड़ी है कि अगर हम किसी बहुत तेज रॉकेट में बैठकर एक कोने से दूसरे कोने तक जाए तो भी हमें लाखों साल लग जाते हैं। सोचिए, इतनी विशाल दुनिया है हमारी। अब जरा पृथ्वी के बारे में सोचिए। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वह सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी के अलावा बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि जैसे कई ग्रह भी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। लेकिन बच्चों, हमारा यह सौरमंडल पूरी आकाशगंगा का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक वैसे ही जैसे किसी बहुत बड़े शहर में आपका घर केवल एक छोटी सी जगह होता है। अब मजेदार सवाल, क्या पृथ्वी आकाशगंगा के बिल्कुल बीच में है? अगर आप सोच रहे होंगे हाँ, तो जवाब है नहीं। हमारा सूर्य और पृथ्वी आकाशगंगा के किनारे की ओर मौजूद है। यानी हम इस विशाल व्यवस्था के बीच में नहीं बल्कि उसके एक छोटे हिस्से में रहते हैं। इसे हमें एक बहुत खास बात

जाती है। दुनिया हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है। बच्चों, आपने कभी रात में टूटता हुआ तारा देखा है? बहुत लोग कहते हैं कि टूटता तारा देखकर मन में इच्छा मांगो तो वह पूरी हो जाती है, लेकिन असल में वह तारा नहीं होता, वह अंतरिक्ष का एक छोटा सा पत्थर होता है जो पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते समय जलने लगता है और चमकता हुआ दिखाई देता है। विज्ञान हमें ऐसी कई रोचक बातें सिखाता है। अब सोचिए, हमारी आकाशगंगा में इतने सारे तारे हैं, क्या उनमें से किसी के पास भी ग्रह होंगे? और क्या कहीं और भी जीवन हो सकता है? वैज्ञानिक आज भी इस सवाल का जवाब खोजने में लगे हैं। बड़े बड़े टेलीस्कोप यानी दूरबीन की मदद से वैज्ञानिक अंतरिक्ष को समझने की कोशिश करते हैं। वे यह जानना चाहते हैं कि क्या पृथ्वी की तरह कहीं और भी जीवन संभव है। बच्चों, विज्ञान की सबसे अच्छी बात यह

0: वैज्ञानिक आज भी इस सवाल का जवाब खोजने में लगे हैं। बड़े बड़े टेलीस्कोप यानी दूरबीन की मदद से वैज्ञानिक अंतरिक्ष को समझने की कोशिश करते हैं। वे यह जानना चाहते हैं कि क्या पृथ्वी की तरह कहीं और भी जीवन संभव है। बच्चों, विज्ञान की सबसे अच्छी बात यह है कि यह हमें सवाल पूछना सिखाता है। अगर किसी बच्चे के मन में सवाल उठे, आसमान नीला क्यों है या चांद हमारे साथ साथ क्यों चलता लगता है, तो वही सवाल आगे चलकर नई खोजों की शुरुआत बन सकते हैं। आपने शायद नाम सुना होगा, कल्पना चावला। उन्होंने बचपन से ही आसमान और उड़ने के सपने देखे थे। आगे चलकर वे अंतरिक्ष तक पहुंची और दुनिया भर के बच्चों के लिए प्रेरणा बन गई। इसका मतलब है कि छोटे सपनों की शुरुआत छोटे सवालों से ही होती है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर आप एक रात आप किसी पहाड़ी पर खड़े हो, आसपास कोई रोशनी ना हो और ऊपर बिल्कुल साफ आसमान दिखाई दे, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे तारे आपके बहुत करीब हैं। उसी समय आप शायद हमारी आकाशगंगा की हल्की सी चमक भी देख सके। कितना अद्भुत अनुभव होगा ना। लेकिन बच्चों, एक समय ऐसा भी था जब लोगों को लगता था कि पृथ्वी ही पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। बाद में वैज्ञानिकों ने खोज करके बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। फिर धीरे धीरे हमें पता चला कि सूर्य भी अकेला नहीं है, वह तो आकाशगंगा का हिस्सा है। और सबसे रोचक बात यह है कि केवल हमारी ही आकाशगंगा नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड में ऐसे करोड़ों अरबों आकाशगंगाएं मौजूद है, कुछ गोल आकार की, कुछ लंबी और कुछ घुमावदार। अब सोचिए, अगर हमारी आकाशगंगा ही इतनी बड़ी है तो पूरा ब्रह्मांड कितना विशाल होगा। कभी कभी ऐसी बातें सुनकर मन में आश्चर्य होता है कि हम कितने छोटे हैं, लेकिन साथ ही गर्व भी महसूस होता है कि इंसान ने अपनी बुद्धि और मेहनत से अंतरिक्ष के इतने सारे रहस्यों को समझना शुरू किया है। हो सकता है कि आप में से कई बच्चे आगे चलकर वैज्ञानिक बने, अंतरिक्ष यात्री बने या ऐसी नई मशीन बनाए जो हमें ब्रह्मांड को और अच्छे से समझने में मदद करे। इसलिए समझते रहिए, सीखते रहिए, किताबें पढ़िए, सवाल पूछिए और अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखिए। तो बच्चों, अगली बार जब आप रात में आसमान की ओर देखिए, तो केवल टिमटिमाते तारों या चांद को ही मत देखिएगा, बल्कि यह जानने और खोजने का प्रयास कीजिए कि उस विशाल आकाशगंगा में हम कहाँ है। यह सोचिएगा कि आप अपनी विशाल आकाशगंगा की एक छोटी सी झलक देख रहे हैं, और जब आप उसे देखने का प्रयास करें तो उस अनुभव से आपको कैसा महसूस हुआ, यह बात अपने माता पिता, भाई बहनों, रिश्तेदारों और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपकी दीदी प्रतिज्ञा अय्यर आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।
1: प्यारे बच्चों, आप अभी सुन रहे थे इन्हें भी जाने क्रम में क्या होती है आकाशगंगा, और इसकी जानकारी दे रही थी सुश्री प्रतिज्ञा अय्यर। बच्चों, सच में सितारों की दुनिया बहुत ही गजब है ना बच्चों? तो इस सितारों की दुनिया को और जानते हैं इस गीत के साथ।

प्यारे बच्चों, सच में तारों की दुनिया तो बड़ी ही अच्छी है। और बच्चों, जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि आज 21 जून यानी कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, तो बच्चों इसी से जुड़ा हुआ एक प्रेरक प्रसंग मैं आपको सुनाती हूँ। प्यारे बच्चों, बहुत पुराने समय की बात है, एक छोटे से आश्रम में एक बालक शिक्षा प्राप्त करने गया। वह बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक प्रश्न रहता था। ये प्रश्न था कि मनुष्य अपने विचारों और जीवन

को बेहतर कैसे बना सकता है। ये बात जब उस बालक ने अपने गुरु से पूछी तो उन्होंने कहा, जीवन में सफलता केवल ज्ञान से नहीं बल्कि अनुशासन, अभ्यास और धैर्य से मिलता है। इसके बाद वह बालक गुरु के बताए मार्ग पर चलने लगा। वह बहुत लगन से अध्ययन करने लगा। वो रोज कठिन अभ्यास करता, ध्यान लगाता, मन को नियंत्रित करने के लिए, एकाचित्र करने के लिए घंटों प्राणायाम व्यायाम करता। उन्हें कई बार कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। उस बालक ने योग दर्शन में वो महारत हासिल किया और आगे जाकर उन्होंने योग के अष्टांग योगों को समझाया। उन्हें योग दर्शन के प्रमुख आचार्यों के रूप में जाना जाता है। बच्चों, वो बालक जिन्होंने अपने योग सूत्र से मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा को संतुलन बनाए रखने के लिए जो सूत्र दिए, वो कोई और नहीं, वो थे महर्षि पतंजलि। बच्चों, महर्षि पतंजलि का मानना था कि जीवन में अभ्यास, अनुशासन और धैर्य ही जीवन को सफल बनाने में सहायक है, और योग वो माध्यम है जो शांति, एकाग्रता और ऊर्जा का संचार करने का मार्ग बताता है। बच्चों, जो मनुष्य शरीर और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। तो बच्चों, जरूरी है कि आप अपने जीवन में योग को जरूर शामिल करें, जो हमें एकाग्रचित होने और स्फूर्ति भरा जीवन जीने के लिए सहायक होता है। तो बच्चों, आइए इसी के साथ सुनते हैं ये गीत।

प्यारे बच्चों, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं आपसे विदा लेने का। तो बच्चों, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ बनाए रखने के लिए योग करिए। बच्चों, पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए और दीजिए अपनी तृप्ति दीदी को इजाज़त। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद।

नन्ही श्रोता सुन रही थी अपना कार्यक्रम किसलय। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम खेल संसार। प्रस्तुत करता है रमा शंकर।

श्रोताओं नमस्कार, खेल संसार कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, खेल संसार कार्यक्रम में आज हम लेकर आए हैं कुछ साप्ताहिक खेल समीक्षा और बात करेंगे छत्तीसगढ़ एमेच्योर बॉक्सिंग संघ के स्टेट सेक्रेटरी हैं अमल यादव से। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम खेल संसार साप्ताहिक खेल गतिविधियों से। पांच बार की वर्ल्ड चैंपियन ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 में अपनी पहली जीत दर्ज की है। इस जीत से ब्राजील ग्रुप सी के टॉप पर आ गई, जबकि हैती टूर्नामेंट से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के फॉरवर्ड माथियस कुन्हा को इस मैच की स्टार्टिंग 11 में मौका मिला। उन्होंने 23वें और 36वें मिनट में गोल किए। एक गोल विनिसियस जूनियर ने किया। 24 जून को ब्राजील का मैच स्कॉटलैंड से होगा, जबकि हैती अपने अंतिम ग्रुप मैच में मोरक्को से भिड़ेंगे। मेजबान अमेरिका ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 में प्रवेश कर लिया है। उसने शनिवार के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हरा दिया। अमेरिकी टीम ने 32 साल बाद नॉकआउट राउंड में जगह बनाई है, जबकि तुर्की एक अन्य मैच में पराग्वे से हारकर बाहर हो गई। भारत ने वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी जीत दर्ज करते हुए नीदरलैंड को 95 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 200 रन बनाए। यह टूर्नामेंट में उसका सबसे बड़ा स्कोर रहा। जवाब में नीदरलैंड ने 17 ओवर 3 गेंदों में 114 रन पर ही ऑल आउट हो गई। हेडिंग्ले के लीड्स स्टेडियम में खेले गए इस मैच में स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने जीत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट लिए और 115 रन की साझेदारी की। मंधाना ने 74 और शेफाली ने 55 रन बनाए। मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। बॉलिंग में श्री चरणी ने 4 विकेट लिए, वहीं शेफाली वर्मा ने भी 3 विकेट लिए। चोट से उभरने के बाद खेल में लौटे भारत की स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का प्रदर्शन शुक्रवार को दोहा डायमंड लीग में औसत रहा। राजधानी रायपुर में टेबल टेनिस संघ द्वारा स्वर्गीय रमाबाई काले एवं स्वर्गीय रामराव काले स्मृति रायपुर जिला मानसून लीग टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2026 सप्रेशाला टेबल टेनिस हॉल में कराई जा रही है। आयोजन के सचिव ने बताया है कि यह प्रतियोगिता 2 चरणों में कुल 12 आयु वर्गों में आयोजित होगी। पहला चरण 26 से 28 जून तक होगा। इसमें कुल 6 वर्गों के मुकाबले होंगे, जिसमें यूथ अंडर 19, बालक बालिका एकल, अंडर 15 सब जूनियर, बालक बालिका एकल और अंडर 11 होप्स, बालक बालिका

0: कल शामिल हैं। इसके लिए खिलाड़ी 22 जून की शाम 7 बजे तक अपनी एंट्री दे सकते हैं। दूसरे चरण में सीनियर पुरुष महिला एकल यूथ अंडर 17 जूनियर बालक बालिका एकल और अंडर 13 कैडेट बालक बालिका एकल के कुल 6 वर्गों की स्पर्धाएं होंगी। इस चरण के लिए एंट्री की आखिरी तारीख 13 जुलाई की शाम 7 बजे तक तय की गई है। ये तो थी कुछ साप्ताहिक खेल समीक्षा। श्रोताओं आइए चलते हैं भेंटवार्ता की तरफ। श्रोताओं खेल संसार कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ ए मैच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन के स्टेट सेक्रेटरी अमन यादव से। श्रोताओं खेल संसार कार्यक्रम में हम कोशिश करते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के खेलों को हम आकाशवाणी के माध्यम से लोगों तक पहुँचाएं और हमारे छत्तीसगढ़ के उभरते हुए जो खिलाड़ी हैं उनके बारे में हम जानकारी श्रोताओं तक पहुंचाएं। श्रोताओं इसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं अमन यादव जी से जो छत्तीसगढ़ एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन में स्टेट सेक्रेटरी हैं। तो अमन जी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है
1: जी। नमस्कार।
0: तो अमन जी सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे आपके बारे में कि आप खेलों की जो एसोसिएशन है किन किन एसोसिएशन से जुड़े हैं और आप खेलों में कब से सक्रिय हैं।
1: जी मैं तो खेल के वो में देखा जाए तो मैं क्लास 5th क्लास से खेल में काफ़ी रूप से सक्रिय हूँ
0: जी।
1: कक्षा 7वीं से मैंने खेल से जुड़ चुका था मार्शल आर्ट से, जिसमें मैंने मियोथाई हो गया, कराटे हो गया, जूडो हो गया, बॉक्सिंग हो गया। इससे तो मैंने पहले स्वयं खिलाड़ी की भूमिका में रहा और लगातार 10 साल तक राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल करके छत्तीसगढ़ राज्य को पदक दिलाया, राज्य सरकार से खेल अलंकरण भी मिला मुझे। और उसके बाद हमारी स्वयं की एक एकेडमी स्थापित की देवेंद्र नगर में विवेकानंद मार्शल आर्ट फिटनेस क्लब के नाम से, जहाँ पे प्रतिदिन लगभग 80 से 100 बच्चे अभ्यास करते विभिन्न मार्शल आर्ट्स का और वो सभी खिलाड़ी स्टेट नेशनल खेलो इंडिया नेशनल गेम सभी लेवल पे पार्टिसिपेट कर रहे और मेडल्स लेकर के भी आ रहे हैं।
0: जी जी जी। तो आप जिन जिन खेलों में रहे हैं या जिन जिन खेलों को आपने खेला उसके बारे में एक संक्षिप्त हम आपसे जानना चाहेंगे, प्रतियोगिताएं रही हूँ इसके एक संक्षिप्त विवरण हम चाहेंगे आपसे।
1: जैसे कि मैं बता देना चाहूँ कि मियोथाई खेल के बारे में हो गया, तो मियोथाई खेल में मैंने जो वर्ल्ड चैंपियनशिप बेलारूस है वहाँ पे मैंने भाग लिया था
0: जी।
1: और इसके अलावा कराटे में भी नेशनल में पार्टिसिपेट करके वहाँ पे भी मैंने गोल्ड मेडल लेकर के आया था। साथ ही साथ केरल में जूडो में भी पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा बॉक्सिंग में भी स्टेट चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया था। और लगातार खेलों में सक्रियता को देखते हुए जो खेल संघ हो गए मियोथाई खेल संघ, बॉक्सिंग खेल संघ, उन्होंने मुझे एसोसिएशन की भी जिम्मेदारी दी गई और अभी वर्तमान में मुझे बॉक्सिंग एसोसिएशन में स्टेट सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी गई है। और हाल ही में हमने छत्तीसगढ़ में बॉक्सिंग को कैसे डेवलप किया जाए इसको लेकर के हम लगातार कार्य करते जा रहे हैं। और अभी अंबुजा मॉल में एक भव्य आयोजन किया गया था बॉक्सिंग फाइट नाइट का, जहां पे एक प्रोफेशनल लेवल की फाइटिंग वहां पे करवाई गई थी बॉक्सिंग के, ताकि खिलाड़ी उस स्तर पे पार्टिसिपेट कर सके और काफ़ी अच्छा वातावरण बॉक्सिंग को लेकर के पूरे छत्तीसगढ़ में निर्माण हो रहा है।
0: जी जी जी बहुत अच्छी बात है। तो अमन जी जैसा आपने बताया कि छत्तीसगढ़ ए मैच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन में भी आप कार्य कर रहे हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में बॉक्सिंग के लिए कोई भी नाम काफ़ी विरले सुनने को मिलता है, तो ऐसा क्यों होता है?
1: ऐसे इसलिए कि पूर्व में जो खेल संघ जो चल रही थी बॉक्सिंग में, वो बॉक्सिंग को लेकर की उतनी गंभीरता नहीं रही थी और अभी फिर से नए तरीके से उसको कार्य किया जा रहा है और खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म देने का प्रयास कर रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन जितने भी खिलाड़ी छत्तीसगढ़ के भाग लेंगे उनके लिए पार्टिसिपेट करना पूरी तरीके से निःशुल्क होगा, उनको एक अच्छे स्तर का होटल प्रोवाइड किया जाएगा उनको रुकने के लिए। और जो खिलाड़ी, सबसे बड़ी बात यह है कि केवल विजेताओं को पुरस्कार नहीं मिलेगा, जो खिलाड़ी मैच हारेंगे भी तो उनको भी प्रोत्साहन राशि देने का कार्य छत्तीसगढ़ एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन कर रही है।
0: जी जी जी। तो ये बहुत अच्छी पहल है। और अमन जी जब हम बॉक्सिंग की बात करते हैं तो खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं की जो है वो काफ़ी आवश्यकता होती है, तो जो अमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन है खिलाड़ियों की सुविधाओं के लिए कैसे कार्य कर रहे हैं?
1: उसके लिए जैसे कि हमारे जो खेल संघ है और जो खेल संघ के जितने भी हमारे प्रांतीय पदाधिकारी, अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करें चाहे राज्य स्तर पर बात करें, वह सभी अपने स्तर पर अलग अलग बड़े बड़े कंपनियों से स्पॉन्सरशिप कराती है खिलाड़ियों के लिए, ताकि वे उनको एक अच्छा मंच मिल सके। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि अभी जो दिल्ली में बॉक्सिंग लीग जो होने वाला है वो एक IPL के तर्ज पे एक बॉक्सिंग खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा माहौल वहां पे होने वाला है, जो इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा कराई जा रही है।
0: तो अमन जी ये जो बॉक्सिंग लीग आपने बताया दिल्ली में होने वाला है, तो उससे वहां जाने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ में क्या तैयारियां हो रही हैं?
1: उसको लेकर के हमारे जो खिलाड़ी जो सिलेक्शन ट्रायल चल रहा है उसमें भाग ले रहे हैं खिलाड़ी, और जो खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करेंगे वो उस लीग में पार्टिसिपेट करेंगे।
0: जी जी। तो इसमें खिलाड़ियों के लिए क्या योग्यताएं होती हैं?
1: इसमें खिलाड़ियों को मतलब अपने स्तर पे उनको सिलेक्शन होना पड़ता है, जैसे कि जो टॉप की जो खिलाड़ी रहते हैं उनको वहाँ पे स्थान मिलती है अपनी वेट कैटेगरी में।
0: जी। और अमन जी जब बॉक्सिंग के लिए हम बात करते हैं तो इसमें

0: एज ग्रुप ही होता है क्या?
1: जी,
0: तो इसमें कौन कौन से एज ग्रुप हो सकते हैं?
1: इसमें सभी प्रकार के एज होते हैं, इसमें सब जूनियर, जूनियर, सीनियर, ऐसे तीन कैटेगरी होते हैं, तो उस कैटेगरी में पार्टिसिपेट करते हैं।
0: जी। और बॉक्सिंग के लिए अगर हम बात कर रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ की, तो जैसे यहाँ पे जितने जिले हैं हमारे, तो उन सब जिलों में अभी कहाँ कहाँ जो है ऐसे खिलाड़ी हमको देखने को मिल सकते हैं जिनको हम राष्ट्रीय स्तर पर ले जा सकते हैं, और वहाँ जो संघ किस तरह कार्य करते हैं?
1: अगर हम जिले की बात करें तो छत्तीसगढ़ के कोई भी जिला ऐसा चुका नहीं कि जो आगे खेल ना सके, सभी जिले में प्रतिभावान खिलाड़ी है। लेकिन हम विशेष रूप से बात किया जाए तो हमारे रायपुर हो गए, बिलासपुर हो गए, भिलाई हो गए, दुर्ग हो गए, अपने बस्तर हो गए, ये सभी क्षेत्र से बालोद जिला हो गए, यहाँ से बहुत से प्रतिभावान खिलाड़ी है जो बेहतरीन प्रदर्शन कर और राष्ट्रीय स्तर पर भाग भी ले रहे हैं।
0: जी। और अमन जी, आपने बताया कि आप बॉक्सिंग से पहले भी और म्यूथाई और कलारीपयट्टु खेल से भी जुड़े रहे हैं, तो इन सब खेलों के लिए अभी छत्तीसगढ़ में जो माहौल बन रहा है, तो आने वाले समय में इसके लिए कहाँ कहाँ आप लोग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएंगे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के लिए?
1: देखिए, खेल को लेकर के भी बहुत अच्छे एक सकारात्मक वातावरण इस पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में है। जैसे यहाँ पे खेलो इंडिया का ट्राइबल गेम्स हुआ, बस्तर ओलंपिक हुआ, तो एक बहुत अच्छा वातावरण खिलाड़ियों के लिए बन चुका है खेल को लेकर के, और एक जागरूकता भी आ चुकी है। और निश्चित तौर पर ये जो खिलाड़ी फिर से आगामी जो होने वाले जो खेलो इंडिया हो गया, नेशनल गेम्स हो गया, इंटरनेशनल चैंपियनशिप होगी, वो सब प्लेटफॉर्म इनको मिलेगा और उसमें उन लोग पार्टिसिपेट करेंगे।
0: जी, तो अमन जी, जैसे आपने बताया कि बस्तर ओलंपिक और जैसे एक सरगुजा ओलंपिक का भी आयोजन बीते दिनों किया गया था, बीते माह, तो ऐसे खेलों से छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को भविष्य में क्या फ़ायदा होने की उम्मीद है?
1: नहीं, निश्चित तौर पे जिस प्रकार से खिलाड़ी अभी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, जहाँ पे कभी बंदूक हुआ करती थी, आज उस क्षेत्र में आज अगर खिलाड़ी हॉकी स्टिक पकड़े, क्रिकेट बैट पकड़ रहे, बॉक्सिंग ग्लव्स पहन रहे, तो निश्चित तौर पे और वो इतने प्रतिभावान लोग हैं कि उनको एक सही मंच की आवश्यकता थी और वो मंच अब उनको मिलना स्टार्ट हो गया है। और जिस पूरी उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ को आगामी जो नेशनल चैंपियनशिप, एशियन गेम्स, ओलंपिक में पदक लेकर के आके राज्य का नाम रोशन करेंगे।
0: जी। तो अमन जी, हम फिर से लौटते हैं एक बार बॉक्सिंग की तरफ, चूंकि आप छत्तीसगढ़ एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन में स्टेट सेक्रेटरी हैं, तो एक स्टेट सेक्रेटरी होने के नाते जो बॉक्सिंग का हमारा छत्तीसगढ़ में स्वरूप है, इसको बच्चों को किस तरह डेवलप आप लोग करेंगे जिससे कि भविष्य में हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने को तैयार हो सकते हैं?
1: इसके लिए सर, सबसे पहले हम जो विभिन्न जो जिला हो गए, तो जिला में जिला स्तरीय प्रतियोगिता हो गया, वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप करवाना, वहाँ पे कुछ दिन का विशेष इंटरनेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी कोच के माध्यम से वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप करवाना, उसके बाद उनको स्टेट तक लेकर के जाना, स्टेट में कैंप कराना, तो इन माध्यम से हम छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को डेवलप कर रहे हैं।
0: जी। और जैसा कि आपने बताया कि इसमें जो कई कैटेगरी होते हैं, वेट कैटेगरी और इस तरह के होते हैं, तो इसमें इन सारे नियमों को देखा जाए, जो खिलाड़ी यहाँ पे तैयार हो रहे हैं, हम देखा जाए जूनियर कैटेगरी के बच्चे होते हैं, तो उन्हें जो स्कूल्स के साथ जब वो पढ़ते भी हैं, साथ में वो पढ़ाई भी करते हैं, साथ में उनके खेल भी चलते हैं, तो उनके टाइम के हिसाब से किस तरह मैनेज करते हैं आप लोग?
1: देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट की जैसे कि आप बात करो, एक खिलाड़ी अगर अपने टाइम को प्रॉपर तरीके से मैनेज करे तो पढ़ाई में भी वो टॉप करेगा और स्पोर्ट्स में भी टॉप करेगा।
0: जी,
1: है ना। बस ये रहेगा कि जो अदर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा जो मोबाइल में इंगेज हो जाते हैं, तो वो सब टाइम वेस्ट करने से हमको बचना है और हमको पॉजिटिव डायरेक्शन पे अपने टाइम को देना है।
0: जी,
1: हम प्रॉपर टाइम से पढ़ाई करते हैं, प्रॉपर टाइम से अगर हम स्पोर्ट्स को समय देते हैं, तो हमको हर तरीके से अचीवमेंट्स मिलेगा।
0: बिल्कुल। तो अमन जी, जैसा कि हम देखते हैं कि आजकल जो मोबाइल्स के यूजर्स सबसे ज्यादा बच्चे हैं, वो अपना समय जो है मोबाइल में काफी व्यतीत करते हैं, तो यदि वो बच्चे उस समय को खेलों से जोड़ दे और खेलों में अपना रुचि निभाए, तो आप देखते हैं कि क्या उनमें परिवर्तन आ सकता है? और दूसरी तरफ हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों के लिए फाउंडेशन लेवल से खेलों का क्या महत्व होता है?
1: देखिए, जैसे कि अगर हम बेसिक फाउंडेशन लेवल पे अगर बातचीत करें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पेरेंट्स का। पेरेंट्स ही उनको डायरेक्टली मोबाइल की ओर इंगेज करा देते हैं। कम से कम आज की डेट में, पहले के जनरेशन में ये होता था कि बच्चे खुद से जाते थे ग्राउंड पे, खेलते थे, ग्रुप बनती थी, दोस्त लोग भी फ्रेंड, लेकिन वो धीरे धीरे वो कमी आते जा रही है और उसकी जगह वो मोबाइल वीडियो गेम्स पे ग्रुप बनाने स्टार्ट कर दिए, ना कि ग्राउंड पे ग्रुप बनाने स्टार्ट कर दिए। तो मैं तो ये कहूँगा कि पेरेंट्स उसमें विशेष रूप से ध्यान दें और कहीं ना कहीं एकेडमी हो गया, कहीं ना कहीं एक स्पोर्ट्स पे वो ज्वाइन कराए। और पेरेंट्स को भी ये माइंडसेट चेंज करना चाहिए कि स्पोर्ट्स एकेडमी जाने से उनका पढ़ाई लॉस होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप उनको किसी एकेडमी में किसी प्लेटफॉर्म देते हो खेलने के लिए, तो उनका रूटीन काफ़ी परफेक्ट हो जाता है, उनका मतलब कैचिंग करने की, स्टडी करने की पावर भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आ जाती है।
0: जी, बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई है। तो अमन जी, कार्यक्रम में चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक जो खिलाड़ी भावना होती है, खेल भावना होती है, वो अपने घर के, अपने प्रदेश के, अपने राज्य के, अपने देश के लिए वो विकास में कितना सहायक

0: होती है?
1: देखिए, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है फिट होना
0: जी।
1: एक खिलाड़ी अगर एक खेल का वातावरण बनाते हैं अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने शहर में, तो वहां से नशा दूर होती है, जो एक देश को मजबूत बनाने में बहुत बड़ी भूमिका प्ले करती है।
0: जी जी जी, बहुत बहुत ही अच्छी बात और काफ़ी प्रेरणादायी बात यह है कि जब हम खेलों से जुड़ते हैं तो हम उन व्यसन से दूर रहते हैं जो हमें हानि पहुंचाती है, जिससे हमें हमारे स्वास्थ्य की भी हानि होती है, हमारे धन की भी हानि होती है। तो श्रोताओ, हम चाहेंगे कि अमन जी ने जिन बातों को बताया है वे बच्चे उसका अनुसरण करें और खेलों को अपने जीवन में शामिल करें, क्योंकि खेलने से ना केवल हम चुस्त दुरुस्त रहते हैं बल्कि हमारा शारीरिक विकास भी बेहतर ढंग से हो पाता है। तो अमन जी, कार्यक्रम में आप आए और हमारे श्रोताओं से अपनी बातें साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत धन्यवाद।
0: खेल संसार कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।

खेल संसार कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुतकर्ता थे रमा शंकर। मीडियम वेव 305.81 मीटर और यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:15 हुए हैं। अब पेश है चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत प्रेम पुजारी फिल्म से, आवाजें किशोर कुमार और भूपेंद्र सिंह की, गीत नीरज का, संगीत एसडी परमन का।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: चित्रपट संगीत का अगला गीत रजनीगंधा फिल्म से, आवाज मुकेश की, गीतकार हैं योगेश, संगीतकार सलील चौधरी।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: किशोर कुमार की आवाज में लीजिए अब सुनिए नीरज का लिखा गीत। संगीत SD बर्मन का है, फिल्म है शर्मिली।

0: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
0: कहाँ?
1: एडमिशन कराने,
3: खाता हुआ एक्टिव।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: देवता फिल्म का ये गीत था किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। गुलजार के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया आरडी बर्मन ने।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर। कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
2: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
3: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए।
1: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं। कभी कोई किस्सा याद आता है। कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
4: मुझे कुछ कहना है,
5: मुझे भी कुछ कहना है।
1: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर। सुनिए

कार्यक्रम के आखिर में सुनिए वारिस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की आवाजों में। शब्द रचना वर्मा मलिक की है, संगीत है उत्तम जगदीश का।

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:40 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत। लोक संगीत के आज के इस कार्यक्रम में कलाकार हैं दुलारी बाई वर्मा और साथी। इनके स्वर में पहले सुनते हैं ये गीत।
1: माथा नवा

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: लोक संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार

0: लोक संगीत अभी आप सुन रहे थे, कलाकार थे दुलारी बाई वर्मा और साथी। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:55 होने को है अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि योग सबको जोड़ता है और सबको साथ लाता है। अंबिकापुर में आयोजित किए जा रहे राज्य स्तरीय सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। और एनटीए द्वारा आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस अवसर पर देश भर में आयोजित कार्यक्रमों में लोग योगाभ्यास कर रहे हैं। इस वर्ष का विषय स्वस्थ आयु के लिए योग रखा गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आज नई दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित योग कार्यक्रम में 1,500 वरिष्ठ नागरिकों ने योग किया। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्यप्रदेश के जबलपुर में योग कार्यक्रम में शामिल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि दुनिया के कुछ हिस्सों में 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है और योग के कारण यह सबसे बड़ा सामुदायिक उत्सव बन गया है। उन्होंने ये कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि भावना की अभिव्यक्ति और यह किसी आयु वर्ग तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि योग सबको जोड़ता है और सबको साथ लाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर छत्तीसगढ़ में भी सामूहिक योगाभ्यास के अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। अंबिकापुर स्थित पीजी कॉलेज ग्राउंड में राज्य स्तरीय सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने की। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष संजय अग्रवाल भी अति विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी की। इस किस्त के तहत देश भर के किसानों के खातों में राशि अंतरित की गई। छत्तीसगढ़ के 24 लाख से अधिक किसान परिवारों को 490 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता मिली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर जिले के कुनकुरी में वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल हुए और किसानों के साथ प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों की समृद्धि के बिना विकसित भारत की कल्पना पूरी नहीं हो सकती। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि किसानों को खेती के लिए जरूरी आर्थिक सहयोग उपलब्ध करा रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा आज छत्तीसगढ़ सहित देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थियों को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 तक ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद आने वाले किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं मिलेगा। इस बीच दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने नीट परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए विशेष रेल सेवाओं की व्यवस्था की है। रेलवे द्वारा कोरबा दुर्ग कोरबा के बीच मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का संचालन आज भी किया जाएगा। इसके अलावा हसदेव एक्सप्रेस का अस्थायी विस्तार दुर्ग तक किया गया है। लोकभवन रायपुर में कल एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत पश्चिम बंगाल, गोवा और तेलंगाना राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया। राज्यपाल रमेश डेका ने कहा कि विभिन्न राज्यों की भाषा, कला और संस्कृति से जुड़ाव

0: देश की एकता और अखंडता को मजबूत करता है। कार्यक्रम में तीनों राज्यों की संस्कृति, परंपराओं और विशेषताओं को प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया गया। कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आएंगे। कांग्रेस के इस शिविर में प्रदेश भर के जिला अध्यक्षों और संगठन पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। जशपुर वनमंडल ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया कीर्तिमान बनाया है। वनमंडल ने एक दिन में 2,00,000 से अधिक सीड बॉल के प्रसार और रोपण कर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में वनमंडल को इसका प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। बीज गोला बनाबो, जशपुर के जंगला बढ़ाबो अभियान में ग्रामीणों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों ने भागीदारी निभाई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि योग सबको जोड़ता है और सबको साथ लाता है। अंबिकापुर में आयोजित किए जा रहे राज्य स्तरीय सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। और एनटीए द्वारा आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी रायपुर है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का यह रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10 बजे हैं। अब पेश है चित्रपट संगीत।

हीरोपंती फिल्म का ये गीत था मोहित चौहान की आवाज में। कौसर मुनीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया साजिद वाजिद ने। कार्यक्रम का अगला गीत अजहर फिल्म से, आवाजें अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की, गीत मनोज यादव का, संगीत है प्रीतम का।

आशिकी 2 फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे पलक मुच्छल और अरिजीत सिंह की आवाजों में। इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया जीत गांगुली ने। कार्यक्रम का अगला गीत हंसी तो फंसी फिल्म से, आवाजें सनमपुरी और क्षिप्रा गोयल की। गीत लिखा है कुमारनी, संगीत विशाल शेखर का है।

हेट स्टोरी 3 फिल्म का गीत अभी आप सुन रही थी, मिथुन, जुबिन नौटियाल और अमृता सिंह की आवाजों में। गीत लिखा मनोज मुंतशिर ने, संगीत मिथुन का था। कार्यक्रम के आखिर में सुनिए आई हेट लव स्टोरी फिल्म का गाना, श्रेया घोषाल और सोना मोहापात्रा की आवाजों में। शब्द रचना कुमार कहे और संगीत है विशाल शेखर का।

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए परिचर्चा, जीवन से जुड़ा योग। प्रतिभागी हैं श्री प्रमोद मेने और श्री राघवेंद्र शर्मा। संचालन कर रहे हैं राजेश कनोदवाले।
1: नमस्कार। जीवन से जुड़ा है योग। भारत की अनेक ऐसी सांस्कृतिक परंपराएं हैं जिसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण परंपरा योग की है। बहुत सारे लोग योग को यह भी मानकर चलते हैं कि सांसों पर नियंत्रण का नाम योग है, या आप आंख बंद, आपने आंखें बंद की हैं और आप अपनी सांसों पर नियंत्रण कर रहे हैं। संभवतः योग का एक अध्याय ये हो सकता है, लेकिन योग इससे कहीं बहुत विशाल और बहुत विस्तार के साथ देखने और समझने की चीज का नाम है। आइए इस परिचर्चा में हम उन मेहमानों के जरिए इस विषय को देखने, खोलने और समझने की कोशिश करें जिन्होंने अपने जीवन में इसको चरितार्थ करके रखा हुआ है। जीवन से जुड़ा योग इस विषय पर इस परिचर्चा में हमारे साथ जो दो महत्वपूर्ण मेहमान हैं, एक हैं श्री प्रमोद मेने जी और दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा। डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर, एक अबूझ व्यक्ति के तौर पर, अगर कोई ये जानना चाहे कि योग किसे कहते हैं, योग से आशय क्या है, तो इसका क्या जवाब हो सकता है?
2: बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। योग शब्द की निष्पत्ति संस्कृत की युज धातु से होती है जिसके अनेक अर्थ विद्यमान हैं, जैसे जोड़ना, मिलाना, उपाय, धारण करना, ध्यान करना, समाधिस्थ होना, जीवात्मा और परमात्मा का एकाकार हो जाना आदि। महर्षि पतंजलि ने योग को लेकर के जिस शास्त्र की रचना की उसे योग दर्शन कहते हैं। स्वयं महर्षि से अथ योगानुशासनम कह करके संबोधित करते हैं, जिसका अर्थ होता है यह योग सभी पर अनुशासन करने वाला है। मनुष्य का मन बहुत ही चंचल होता है, वह हमेशा विषय वासनाओं के पीछे भागता रहता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनः दुर्निग्रहम चलम। इस मन को वश में करने का एकमात्र साधन योग है। जैसा कि स्पष्ट है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। इस सूत्र में चित्त का अर्थ मन है और वृत्ति का अर्थ मन का व्यापार है, उसकी क्रियाएं और निरोध से आशय मनोवृत्तियों पर अंकुश लगाना, अर्थात कंट्रोल करना।

0: योग मनुष्य को कुशल बनाता है, उसके कार्यों में कुशलता का संचार करता है, इसलिए कहा गया है योगः कर्मसु कौशलम्। योग अत्यंत ही सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित एक आध्यात्मिक विषय है जो मन और शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। यह स्वस्थ जीवन यापन की कला एवं विज्ञान है। योग शास्त्र के अनुसार योग करने से व्यक्ति की चेतना ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ जाती है, जो मन एवं शरीर, मानव एवं प्रकृति के मध्य परिपूर्ण सामंजस्य का द्योतक है। जो भी अस्तित्व की इस एकता का अनुभव कर लेता है उसे योग में स्थित कहा जाता है। इस प्रकार योग का लक्ष्य आत्म अनुभूति, सभी प्रकार के कष्टों से निवृत्ति, मोक्ष और कैवल्य है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आजादी के साथ जीवन यापन करना स्वास्थ्य एवं सामंजस्य योग करने के प्रमुख उद्देश्य माने जाते हैं।
1: ये आपकी जो परिभाषा है इस पूरे योग की, ये तो इसका पारिभाषिक स्वरूप है जिसको हम एक अध्ययन के तरीके से हम समझ सकते हैं। मैंने जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसा अभी डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी ने इसका एक पारिभाषिक स्वरूप जो है उसको बहुत विस्तार से बताया, और उससे एक चीज तो हमने ये भी जानी कि दरअसल ये इसके पीछे का मनोभाव या इसके पीछे का चित्त क्या है, और ये जो परंपरा है योग की, ये एक बहुत लंबी परंपरा है। अगर हम इसका जो प्रैक्टिकल स्वरूप जो कहते हैं, जिसको प्रायोगिक बात कहते हैं, अगर प्रायोगिक ढंग से योग को समझना हो तो हम कैसे समझाएं?
2: सर ने जो राघवेंद्र शर्मा सर ने जो अपनी बात रखी है वो पूर्णतः आध्यात्मिक है। इसका एक अर्थ निकल रहा है, आध्यात्मिक अर्थ निकल रहा है, लेकिन सामान्य जीवन में योग को हम समझना चाहें तो प्रचलित धारणा भी जो बनी हुई है वर्तमान समय में बनी हुई, योग मतलब केवल एक आसन, लोगों का ध्यान जाता है योग मतलब आसन, आसन कर लिया मतलब हमने योग कर लिया, हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हो गए, ऐसी कुछ लोगों की धारणा है। कुछ लोगों की धारणा है कि नहीं, हमें प्राणायाम करना चाहिए, प्राणायाम को ही योग मानते हैं, जबकि योग में आसन के अलावा भी अष्टांग योग में आप देखेंगे यम भी है, नियम भी है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, ध्यान है, धारणा है और समाधि है। तो सामान्य भाषा में आसन पर ही जोर दिया जाता है, वैसा योग नहीं है। योग सबका मिला जुला रूप है। योग की आवश्यकता हर व्यक्ति के अनुसार होती है, व्यक्ति की समस्याएं क्या है। एक व्यक्ति को केवल एक ही समस्या नहीं है, एक व्यक्ति को एक के साथ अनेक समस्याएं भी हो सकती है। तो वहां पर किन चीजों का हमें, किन पद्धतियों का हमें, किन आसनों को उपयोग करना है, कि प्राणायाम पर जोर देना है, कि षटक्रम पर जोर देना है, यह निर्भर करता है एक कार्यक्रम बनाते समय व्यक्ति की समस्याओं को देखते हुए। जब हम बनाते हैं तो योग का सही अर्थ वहां पर लागू।
1: ये आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात अभी बताई कि योग का आशय सिर्फ प्राणायाम नहीं है। आमतौर पर यह मान लिया जाता है कि आपने आंखें बंद की और सांस पर नियंत्रण किया या सांस पर नियंत्रण करने की कोशिश की, इसका मतलब योग है। ये बात बहुत साफ होनी जरूरी है कि दरअसल योग के जो बहुत सारे चरण हैं उसमें संभवतः एक चरण, जैसा कि आपने बताया, प्राणायाम। अब हम ये, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जो जीवन शैली है, आज का समय बहुत अलग है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपने समय के को परिभाषित करता है या अपने अपनी जो उसकी दिनचर्या है उसके सहारे जीता है। हम प्रायः देखते हैं कि जब योग की बात आती है तो सुबह का स्मरण आता है या प्रातः का स्मरण हम करते हैं। क्या ऐसा कोई लिखित नियम है कि योग करने के लिए आपको जो प्रातः का समय है वही उपयुक्त है, या दिन भर की जो आपकी दिनचर्या है उसमें भी योग का वही अनुभव या उसका वही महात्म्य हम संभव कर सकते हैं?
2: राजेश सर, आपका प्रश्न बहुत उचित है। आज के सार्वजनिक समय को देखते हुए योग जो प्राचीन काल से चल रहा है, तब की जीवन शैली और आज की जीवन शैली बहुत अंतर है। हमारे पूर्वज, उनकी जीवन शैली को आप देखेंगे तो अर्जन के प्रति बहुत ज्यादा नहीं था, जीवन शैली में शारीरिक श्रम का महत्व था, लेकिन हमारी पीढ़ी और हमारे आने वाली बाद की पीढ़ी उसमें बहुत ज्यादा फर्क आते जा रहा है। हमने फिर भी अपने लिए कुछ खाली समय निकाला है, शारीरिक क्रियाएं हम कर रहे हैं, लेकिन नए बच्चे जो कॉर्पोरेट जगत से जुड़े हुए, जो सर्विस सेक्टर से जुड़े, जो प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए, उनकी जीवन शैली

0: बिल्कुल भी अलग है। उनसे आप ये अपेक्षा करें कि रात के 12 बजे सो रहे हैं और सवेरे 4 बजे उठ जाए, तो वास्तविक ये संभव ही नहीं है, क्योंकि उन्हें सोने का समय तो मिलना चाहिए। कॉर्पोरेट जगत में 12 से 14 घंटे काम कराया जा रहा है। काम से आप उनसे आप अपेक्षा है कि काम अच्छा करें, लेकिन उसके शरीर को विश्रांति देने के लिए आप कितना समय दे रहे हैं? फिर विश्रांति के बाद वह बच्चा योग कब करे? प्रातः काल का समय तो मुश्किल है उसे पकड़ने के लिए। लेकिन मैं एक बात निश्चित कहूंगा कि व्यक्ति की नींद अगर पूरी हो जाती है, तो नींद पूरी होने के बाद जो समय मिलता है, 40 से 45 मिनट के समय मिलता है, तो योग करें, शारीरिक श्रम करें, कोई भी कार्य करें जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करे।
1: वैसे अच्छी नींद को भी तो योग कहा गया है। ये कहते हैं ना कि अगर कोई व्यक्ति 7 से 8 घंटे, जो एक विधान है नींद का, उसकी अच्छी नींद हो जाए, वो अपने आप में एक योग है।
0: आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। जो जीवन शैली आपकी चल रही है, जो आपका कार्य क्षेत्र है, क्या यह संभव है कि कोई भी व्यक्ति तनाव रहित है? तनाव सबको है। कोई ये बोले कि मैं तनाव रहित नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं है। क्या चाहे शिक्षक हो, चाहे छात्र हो, चाहे गृहिणी हो, चाहे कोई अधिकारी हो, या कॉर्पोरेट जगत में काम करने वाले व्यक्ति हो, हर को एक टारगेट दे दिया जाता है कि उस समय में उसको काम करना है। तो तनाव से हम बिल्कुल अछूते नहीं है, और तनाव का संबंध ही नींद से है।
1: हाँ,
0: तनाव का संबंध नींद से है। नींद जितनी अच्छी आएगी, उतने ही आप स्वस्थ रहेंगे।
1: और ये कहते हैं कि योग जो है वो तनाव को बाहर निकालता है।
0: हाँ, तो योग में तनाव को बाहर निकालने के लिए बहुत से माध्यम है। सबसे अच्छा माध्यम योग निद्रा। अगर आपने ये शब्द सुना होगा, योग निद्रा, मतलब योग निद्रा का हम ये दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि जागते हुए सोने की कला है। मतलब आप सुन रहे हैं, धारणा के अवस्था में हम जब जाते हैं योग निद्रा के, जब हम निद्रा शवासन पर लेट के सुनते हैं, तो हमारी जितनी भी शारीरिक थकान है, मानसिक थकान है, दूर हो जाती है। तो एक अच्छी नींद लाने में योग निद्रा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।
1: संभवतः इसको ये भी कह सकते हैं क्या कि जैसा आपने कहा कि योग निद्रा की चैतन्य अवस्था में आपका आपका ध्यान एकाग्र होना।
2: हाँ,
1: जी डॉक्टर शर्मा, योग को क्या बहुत सारे लोग, जैसा कि अभी मैंने जी ने बताया कि समय के साथ योग का बहुत ज्यादा संबंध अब कम से कम नहीं है, एक समय जरूर वो अलग था। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या इसी तरह योग का संबंध उम्र से भी है?
2: योग का जो संबंध है वो उम्र से, वह है जन्म से। जब बालक जिसका जन्म होता है, उस समय बच्चा एकदम शिथिल अवस्था में रहता है, और माताएं उसके पैरों की मालिश करती हैं, उसके हाथ पैरों को हिलाती हैं, डुलाती हैं, ये सब करती हैं, तो वहां से उसकी यौगिक क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। जन्म से लेकर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर वह खेल कूद में लग जाता है, तो खेल कूद में उसकी वह यौगिक क्रियाएं होने लगती है, और फिर वह जैसे विवाह हो जाता है, उसका शरीर धीरे धीरे अपनी परिपक्व अवस्था में आ जाता है, तो उसको यदि वह क्रमशः यौगिक क्रियाओं को करता रहेगा तो उसका स्वस्थ शरीर स्वस्थ रहता है, अन्यथा धीरे धीरे उसमें विकृति आने लगती है। और उसके उपरांत जब प्रौढ़ावस्था में आता है, शरीर जब ढलान की ओर होता है, तब यौगिक क्रियाएं अत्यंत आवश्यक होती हैं, क्योंकि वही एनर्जी का संचार करती हैं।
1: हम ये देखते हैं कि इस समय हर व्यक्ति अपने कैरियर को लेकर के बहुत ज्यादा सचेत है, और जब कैरियर की बात आती है तो कॉरपोरेट की बात आती है। योग की तरफ इस समय कॉरपोरेट जगत भी देख रहा है। अब जीवन शैली की बात आती है, कॉरपोरेट की बात आती है, तो जाहिर है जीवन शैली की बात आएगी। ये बात तो तय है कि जो व्यक्ति कॉरपोरेट जगत में है, उसके पास समय बहुत समय अस्थिर किस्म का है। लेकिन जो व्यक्ति दिनचर्या में जीता है, अगर 10 से 5 की नौकरी में जीता है, हम ये भी देखते हैं कि उसके बाद भी वो किसी न किसी व्याधि का शिकार हो जाता है। एक सामान्य व्यक्ति जो सामान्य दिनचर्या में रहता है, सामान्य खान पान है, अगर मान लीजिए उसको किसी तरह की मूल दिक्कतें हैं, उसको दूर करने के लिए वो योग का सहारा कैसे ले सकता है? और या आप ये भी बताएं कि ऐसी कौन सी दिक्कतें हैं जो बहुत सामान्य सी हैं, जो हर मनुष्य को घेर रही है, लेकिन वो उससे अनजान है।
0: आपके प्रश्न में जो प्रश्न किया है आपने, कि सामान्य व्यक्ति जिसको 10 से 5 की नौकरी कर रहा है, उसके पास समय है, लेकिन सामान्य व्यक्ति भी तनाव में है। तनाव चाहे अर्थार्जन का हो, चाहे बच्चों के परिणाम का हो।

0: तनाव से कोई भी अछूता नहीं है। तो सामान्य व्यक्ति के लिए जब हम कार्यक्रम बनाते हैं तो सबसे पहले तनाव क्यों उत्पन्न होता है, मूल कारण तनाव किस लिए हो रहा है, तो हम उस पर ध्यान दें और तनाव से उत्पन्न होने वाली जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को ध्यान दें। उसके अलावा उसकी जीवन शैली, उसका खान पान, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप 10 से 5 नौकरी कर रहे हैं, कोई कार्यालय में जा रहे हैं, लेकिन आपके खान पान कैसा है, उठने का समय कैसा है, यह बहुत कुछ निर्भर करता है, आपकी व्याधियों को आमंत्रण पर देता है।
1: अच्छा, खान पान से भी किसी तरह का योग का नाता है क्या?
0: सर, खान पान से योग का बहुत पूर्ण नाता है। आप एक मोटापे को ही ले लीजिए, ओबेसिटी को ही ले लीजिए, हर व्यक्ति योग कर रहा है, हर व्यक्ति परिणाम चाह रहा है। परिणाम जिस योग संस्था में जा रहा है, जिस केंद्र में जा रहा है, उस केंद्र में मात्र 1 घंटा वो समय देता है, 23 घंटा वो अपने लिए जी रहा है। तो वहां जो चीजें उसे बताई जा रही हैं उसको वो नियमित रूप से अपने जीवन में

0: ओबेसिटी को ही ले लीजिए। हर व्यक्ति योग कर रहा है, हर व्यक्ति परिणाम चाह रहा है। परिणाम जिस योग संस्था में जा रहा है, जिस केंद्र में जा रहा है, उस केंद्र में मात्र एक घंटा वो समय देता है, 23 घंटा वो अपने लिए जी रहा है। तो वहां जो चीजें उसे बताई जा रही हैं, उसको वो नियमित रूप से अपने जीवन में पालन नहीं कर पा रहा है। तो खान पान का रोल किसी भी व्याधियों को कम करने के लिए 70% है। 30% हम मान सकते हैं योग की क्रियाएं, आसन प्राणायाम पर परिणाम आएगा। तो आहार को हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। आहार का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, पर्टिकुलर मोटापे को लेकर या किसी व्याधियों को भी लेकर। पाचन संबंधी समस्याएं भी है तो आपके आहार के कारण ही उत्पन्न होती है। आहार गलत है तो आपको सारी समस्याएं पाचन संबंधी, और पाचन संबंधी समस्या एक बार आपको आ गई तो एक के बाद एक व्याधियां आने लगती है।
1: अच्छा, हम ये भी देखते हैं कि जब योग की बात आती है तो जो आसन केंद्रित उसके प्रकार हैं उसकी बात नहीं होती, लोग श्वसन प्रणाली की बात करते हैं और सांस पर नियंत्रण की बात करते हैं। इसको भी थोड़ा सा आप बताइए कि ये दोनों के बीच का जो संबंध है और दोनों की जो अपनी खासियतें हैं उस पर।
0: देखिए सर, आसन में भी श्वसन प्रणाली का अपना महत्व है। आपको जिस केंद्र में भी जाते हैं, जिस आश्रम में जाते हैं, आपको बताया जाता है सांसों के बारे में। हर आसन को लेने के समय सांस कब लेना है और कब छोड़ना है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, और कब सांसों को रोकना है यह भी महत्वपूर्ण है। तो आसन करते समय या योग में एक शब्द, छोटा सा शब्द आता है सजगता
1: जी।
0: सजग होकर कोई काम हम करें तो हमको उसका परिणाम बहुत अच्छा मिलता है। तो आसन प्राणायाम पोषण, आपको प्राणों सांसों पर ध्यान देना पड़ता है, लेकिन आसन करते समय ही अगर हमने सांसों पर अपना ध्यान दे दिया तो सहज रूप से प्राणायाम का अभ्यास भी हो जाता है।
1: डॉक्टर शर्मा, नई पीढ़ी जो है उनके भीतर योग को लेकर के आप क्या देख रहे हैं, कैसी आग उनके भीतर है, वो कितना पसंद करते हैं इन सब मामलों को अध्ययन के अलावा या पाठ्यक्रम के अलावा?
2: वर्तमान के जो छात्र हैं उनमें से कुछ ऐसे छात्र हैं जो कि अपने प्रति जागरूक हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको उससे कोई लेना देना नहीं है। जो जागरूक छात्र हैं वो पढ़ने के साथ साथ अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम, आसन अथवा अन्य किसी प्रकार से योग और जिम आदि का क्रियाओं को करते हैं। किंतु जो बिल्कुल निराशावादी छात्र हैं, उनको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, केवल डिग्री नाम मात्र के लिए चाहिए, वो इससे बहिर्मुख होते हैं, उनको इससे कोई लेना देना नहीं होता।
1: मैंने बहुत सारे कलाकारों को देखा है कि वो अपने मंच में जाने से पहले 10 से 15 मिनट का वो ध्यान लगाते हैं। मैंने उनसे जब पूछा कि इसकी क्या वजह है, उनका ये तर्क था कि इससे क्या होगा हमको नहीं पता, लेकिन वो जो 10 मिनट है वो उनको अगले जो उनके 3 घंटे हैं मंच में जाने के लिए उसके लिए वो तैयार कर देते हैं और एक तरह की ऊर्जा उनको दे देते हैं।
2: हमारे अष्टांग योग में एक ध्यान अवस्था आती है जिसको हम मेडिटेशन भी कहते हैं, जिसको करने से मनुष्य अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों में विद्यमान ऊर्जा को एकत्रित करता है और उस ऊर्जा को एकत्रित करके वह अपनी उस विधा के ऊपर देता है, जिससे उसकी विधा में और अधिक ताजगी और बहुत अच्छा उसकी विधा हो जाती है। इसीलिए प्रायः सभी जितने कलाकार हैं वह अपने कार्यक्रम के पहले ध्यान अवश्य करते हैं।
1: मैं आपसे ये जानना चाहूंगा और डॉक्टर शर्मा के, दरअसल प्रशिक्षण की जो परंपरा है हमारे यहाँ वो कैसी है, एक सवाल ये, और दूसरा सवाल ये है कि अगर मान लीजिए मुझे अपने परिवार को या मुझे अपने किसी सदस्य को कहीं भेजना है तो मैं इस बात को कैसे समझूं कि जो व्यक्ति हमको सिखा रहा है या जो हमारे सदस्य को सिखाना चाहता है या सिखाएगा वो इसमें कितना पारंगत है या उसकी दशा और दिशा कैसे ठीक है। हालांकि इसका देखिए कोई मापदंड तो हो नहीं सकता कि मैं किसी को जाके कैसे बात करूं, लेकिन एक सामान्य ढंग से मान लीजिए हमको कहीं सीखना है तो इसके लिए मूल बातें क्या हो सकती है जिसको हम समझ लें।
2: प्रशिक्षण की दृष्टि से यदि हम देखते हैं कि जो प्रशिक्षक होता है, सर्वप्रथम उसको

0: उस योग का मूलभूत क्रियाओं का उसे ज्ञान अत्यंत आवश्यक होना चाहिए और वह योग के साथ साथ आसनों के साथ साथ आहार विहार पर भी उतना ही ध्यान दे जितना कि योग पर देता है। तो ऐसे प्रशिक्षण केंद्र अथवा ऐसे प्रशिक्षक वह अत्यंत उपयोगी होते हैं। जब हम कभी भी योग प्रशिक्षण केंद्र में जाते हैं तो सबसे पहले उन प्रशिक्षक के विषय में, उन प्रशिक्षण केंद्रों के विषय में यह जानकारी ले लेनी चाहिए, फीडबैक ले लेना चाहिए कि वह किस तरीके का आहार विहार की हमें निर्देश करते हैं, तभी हम अच्छे उचित प्रशिक्षण को प्राप्त कर सकते हैं।
1: मैंने जी इस बारे में आपका क्या अपना अनुभव?
2: सर, मेरा अनुभव है कोई भी किसी भी केंद्र में आप जाए, किसी भी व्याधियों के लेकर जाए, घर के सदस्य को ले जाए, स्वयं जाए, बच्चे को ले जाए, पत्नी को ले जाए, तो उस केंद्र में जाने के बाद योग में एक प्रोफार्मा ऐसा रहता है, हम जहां क्लासेस लेते हैं एक प्रोफार्मा हमने बनाया कि शरीर से संबंधित कौन कौन सी व्याधियां हैं, पाचन संबंधित कब्जियत है आपको, गैस है, एसिडिटी है, ये व्याधियां कौन से, हम टीक लगवाते हैं। इसी पर मोटापा है तो हाथों पे है, पेट पे है, कमर पे है, चर्बी कहां पर है, इसी प्रकार कोई मानसिक व्याधि है, तो सारे प्रोग्राम जो हम बन जाते हैं तो उसके हिसाब से एक प्रशिक्षक को व्यक्ति को समझने में आसानी रहती है कि इसकी मूल समस्या क्या है, और मूल समस्या के साथ अन्य भी कोई भी और समस्या है। एक व्यक्ति को केवल एक ही समस्या ही आवश्यक नहीं है, एक व्यक्ति को मोटापे के साथ साथ मधुमेह भी हो सकता है, मधुमेह के साथ रक्तचाप भी हो सकता है, हार्ट डिजीज भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में जो आपका कहना है, बाहर जो प्रोग्राम दिखाए जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर एक मोटापे को लेकर बना रहे हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति के चार व्याधियां आ गई है, तब फिर प्रशिक्षक के महत्व का समझ में अंतर आता है कि योग्य प्रशिक्षक, अनुभवी प्रशिक्षक किस बात को पहले लेगा और व्यक्ति अपनी सामर्थ्य अनुसार कितना कर सकता है उस पर निर्भर करता है कि उससे कितना करवा सके। किसी भी व्याधियों को दूर करने के लिए मिनिमम 1.5 से 2 महीने का समय लगता है, क्योंकि वो पूरी तरह उसमें एकाकार हो जाए।
1: ये आपने बात तो बहुत महत्वपूर्ण बताई कि अगर एक व्यक्ति को एक समस्या है और दूसरे व्यक्ति को भी वही समस्या है तो योग का जो उपचार है वो जरूरी नहीं कि दोनों के लिए एक
2: ना, बिल्कुल जरूरी नहीं
1: हो सकता है उसके अंदर किसी तरह की दूसरी व्याधि भी हो। अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है, मान लीजिए ये अभी हम प्रायः ये देख रहे हैं कि किसी न किसी दिक्कतों के बाद लोग दवाई की तरफ जाते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या एक स्वस्थ व्यक्ति जो पूरी तरह से स्वस्थ है बिना किसी कारण के भी योग कर सकता है?
2: बिल्कुल सर, योग करेगा तो स्वस्थ रहेगा, व्याधियां कम से कम होगी, कम से कम चिकित्सक को जाने के पास उसको जाने की जरूरत कम से कम पड़ेगी। एक सामान्य सा प्रोग्राम, चाहे कि कोई भी प्रोग्राम हो, हम निरापद प्रैक्टिस जिसको कहते हैं, निरापद अभ्यास कहते हैं, जो हर व्यक्ति कर सकता है। योग में षटक्रम की क्रियाएं आती है, षटक्रम की क्रिया में लघु संघ प्रक्षालन का आपने नाम सुना होगा
1: जी,
2: जो पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने में बहुत कारगर है। तो हम सबसे पहले तो उस व्यक्ति को देखना पड़ता है कि आसन जब हम करवा रहे हैं उससे, तो आसन करने के लिए वो व्यक्ति कितना सजग है, फिर आसनों का प्रभाव, लघु संघ प्रक्षालन में मोटे मोटे अगर आसन सुनेंगे आप तो पहला आसन है ताड़ासन, दूसरा तिर्यक ताड़ासन, तीसरा कटी चक्रासन, चौथा तिर्यक भुजंगासन और पांचवा उदर श्वसन। ये सारे आसन व्यक्ति की पाचन संबंधी क्रियाओं को, आंतों को खोलने का काम करते हैं। कुछ केंद्रों में बिना पानी के अभ्यास कराया जाता है और कुछ केंद्रों में पानी पिला के अभ्यास कराया जाता है, क्योंकि लघु संघ प्रक्षालन में सादे पानी से हम अभ्यास करते हैं, लेकिन जब दीर्घ संघ प्रक्षालन हमको करना है तब नमक पानी का उपयोग किया जाता है। नमक पानी का उपयोग करते समय हमें यह सावधानी रखना है कि जो अभ्यास सीखने आपके पास व्यक्ति आया है, क्या वह बीपी का मरीज है, क्या उसे हार्निया है, क्या उसे कोई बीमारी, ऐसी बीमारी है जहां नमक देने से उसको नुकसान हो सकता है,
1: और ऐसे समय एक सही प्रशिक्षण
2: की आवश्यकता ही महसूस होती है। तो नॉर्मल व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है और जिसको पाचन की समस्या है, तो सवेरे उठते साथ अगर 2 गिलास कुनकुना पानी पी ले और शौच में जाने के लिए समय लगे, उतने देर टहल भी ले तो भी शौच क्रिया उसकी अच्छी होती है। लेकिन मैंने लघु संघ प्रक्षालन जिन आसनों के आपको नाम बताया है, अगर गर्म पानी पी के आसनों को करेगा तो उसकी आंतें खुलेंगी।

0: और शौच जो एक बार दो बार तीन बार होता था एक बार में ही खुल के बाहर आएगा। जब शौच जब अच्छा हो जाएगा तो मन प्रसन्न रहेगा और भोजन करने की इच्छा आपकी बढ़ेगी। तो आधे से ज्यादा समस्या पाचन से आती है। तो लघु संप्रचालन योग में ऐसी क्रिया है, षटकर्म की क्रिया है, जो आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान अपने आप कर देती है।
1: मैं आपसे बहुत संक्षेप में एक दो ऐसी क्रियाएं का उल्लेख आप करिए जो श्रोता इस समय आपको सुन रहे हैं कि व्यक्ति जिनको अपने जीवन पे अगर लागू करता है तो वो क्रमशः ठीक हो सकता है, हम ये कह सकते हैं। बाकी उसके अंदर कितनी बीमारियां हैं या वो क्या है अलग बात है, लेकिन सामान्य रूप से कि दो चार ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अपने जीवन पे उसको कहीं वो कहीं भी रहे उसको लागू करना चाहिए।
0: सर, योग में सबसे अच्छी चीज है कि आपको किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। आप जिम जाएंगे, किसी खेल को खेलेंगे, आपको पार्टनर की जरूरत पड़ती है। योग ऐसी चीज है जिसको आपने सीख लिया तो आप कहीं भी जाइए, रायपुर शहर में रहिए, रायपुर के बाहर रहिए, जहां भी आप रहते हैं उसका अभ्यास आप कर सकते हैं। तो हम जो कुछ अभ्यास आपको बोल रहे हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले तो लघु संप्रचालन के आसनों को करना चाहिए। और हम उसके अलावा दूसरा हम जो जोर दें तो दूसरा हमारा जोर रहेगा नीति क्रिया पर, क्योंकि हम जिस वातावरण में रह रहे हैं, चाहे रायपुर शहर हो चाहे दिल्ली हो, प्रदूषण से हम कोई भी अछूते नहीं है। तो एलर्जिक समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई। हम रायपुर शहर को आज 20 साल पहले से देख रहे हैं और आज की स्थिति में देखिए वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा है। वायु प्रदूषण कारण एलर्जी प्रॉब्लम बढ़ गए हैं। तो जल नीति से अच्छा कोई भी उपाय नहीं है। तो हम अपने जो कार्यक्रम की रूपरेखा है, लघु संप्रचालन के आसन को हम ले लें, जल नीति को ले लें। जल नीति को अगर हमें कुछ करने में कोई कष्ट होता है तो प्रशिक्षक से बोले सूत्र नीति ले लें, लेकिन उसकी देखरेख में ही करें, क्योंकि जल नीति करते समय कुछ सावधानियां रहती हैं। क्योंकि पानी जो नीति पॉट पे लिया जाता है उसका टेम्परेचर कितना चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो आंखों में जलन आती है। उसमें नमक मिलाया जाता है तो नमक की मात्रा अगर ज्यादा होती है तो जलन आता है, कम होने से सिर पे भारीपन आता है। नीति करने के बाद आपको देखेंगे YouTube में अन्य कहीं भी मिलते साधन मिलते हैं जल नीति के बारे में बताया जाता है, लेकिन उसके बाद क्या करना है यह चीज बहुत जगह नहीं बताई जाती है। तब पर हम योग को दोष देते हैं कि योग में मैंने जल नीति किया और मुझे नुकसान हुआ। तो नुकसान क्यों हुआ, क्योंकि जल नीति करने के बाद जो क्रियाएं आपको करना था
1: आपने
0: वो क्रियाएं नहीं की। तो अब महत्वपूर्ण बात यह कि जल नीति के बाद कौन सी ऐसी क्रियाएं हमको जो करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जल नीति करते समय नीति पॉट में जो पानी बना रहे हैं उसके टेम्परेचर को देखिए, नमक की मात्रा को देखिए, और नीति करते समय आधा लोटा लीजिए, आधा गिलास पूरा लेंगे तो नीति पॉट में जब नाक पे लगाते हैं, एक नासिका पे लगाते हैं और दूसरी नासिका से जल निकलता है, तो ये जो बलगम जमा है, कब जमा, वो निकलता है, धूल के कण निकलते हैं। लेकिन जब एक नाक से नासिका में जल लगाया दूसरे से निकल रही है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि आप सांस कहां से लेंगे,
1: कहां से लेंगे।
0: सांस लेने के लिए आपको मुंह खोलना पड़ता है। अगर आप मुंह खोलेंगे तो ब्रीदिंग की प्रक्रिया अपने आप होगी। और महत्वपूर्ण बात है, नया अभ्यासी जो रहता है सांस को जल्दी लेता है तो पानी जल्दी आता है, धीरे लेता है तो धीरे आता है, रोक रोक के लेता है रोक रोक के आता है। तो नीति करते समय मुंह को खुला रखना आवश्यक है। और गलती से हमारे मुंह में पानी आ गया, गर्दन झुकाने में कोई गलती हो गई, त्रुटि हो गई, तो मुंह में अगर पानी आता है तो ये मान के चलिए कि हमारे नीति करने में कहीं ना कहीं त्रुटि हो रही है। फिर से नीति पॉट आप निकालिए, नाक पे लगाइए, नीति को करिए।
1: आपका कहना है कि अगर ये करें तो कम से कम वो जो सीखी हुई सावधानियां हैं
0: हाँ।
1: उसको अच्छी तरह से मन पे रखें। डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, बहुत संक्षेप में एक आधे मिनट में आप ये बताइए कि आपका अब तक का जो अनुभव है लगातार वो विद्यार्थियों के साथ का वो क्या है, और आप क्या देख रहे हैं कि आने वाला जो समय है, आने वाली जो पीढ़ी है वो कितनी योग को गले लगा रही है।
2: आज की जो पीढ़ी है वह योग के प्रति अत्यंत जागरूक हो रही है और शरीर के प्रति सभी का ध्यान है, सभी शरीर को स्वस्थ रखना चाह रहे हैं। विद्यार्थियों में विशेष करके यह योग का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। जब से मोदी जी का यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना शुरू हुआ और पूरे विश्व ने इस पर ध्यान देना शुरू किया, तब से हमारे विद्यार्थी इस ओर अग्रसर हो रहे हैं और इसको मुक्त कंठ से इसको स्वीकार कर रहे हैं।
1: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ आज की जो परिचर्चा है और आप दोनों मेहमानों ने ये जो सारी बातें की, इसको अगर हमारे श्रोता हम अगर

0: अपने जीवन में लागू करें, तो यही इस परिचर्चा की सार्थकता होगी और यही इसका उद्देश्य भी था। आप दोनों आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: जीवन से जुड़ा योग, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे परिचर्चा। प्रतिभागी थे श्री प्रमोद मेने और श्री राघवेंद्र शर्मा, संचालन कर रहे थे राजेश कनोत वाले। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11 बजने को हैं समाचार, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में नौसेना के तीन स्वदेशी पोतों आईएनएस दुनागिरी, संशोधक और अग्रय का जलावतरण किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पोत रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को दर्शाते हैं।
3: ये तीनों पोत भारत के तीन महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आईएनएस दुनागिरी, अग्रय और संशोधक का नौसेना में शामिल होना भारत की समुद्री क्षमता के विकास में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पड़ाव साबित होगा। उन्होंने कहा कि ये तीनों पोत अब भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश और विदेश में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
3: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट सिखाता है और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में योग किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है जो स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योग अभ्यास में भाग लिया। इस अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा आज हो रही है। ये परीक्षा देश के 551 और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा में अंग्रेजी तथा 12 भारतीय भाषाओं में उत्तर देने का विकल्प है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
4: नीट आज पुनः परीक्षा होने जा रहा है। मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। आज लगभग 22 लाख विद्यार्थी नीट में बैठने वाले हैं। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
2: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले तीन टैंकर सफलतापूर्वक होर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। अमरीका और

0: जापान के प्रतिनिधि आज वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच रहे हैं। ये वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान में इसराइली हमलों के कारण होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा कर दी है। श्रीलंका के दाम्बुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 12 ओवर में 2 विकेट पर 144 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फोन इन फरमाइश। प्रस्तुत करता है अभिषेक शर्मा।

0: श्रोताओं, आप सभी को मेरा यानी अभिषेक का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, ये तो आप जानते ही हैं कि हर रविवार हम सजा लाते हैं आपकी फरमाइशों पर गीतों से भरा कार्यक्रम फोन इन फरमाइश। श्रोताओं, जितनी बेकरारी आपको होती है ना फोन इन फरमाइश की, सच कहें उतनी ही बेसब्री हमें भी होती है आपके फोन कॉल्स की। तो फिर देर क्यों करें, आइए शुरू करते हैं फोन इन फरमाइश और सुनते हैं आज पहला कॉल किन का है। हेलो, फोन इन फरमाइश, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार सर, मैं ऋषभ कुमार तिवारी बोल रहा हूँ, सेहूरा जिला जबलपुर मध्य प्रदेश से।
0: नमस्कार ऋषभ जी, कैसे हैं?
1: अच्छा हूँ सर। आप
0: क्या करते हैं, आप बताइए।
1: मैंने सर, मैं दृष्टिबाधित हूँ और मैंने शासकीय दिव्यांग महाविद्यालय माना कैंप रायपुर से संगीत में स्नातक किया है।
0: अच्छा।
1: और उसके बाद जो है अभी दृष्टिबाधित बच्चों को ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ और सरकारी के लिए देख रहा हूँ।
0: जी बताइए, आज कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनवा दें आपको?
1: सर पिक्चर का मुझे नहीं पता, लेकिन गाने के बोले हम ऐसे करेंगे प्यार की दुनिया याद करे, ये गाना सुनना है।
0: तो आपकी फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं ये।

0: हेलो, फोन इन फरमाइश।
1: हाँ नमस्ते भैया, प्रणाम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं कोतवा साझा छत्तीसगढ़ से राम स्वरूप गुप्ता बोल रहा हूँ भैया।
0: गुप्ता जी कैसे हैं?
1: सब बढ़िया भैया। गीत सुनना है आज?
0: जी, क्या करते हैं?
1: मैं तीर्थ यात्रा काम करता हूँ भैया, सवारी इकट्ठे करके तीर्थ यात्रा घुमाने के लिए जाता हूँ।
0: भैया तो बहुत ही अच्छी बात है, इस तरह का पुण्य काम आप कर रहे हैं। तो आज इस कार्यक्रम में आपको कौन सा गीत सुनवा दें?
1: आज मेरी जिंदगी और तूफान का है भैया, एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार मिले।
0: फोन इन फरमाइश में आपका फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अनुरोध पर आपको सुनवा रहे हैं जिंदगी और तूफान का ये गीत।

0: हेलो, फोन इन फरमाइश
1: जी। नमस्कार सर।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं?
1: अशोक कुमार साहू बोल रहा हूं सर जी, कर्मा चौक लोहारेड़ी है, जिला कवर्धा छत्तीसगढ़ से।
0: साहू जी, क्या करते हैं आप?
1: मैं तो सर नियमित रूप से खेती किसानी का काम करता हूं सर जी।
0: तो इस बार मानसून के बारे में आपका क्या विचार है?
1: सर मानसून लगभग दशक दे चुका है सर जी, और कहीं कहीं पर बारिश हो चुका है बहुत अच्छी तरह, लेकिन अपने कर्मा चौक लोहारेड़ी गाँव में अभी तक बारिश हुआ नहीं है सर जी। और मौसम तो आज छाया हुआ है, बदल बिल्कुल, और इसी हिसाब से बारिश आज हो जाए तो बहुत अच्छी बात।
0: साहू जी बताइए, आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: फिल्म का नाम है सर जी तेरा।
0: आपकी पसंद पर आपको सुनवा रहे हैं ये गीत। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो, फोन इन फरमाइश, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार
0: नमस्कार, कैसे हैं?
1: मैं अखिलेश कुमार यादव बोल रहा हूँ सर, कन्या दमोह जिला बालाघाट मध्य प्रदेश।
0: तो बताइए, आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं, किस फिल्म का?
1: लोफर फिल्म का है, मैं तेरी इश्क में मर न जाऊं।
0: तो यादव जी, आपकी फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं फिल्म लोफर का ये गीत। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, फोन इन फरमाइश, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार।
1: नर्मदा धाम ग्राम सुरसुली पोस्ट नांदा जिला बालो से कैलाश से बोल रहा हूँ।
0: कैसे हैं कैलाश जी?
1: अब ठीक है सर जी, सब अच्छे हैं। मतलब पानी के इंतजार है, बस धान बुआई की ओर हम लोग देख रहे हैं, किसान आदमी हैं। कांटा कुटी भी नहीं, काम हो चुका है, बस मौसम का इंतजार है
0: जी। रेडियो के सारे कार्यक्रम नियमित रूप से सुनते हैं?
1: हाँ, नियमित रूप से सर जी। मैं तो 25 जुलाई 1900

0: 70 से सुनता हूँ, मेरा उम्र 60 साल हो गया है, निमित है।
1: भाई आप तो हमारे बहुत ही पुराने श्रोता हैं, तो बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं, किस फिल्म का?
0: पुराना फिल्म का नाम जय संतोषी माँ, करती हूँ तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो माँ।
1: आपकी फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जय संतोषी माँ का ये गीत। फोन करने के लिए बहुत बहुत

0: हेलो, फोन इन फरमाइश
1: जी। नमस्कार सर।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं?
1: मैं दुष्यंत साहू बोल रहा हूं सर, उतई से। और बताइए कैसे हैं सर?
0: मैं एकदम अच्छा हूं, आप बताएं?
1: मैं भी बस अच्छा है सर, और आपके आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रमों का लुत्फ उठा रहा हूं।
0: भाई, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप आकाशवाणी रायपुर और रेडियो के कार्यक्रम सुनते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये बचपने से इसका शौक रहा है सर, आकाशवाणी से जुड़ने का सौभाग्य मिलता है
0: जी।
1: कहते हैं ना कि ज्ञान का भंडार है आकाशवाणी।
0: जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल।
1: जो लोगों को किससे कैसे मिलना है, क्या बातें करनी है, क्या आपकी लहर

0: मात्रा होनी चाहिए। अगर ये कहा जाए कि एक मदर टंग का काम कर रही है आकाशवाणी की, आपको बोलने की तमीज सिखाती है।
1: बहुत सही कह रहे हैं आप। दुष्यंत जी, अभी 21 जून को विश्व योग दिवस है, तो रेडियो के माध्यम से आप कोई संदेश देना चाहते हैं?
0: मैं योग दिवस के उपलक्ष्य पर ये कहना चाहूंगा कि आप जितना से ज्यादा हो सके योग करें। योगा जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है सर। सूर्य नमस्कार जैसे तमाम योग हैं जो मानव से जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं, और उसको मिलजुल कर मनाइए और स्वस्थ रहिए, यही कहना चाहूंगा सर।
1: तो आपकी दिनचर्या में शामिल है योग?
0: जी बिल्कुल सर।
1: भाई बहुत अच्छी बात है। बताइए आज कौन सा गीत सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप?
0: शाहिर साहब ने गीत लिखा है और खयाम साहब की तर्ज है और फिल्म है कभी कभी, तो उसमें का कोई भी गाना।
1: तो आपकी फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं फिल्म कभी कभी का ये गीत। फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, फोन इन फरमाइश।
1: हेलो, नमस्कार सर जी।
0: जी नमस्कार, कैसी हैं?
1: बहुत ही अच्छे हैं सर जी, और दम से बारिश हो रही है हमारे इधर।
0: अरे वाह, कहाँ से बात कर रही हैं और कहाँ इतनी तेज बारिश हो रही है?

0: धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ, वी पूनम नायडू।
1: कैसी हैं पूनम जी?
0: बहुत ही बढ़िया है सर जी, अब तो स्कूलें भी खुल गई है, अब अपना काम भी संचालन कर रहे हैं हम लोग।
1: अभी आप स्कूल से बात कर रही हैं?
0: हाँ, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, थोड़ा मौसम ठीक है तो निकला है सर जी, लेकिन जम के सुबह से तो बहुत बारिश हुई, अभी भी अंधेरा है, होने की बदली छाई हुई है।
1: वैसे भी मानसून जो है वो बस्तर में तो पहले ही दस्तक देता है।
0: हरियाली है सर जी, हमारा जो धनोरा है वो चित्रकूट के पास से लगा हुआ है
1: जी।
0: वहीं से बोल रहे हैं सर जी हम
1: जी। तो बताइए पूनम जी,
0: आपने सुना होगा सर जी?
1: हाँ हाँ बिल्कुल सुना है।
0: अभी तो बहुत बढ़िया हो गया सर जी शायद, और 12 महीने सैलानी आते ही रहते हैं सर जी, मौसम चाहे बारिश का हो, ठंड का हो या फिर गर्मी का हो।
1: चित्रकूट तो बहुत ही अच्छा जलप्रपात है और बारिश के मौसम में उसकी जो छटा है वो तो देखते ही बनती है
0: जी, देखते ही बनती है सर जी, और रात को भी देखने की व्यवस्था हुई है सर जी लाइटिंग से, इतना अच्छा लगता है वो धारा, जो जल धारा बहता हुआ दिखता है ना, बहुत ही सतरंगी जैसा दिखता है।
1: तो पूनम जी बताइए, कौन सा गीत सुनने की ख्वाहिशमंद है आप?
0: फिल्म का नाम है सर जी आमिर खान वाला बाजी।
1: आपकी फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं फिल्म बाजी का ये गीत। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, फोन इन फरमाइश।
1: नमस्ते भैया।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं नानघाट के सर से मोतीलाल साहू भी है।
0: तो नानघाट में अभी मौसम का क्या हाल है?
1: आज भैया सुबह से बदली है और बीच बीच में हल्का हल्का बौछार पानी का हो रहा है भैया। तो और गिरा है लगभग एक घंटे बारिश।
0: 21 जून को विश्व योग दिवस है, रेडियो के माध्यम से कोई संदेश देना चाहते हैं?
1: भैया योग करना तो अच्छी बात है, अपने स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, समय मिलता है बिल्कुल, कम से कम एक घंटा आधे घंटा करने चाहिए योग।
0: साहू जी बताइए, आज कौन सा गीत सुनवा दें आपको?
1: अपने पसंद का गीत सुना जाएगा।
0: आपकी पसंद पर आपको सुनवा रहे हैं ये गीत। फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, फोन इन फरमाइश।
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं?
1: बलराम सेन, ग्राम भलेसर, नयापारा, जिला महासमुंद।
0: कैसे हैं बलराम जी?
1: बढ़िया हूँ सर जी।
0: बलराम जी बताइए, कौन से गीत सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आज आप?
1: फिल्म बरसात का सुना दीजिए सर, कोई भी सा गाना।
0: आपकी पसंद पर आपको सुनवा रहे हैं ये गीत। फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, फोन इन फरमाइश।
1: नमस्कार बंधु।
0: नमस्कार, कैसे हैं, कहां से बोल रहे हैं?
1: मेरा नाम बाहुबली है भाई साहब।
0: आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है बाहुबली जी।
1: आपके रायपुर केंद्र से प्रथम बारी
0: जी
1: संपर्क हुआ
0: जी।
1: और बेहद खुशी की लहर उमड़ पड़ी
0: जी।
1: और आप जैसे निवेदक बंधु से वार्तालाप करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ।
0: भाई बहुत ही अच्छी हिंदी बोलते हैं आप बाहुबली जी।
1: ये तो आप लोगों की देन है भाई साहब, आप लोगों से हम थोड़ी बहुत सीख लेते हैं। आकाशवाणी ने अपने 90 साल बड़े सफलता पूर्वक अपनी मंजिल को पार किया है और अंत में आकाशवाणी को बधाई देना।
0: आपकी बधाई के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। 21 जून को विश्व योग दिवस है
1: जी, जी।
0: रेडियो के माध्यम से आप कोई संदेश देना चाहते हैं?
1: सेहत अच्छी रखने के लिए योग का बुलेट तो अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। योग के द्वारा हमारी जो शरीर की रचना है वो कार्यक्षम होके उसमें एक ऊर्जा और चलायमान, उसमें शिथिलता नष्ट होकर एक नई प्राण ऊर्जा मिलती है हम।

0: योग के द्वारा।
1: बहुत ही अच्छा संदेश आपका बाहुबली जी। बताइए आज कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनवा दें आपको?
0: पुरानी फिल्म झनक झनक पायल बाजे का टाइटल सॉन्ग मैं सुनना चाहूंगा बंधु।
1: आपकी पसंद पर आपको सुनवा रहे हैं फिल्म झनक झनक पायल बाजे का ये गीत। फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

श्रोताओं, ये था फोन इन फरमाइश। श्रोताओं, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हमने की थी शुक्रवार यानी 19 जून 2026 को। फोन इन फरमाइश के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 4003482, 4003483 और 4003484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है हर शुक्रवार सुबह 11 बजे से 11:30 तक। तो अब दीजिए अनुमति अपने रेडियो दोस्त अभिषेक को। हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। इसी तरह फोन करते रहिए और सुनते रहिए फोन इन फरमाइश।

0: फोन इन फरमाइश कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति थी अभिषेक शर्मा की। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:55 होने को हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। यह आकाशवाणी रायपुर है। अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा।

और अब पेश आज के मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि योग सबको जोड़ता है और सबको साथ लाता है। अंबिकापुर में आयोजित राज्य स्तरीय सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हुए शामिल। और एनटीए द्वारा आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस अवसर पर देशभर में आयोजित योग कार्यक्रमों में लोग योगाभ्यास कर रहे हैं। इस वर्ष का विषय स्वस्थ आयु के लिए योग रखा गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित योग कार्यक्रम में 1500 वरिष्ठ नागरिकों ने योग किया। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्यप्रदेश के जबलपुर में योग कार्यक्रम में शामिल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि दुनिया के कुछ हिस्सों में 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है और योग के कारण यह अब सबसे बड़ा सामुदायिक उत्सव बन गया है। उन्होंने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि भावना की अभिव्यक्ति है और यह किसी आयु वर्ग तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि योग सबको जोड़ता है और सबको साथ लाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर छत्तीसगढ़ में भी सामूहिक योग अभ्यास के अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। राज्यपाल रमन डे का आज रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित योग शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि आज पूरा छत्तीसगढ़ सामूहिक योग अभ्यास के माध्यम से स्वास्थ्य संतुलन और सकारात्मक के संदेश को जन जन तक पहुंचा रहा है। वहीं अंबिकापुर स्थित पीजी कॉलेज ग्राउंड में राज्य स्तरीय सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने की। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष संजय अग्रवाल भी अति विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने योगाभ्यास कर प्रदेशवासियों को नियमित रूप से योग अपनाकर स्वस्थ संतुलित और निरोग जीवन जीने का संदेश दिया। केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा जगदलपुर के शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रांगण में योग शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में एनसीसी, एनएसएस, पतंजलि योग समिति और युवाओं सहित लगभग 150 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थियों को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद आने वाले किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं मिलेगा। इस बीच दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने नीट परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए विशेष रेल सेवाओं की व्यवस्था की है। रेलवे द्वारा कोरबा दुर्ग कोरबा के बीच मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का संचालन आज भी किया जाएगा। इसके अलावा हसदेव एक्सप्रेस का अस्थायी विस्तार दुर्ग तक किया गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज एक दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। वे अभनपुर में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में कांग्रेस के नवनियुक्त 41 जिलाध्यक्षों को प्रशिक्षण देंगे। इस अवसर पर कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट भी उपस्थित रहेंगे। 10 दिनों का कांग्रेस का यह प्रशिक्षण शिविर आज से शुरू हो रहा है। कांग्रेस के शिविर में प्रदेश भर के पार्टी के जिलाध्यक्षों और संगठन पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार एक द्रोणिका उत्तर छत्तीसगढ़ से तेलंगाना तक विस्तारित है, जिसके असर से राज्य के उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। लेकिन मध्य छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान 4 से 6 डिग्री अधिक है, जिसके कारण रायपुर और दुर्ग संभाग में लू चलने के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार 23 जून के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ सकता है। कोरिया जिले के सोनहत थाना क्षेत्र के ग्राम नौगई में हुए तिहरे हत्याकांड के मामले में पुलिस ने सभी मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 16 जून की रात आपसी रंजिश के चलते चार पहिया वाहन में आग लगाने की घटना में 3 लोगों की मौत हो गई थी। मामले में 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद फरार 5 मुख्य आरोपियों में एमसीबी और कोरिया पुलिस की संयुक्त टीम ने कल दबिश देकर पकड़ा। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मामले की जांच जारी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि योग सबको जोड़ता है और सबको साथ लाता है। अंबिकापुर में आयोजित राज्य स्तरीय सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। और एनटीए द्वारा आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है।
नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम कुछ ही देर में। मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्ज़ और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आप हमारा प्रसारण न्यूज़ ऑन AIR ऐप और DTH पर भी सुन सकते हैं। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत। फनकार हैं बेगम अख्तर।

सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। आज कार्यक्रम में फनकार हैं बेगम अख्तर। लीजिए सुनिए उन्हीं के स्वर में अगला गीत।

आकाशवाणी रायपुर से सुगम संगीत आप बेगम अख्तर की आवाज़ में सुन रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम में अंतिम गीत।

सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 12:30 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम आप मन के गीत।

आप मन के गीत सुनैया जम्मो साथी मन ला आप मन के रेडियो दोस्त अमन पांडे के जय जोहार। तसंगवारी हो कार्यक्रम के शुरुआत करबो मदन मेहर और उखर साथी मन के गाय ये गीत संग जिन ला सुने बर हमन ला पाती पठोए हैं हमर ये श्रोता संगी मन भाटापारा ले श्याम रतन मुंदड़ा रचनाकार मुंदड़ा पलारी ले प्रकाश वर्मा निखिल वर्मा प्रिंस वर्मा यशस्वी वर्मा सिमगा ले दादू सेन दीपक सेन देवेंद्र आशीष सेन शीतलानगर दुर्ग ले शिवचंद्राकर भगवान चंद्राकर दुर्ग ले अर्चना काजल अभिनव बिट्टू और मिनी भाटापारा ले अब्दुल मजीद कुरैशी रेहाना बेगम और मोहम्मद साजिद फरसगांव कोंडागांव बस्तर ले हरीश साहू पायल साहू मेघा साहू नवीन साहू ऋषु साहू भाटापारा ले सोहन जोशी सावन नायक रोहित साहू और वीरेंद्र वर्मा भाटापारा ले मोतीलाल झेरिया कल्पना झेरिया बिट्टू कुमार झेरिया चिंटू झेरिया और युग कुमार झेरिया कमरौत महासमुंद ले पंकज कुमार पटेल किशनलाल पटेल भुवनेश्वर चमनलाल और गरीबा राम पटेल भाटापारा ले प्रेमलाल साहू भूपेंद्र दुष्यंत राघवेंद्र साहू बेमेतरा ले संतोष कुमार सारथी पूर्णिमा हेमलता कमलकांत वीरेंद्र व्रजकांत सारथी दरचुरा ले ददुआ साहू भोरी साहू रेखा और मोतीलाल साहू बेमेतरा ले पूर्णिमा सारथी पूजा आरती भाव्या और सुषमा सारथी नवागढ़ कटई ले नारायण प्रसाद वर्मा चंद्रकांत वर्मा सीमा शारदा और दामिनी वर्मा यही गीत ल सुने पर हमला ईमेल भेजे हैं हमर ये श्रोता संगी मन भाटापारा ले हिमकेश्वर करण राहुल और चंपा साहू कोका भिलाई ले उत्तम सिंह जंगहेल मोरस जंगहेल अनिल कुमार अजित कुमार आयुष और नंदिनी जंगहेल धमधा सुखरी कला ले अमित जंगहेल शकुन आरुषि ओशिका आदित्य और अंजलि जंगहेल कोरबा ले गुंजन बरेठ संतोष कुमार बरेठ शर्मिला लता और यशराज बरेठ बिलासपुर ले बंसिका सिंह पवार वंश विपाशा और नरेश सिंह पवार तावा संगवारी हो सुनन आप मन के पसंद के ये गीत।

0: त संगवारी हो आवो सुनन कार्यक्रम के अगला गीत मंतराम पटपरिहा और उखर साथी मन के आवाज में। ये गीत ला सुने पर हमन ला पाती पठोए है हमर ये श्रोता संगी मन अमलेश्वर ले डोमन ठाकुर सुमन ठाकुर ज्योति और रियांश ठाकुर भाटापारा दतरेंगी ले द्वारिका प्रसाद वर्मा किशोर कुमार वर्मा महादेव घाट अमलेश्वर ले मिथिलेश ठाकुर तारिणी सूरज और सुजला ठाकुर भाटापारा ले एम एल यादव अजय कुमार यादव अमित कुमार अमिन कुमार अमृता पार्वती ईश्वरी और लक्ष्मी यादव रुआ बांधा सनिचरी बाजार भिलाई ले सुशील जैन कल्पना जैन सौरभ सिया शुभम और सौर्य जैन कोटा रायपुर ले योगिता वर्मा सूची वर्मा खुशी वर्मा ओजल वर्मा मगरलोड ले पुनुराम साहू तेजस्वरी साहू राजश्री और राजवीर साहू अमरपुर पिंडरा ले दीपक कुमार रोशन कुमार बंसीलाल और लबी श्रीवास्तव सांकरा भूमिया तिलदा ले मनोज निषाद प्रतिभा निषाद पूर्वी निषाद और खुशांत निषाद बठेना ले बलकरण वर्मा अंजनी ज्योति वर्मा रेखा धनेश्वरी वर्मा चटौदा सारागांव ले सुजान सुहद्रा आयुषी और कृत वर्मा हथबंद करेली ले भूपेश ध्रुव शुभम मनीष और श्याम ध्रुव बेलर गांव ले मिथिलेश देवांगन मधु हिमांशु और अंकित देवांगन कमरौत महासमुंद ले देवकी पटेल पुष्पा यशोदा छोटी और एनिमा पटेल धरसिवा ले छोटूलाल यादव श्रीमती सीता यादव अर्चना अरुणा अनुराधा अल्पना यादव दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर ले छन्नूलाल यादव अनुराग अभिषेक अलका अनामिका बलदाव यादव रानू खुशी प्रवीण और सी एल यादव एकर संगे संग हमन ला ईमेल भेजे हैं हमर ये श्रोता संगीपन पथरिया भरेवाले चंदूलाल सिंगरोल नारायणी नोमेश नेहा वान्या सिंगरोल लोरमी तिलकपुर ले चंद्र कुमार मरावी चंद्रेश कुमार मालती और मयंक मरावी परसाटोला अंबागढ़ चौकी ले ओम प्रकाश मसिया सुलोचनी तुषारणी खुमेंद्र मसिया बड़गा कोदवा गुड़ान ले श्याम सिंह मरावी राजकुमारी रानी रजनी और राहुल मरावी कोई ग्राम भंगी टोला ले ननकाराम ध्रुवे जामुनबाई फिरतराम मालती भाटापारा ले सोहन जोशी पायल लोकेश अर्चना अंकिता वैदेही जोशी और भाटापारा ले ही हरमिंदर सिंह चावला और बानी चावला। तो आवा संगवारी हो सुनन आप मन के पसंद के ये गीत।
1: अपन हाथ ले श्रम के पुजारी

तो संगवारी हो, आप मन के गीत कार्यक्रम आप मन सुनत हो। कार्यक्रम में अगला गीत कांति यादव और गीता भट्ट के आवाज में। एक गीत ला सुने पर हमला पाती पट हुए हैं ये श्रोता संगी मन। अछोटा धमतरी ले बिसथा राम देवांगन, मानकीबाई गणेश राम, रोहित राम, राजेश कुमार, गीतेश और धवल, लवन, काव्या और तेजस्वी देवांगन। मगर लोडले केजूराम मालेकर, ठाकुर राम, अश्वनी मालेकर, पीपरपाला पालचुआ मुंगेली ले उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता, नितिन, वंशिका दिवाकर। पावर हाउस भिलाई ले विकास वर्मा, खुशी वर्मा, ग्रंथ वर्मा। चक्रभाटा कैंप ले रूपचंद सिंहवानी, सपना, गोविंदा, जयंत, मीना सिंहवानी। महासमुंद ले भीषम दास मानिकपुरी, नर्मदाबाई और दीपक लच्छ मानिकपुरी। डंगनिया पाटन ले सूर्या और मेधा कश्यप। भाटापारा ले रमजान खान सिकंदर, अशरफ खान, नसीर खान, अयाज अलफैज खान और महजबीन बानो। लाहौद ले कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार, समीर, राजकुमारी पटेल। पहंदा कोरबा ले सम्मेलाल कुर्रे, सावित्री देवी कुर्रे।

सरक बुंदिया ले गब्बर साहू, निर्मला साहू और शारदा विहार अमलीडी रायपुर ले मोहनलाल देवांगन, प्रभा देवी देवांगन रामनगर रायपुर ले राजेश अंबादे, शशिकला अंबादे, पूजा अंबादे, कोरदा लवन ले भूधर प्रसाद वर्मा, घनश्याम गुलशन, शिव कुमारी, हेमलता और वेदकिरण शर्मा, भरदा कला ले रोम कुमार साहू, किरण खुशी, मुस्कान और लक्की साहू एकर संगे संग ईमेल भेजे हैं हमार ये श्रोता संगी मन। अम्बागढ़ चौकी ले रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रिहान, नागर कोहरा, राजनांदगांव ले बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और आराध्या साहू, बाबा कुटीर रायगढ़ ले शिव कुमार, संक्रांति और उत्कर्ष चौहान, सौंगा मगरलोड ले फनेश कुमार, सावित्री देवी, रोहित कुमार, देविका, मोहित कुमार, गजेंद्र, हेयांश और चंदन, पीपरलोट सरगांव ले दीपेश, पूनम, ज्योति और शिवांश वर्मा, लोहारीडी कबीरधाम ले अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी, खुशांत और निशांत साहू।

मेल भेजे हैं हमारे ये श्रोता संगीमन। अम्बागढ़ चौकीले रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रिहान, नागर कोहरा, राजनांदगांव ले बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और आराध्या साहू, बाबा कुटीर, रायगढ़ ले शिव कुमार, संक्रांति और उत्कर्ष चौहान, सौंगा, मगरलोड ले फनेश कुमार, सावित्री देवी, रोहित कुमार, देविका, मोहित कुमार, गजेंद्र, हियांश और चंदन, पीपरलोट, सरगांव ले दीपेश, पूनम, ज्योति और शिवांश वर्मा, लोहारीडी, कबीरधाम ले अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी, खुशांत और निशांत साहू।

संगवारी हो, आप मन के गीत कार्यक्रम में अगला गीत कुसुमलता ठाकुर और गौतम चंद जैन के आवाज में ये गीत ल सुने भर हमारे पातिपट हुए हैं। ये श्रोता संगीमन भाटापारा ले बचकामल मोतीलाल यादव डॉक्टर वसंत प्रिगु विनय ठाकुर सोना ढीले सुब्रत चौधरी मोपका भाटापारा ले दयालु राम वर्मा तेज राम सहदेव चिरंजीवी वर्मा रोहांसी ले डगेश्वर राम साहू गौरव साहू भुवन औ घनश्याम साहू दुर्ग ले राकेश वर्मा सचिन वर्मा वाणी वर्मा सिमगा ले रमेश कुमार यादव माया यादव रिंकू सन्नी कोमल यादव रायपुर ले अरुण वर्मा अनिल वर्मा ईश्वर और दिनेश वर्मा करही भदर ले पुरुषोत्तम निर्मलकर शारदा देवी गीतिका लोचन कृष्ण कुमार निर्मलकर राजिम ले अनिल कुमार अंजुलता आदित्य कुमार और क्रिश श्रीवास्तव महासमुंद खट्टी ले सुभाष शर्मा छाया शर्मा कुमुदिनी शर्मा ओंकार शर्मा प्रेमलाल उपाध्याय संतोष खुशी और खुशबू उपाध्याय जवाहर नगर दुर्ग ले आरसी कामड़े करुणा मीना और विपुल कामड़े नानघाट अड़ार ले चांदनी माखन वर्मा राहुल गोपी भूपेश दीपेश वर्मा और यही गीत सुनने पर ईमेल भेजे हैं ये श्रोता संगीमन कन्नेवाड़ा ले देवव्रत सोनवानी गीतिका गुड़िया आशीष टेमरे राहुल साहू और रिकेश करही भदर ले पुरुषोत्तम निर्मलकर शारदा निर्मलकर लल्ली गिन्नी भूमि ओपरी बुड़सरा नैला ले प्रमोद कुमार साहू बोगाटोला मोहला मानपुर ले मालिक राम सिन्हा तारामती हिंदू चांदनी मुनिंद्र सविता देवी सिन्हा लोरमी चचेड़ी ले शंकर कोलाम संतोषी संजय संध्या और शिवम कोलाम बाघामुड़ा ले

संगवारी हो, आप मन के गीत कार्यक्रम आप मन सुनत हो त आवो अब आप मन ल सुनावन ए कार्यक्रम के अंतिम गीत। ए गीत ल सुने बर हमन ल पाती पठोए हैं हमर ये श्रोता संगी मन। लच्छनपुर ले रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू, देवरी भाटापाला ले गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, बंगला मटिया, जिला बालोद ले शिव कुमार अंगारे, अंजनी त्रयंबिका, लीना अंशुमाला, आशुतोष अंगारे, बिलासपुर ले सुरेश पांडे, सरिता भाव्या, शौर्य शैल और संध्या पांडे, दतरंगी ले भागवत वर्मा, गुलाब वर्मा।

मुकेश्वर और के आर साहू सितला नगर दुर्ग ले शिव चंद्राकर भगवान चंद्राकर चनागांव जिला धमतरी ले धर्म सिंह शोरी गजानन नेताम विष्णु साहू नंदलाल मरकाम और कोमल शोरी सुरसुली ले कैलाश यादव सुरेश यादव डिकेंद्र और योगेश यादव हिच्छा महासमुंद अदालत दास वैष्णव मानस सतीश और ऋचा गायत्री वैष्णव बेमेतराले भरत लाल सिन्हा लक्की लव और मुरली मनोहर सिन्हा सिर्री गाता पारेल लावण्या उपासना देवराज ओम कुमार पुष्पराज और प्रभुराम साहू अहिवारा जिला दुर्गले पेंटर डबल कुमार डब्बू धीवर संजय कुमार इंद्रजीत राजू धीवर जतिन हेमनराज बाबू लव्य लक्ष्य लच्छू आंचल माही और बेबी धीवर खैरबाना ले जलेश्वर मीरा परमानंद संतोषी साहू यही गीतला ईमेल भेज के सुनना चाहे हैं ये श्रोता संगीमन रसेड़ा ले मुरलीधर साहू लक्ष्मी देवी योगेश संध्या कीर्ति कुमार और डिकेश साहू तखतपुर ले मिश्री लाल विश्वकर्मा मीरा देवी विशाल मानस गंगा देवी विश्वकर्मा दतरंगी ले भागवत वर्मा शांति देवी लीलावती विनीता और रुद्र वर्मा बुड़गहन ले राम दुलारी प्रजापति रामशरण चंद्रेश चंद्रकला शशिकांता प्रजापति लच्छनपुर ले मोपका भाटा पारा ले भेवेंद्र कुमार साहू लक्की हर्षित दादू और सुमित्रा साहू ता आवा सौनन आप मन के पसंद के और कार्यक्रम के ये अंतिम गीत।

0: कोनो नारी ये झगड़ा तोर मन के नोहे जैसे बगेली कोनो नारी ये झगड़ा तोर मन के नोहे।
1: तसंगवारी हो कुलेश्वर ताम्रकार के ये गीत गाय गीत के संग मा आज बर कार्यक्रम मा बसत केच कार्यक्रम बर गीत जोड़े रहिन हैं बीर भान साहू। अब बेरा हो गए हैं आप मन ले विदा लेहे के। अपन संगी अमन पांडे ला देवो विदा। जय जोहार।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 1 बजे हैं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के 3 पोत दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई

0: नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश और विदेश में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है, और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में योग किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योग अभ्यास में भाग लिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्य भर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने अपनी पत्नी के साथ बीच रोड पर एक कार्यक्रम में योग किया। उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। देश और विदेश के विभिन्न शहरों में 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश सुबह 11 बजे से शुरू होकर दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं, जहां अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता होने की संभावना है। वहीं ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता का आगे बढ़ना मुश्किल होगा। ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालीबाफ करेंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 41 ओवर में 5 विकेट पर 288 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 1:05 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत कार्यक्रम में पहला गीत फिल्म फना से। आवाजें हैं कैलाश खेर और शान की। गीत को लिखा है प्रसून जोशी ने और संगीत है जतिन ललित का।

चित्रपट संगीत में अगला गीत के और श्रेया घोषाल की आवाजों में। गीत को लिखा है जेल्स शेरवानी ने, संगीत है साजिद वाजिद का और फिल्म का नाम है द ट्रेन।

0: Te manca.
1: Go home. I experienced it too.

अभी आपने सुना फिल्म कोई मिल गया का ये गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा था देव कोहली ने और संगीत था राजेश रोशन का। लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत में अगला और अंतिम गीत फिल्म काल से। स्वर हैं सोनू निगम, सुनिधि चौहान और कुणाल गांजावाला के। गीत को लिखा है शबीर अहमद ने, संगीत है सलीम सुल।

चित्रपट संगीत समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आप आकाशवाणी रायपुर और सरायपाली सुन रहे हैं। दोपहर के 1:25 हुए हैं। समय है कार्यक्रम विवरण का। आइए अब आपको बता दें आज के हमारे शेष कार्यक्रमों का विवरण।

शाम की सभा में 6:30 से सुनिएगा आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

अब से कुछ ही देर में यानी दोपहर 1:30 पर आप सुनेंगे महिलाओं का कार्यक्रम बिंदिया। आज की बात होगी योग भगाए रोग। इस विषय पर क्रम सेहत की बात में आप सुनेंगे महिला स्वास्थ्य देखभाल सक्रियता और संतुलन, इस विषय पर डॉक्टर सौम्या अग्रवाल से बातचीत। इसके अलावा होगा क्रम गीत संगीत।

चित्रपट संगीत आप सुन सकेंगे दोपहर 2 बजे और दोपहर 2:30 पर। शाम की सभा में 5 बजे होगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। शाम 5:10 पर सुनिएगा युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी, जिसमें क्रम आजकल का विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कार्यक्रम आज मेरी बारी में है, आज मेरी बारी है में सुनिएगा रक्षा जायसवाल को। इसके अलावा होगा क्रम नए तराने।

शाम 6:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। आज कार्यक्रम में शामिल होगी कोरबा जिले की चिट्ठी, आलेख होगा राजश्री गुप्ते का। इसके बाद शाम 6:30 से आप सुन सकेंगे ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कॉमेंट्री।

श्रोताओं, एक बार फिर से आपको बता दें, चित्रपट संगीत आप सुन सकते हैं दोपहर 2 बजे और 2:30 पर। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 1:30 हुए हैं। अब सुनिए महिलाओं का कार्यक्रम बिंदिया।

नमस्कार नमस्कार मेरी प्यारी सखियों मोनिका का आप सभी को प्यार भरा जादू की झप्पी वाला नमस्कार। कैसी हैं आप सब? मुस्कुरा रही हैं ना? जरा होठों के कोने ऊपर कीजिए। देखिए आज पहला योग तो हो गया, मुस्कान का योग। जी हाँ, आज पूरी दुनिया

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। सोचिए, भारत की हजारों साल पुरानी परंपरा आज दुनिया भर के करोड़ों लोगों की दिनचर्या बन चुकी है। ये सचमुच हम सबके लिए गर्व की बात है ना? लेकिन एक बात बताइए, योग दिवस आते ही हम में से कितनी सखियां सोचती हैं कि कल से योग शुरू करूंगी, और वो कल पता नहीं कब आता है। हम महिलाएं भी ना घर की घड़ी बन जाती हैं, सबके समय का हिसाब रखती हैं, लेकिन अपने लिए आधा घंटा निकालने में बरसों लगा देती हैं। याद रखिए सखियों, योग कोई एक दिन का उत्सव नहीं, हर दिन का उपहार है जो हम खुद को दे सकती हैं। योग का मतलब सिर्फ कठिन आसन करना नहीं होता, सुबह की खुली हवा में गहरी सांस लेना भी योग है। मन की उलझनों को थोड़ी देर के लिए विराम देना भी योग है। दिन की शुरुआत मुस्कुराकर करना भी सुंदर योग है। जहां मन प्रसन्न, वहां तन प्रसन्न। जरा सोचिए, जब हम हंसते हैं तो घर का माहौल भी खिल उठता है, बच्चे निश्चिंत हो जाते हैं, अपनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इसीलिए आज योग दिवस पर एक छोटा सा संकल्प लेते हैं, रोज कुछ मिनट योग के लिए, कुछ पल अपने मन के लिए और ढेर सारी मुस्कान अपने परिवार के लिए। क्योंकि प्रसन्न रहना भी एक साधना है और दूसरों को प्रसन्न रखना सबसे सुंदर सेवा। तो सखियों, आज योग दिवस पर अपने आप से एक वादा करते हैं, अपने आप को पाने का वादा, खुद को स्वस्थ रखने का वादा, खुद के लिए जीने का वादा। इसी वादे के साथ आइए खुद के हिस्से की धूप भी छांट लेते हैं, जिंदगी की मसरूफियत में चंद हंसी की सौगातें बांट लेते हैं। खिड़की खोलें, हवा को अपना नाम दें, हथेलियों पर धूप रख कर आंखों में आसमान भरें, कहें अब मेरी बारी है।

शाम आए तो तमन्ना जाग उठी, जिंदगी फिर से मुस्कुरा उठी। इस सदाबहार गीत को हमने लिया था फिल्म गाइड से। संगीत था एसडी बर्मन का, गीत के बोल थे शैलेंद्र के और सुंदर आवाज थी लता मंगेशकर की। सखियों, जिंदगी को पूरे मन से जीने के लिए सिर्फ हौसला नहीं, अच्छी सेहत भी जरूरी है। तो आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हुए करते हैं सेहत की बात डॉक्टर सौम्या अग्रवाल के साथ और जानते हैं

0: महिला स्वास्थ्य के मुख्य स्तंभ।
1: औरतें अजीब होती हैं। रिश्तों की दराज में सबके हिस्से की खुशियां करीने से रख देती हैं और अपने हिस्से की थकान तकिए के नीचे दबा सो जाती हैं। उन्हें दर्द भी आवाज देकर नहीं बुलाता, बस चुपचाप कांधे पर हाथ रख देता है। चलो आज आईने से नहीं अपने मन से मिलते हैं, अपनी धड़कनों की आवाज भी सुनते हैं। औरों के लिए तो जीते रहे, जरा सा आज खुद के लिए भी जी लेते हैं। सखियों, हमारे पास अपनों के लिए समय होता है, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, घर के लिए, यहाँ तक कि कैरियर के लिए भी समय होता है लेकिन जब बात अपने स्वास्थ्य की आती है तो अक्सर मुंह से निकलता है अभी नहीं बाद में। लेकिन याद रखिए, अगर हम स्वस्थ हैं तभी घर की मुस्कान भी कायम है। इसी सोच के साथ हम बात करेंगे महिला स्वास्थ्य की, छोटी छोटी बातों की जो समय रहते जान ली जाएं तो बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं। साथ ही हम जानेंगे कि योग किस तरह से हमारे स्वास्थ्य का और दिनचर्या का सच्चा साथी बन सकता है। आज इस महत्वपूर्ण बातचीत में हमारा साथ दे रही हैं डॉक्टर सौम्या अग्रवाल। डॉक्टर सौम्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिंदिया की दुनिया में।
2: थैंक यू मोनिका जी। आकाशवाणी के सभी श्रोतागण, मोनिका जी और पूरे आकाशवाणी परिवार को आपकी डॉग दोस्त डॉक्टर सौम्या अग्रवाल की ओर से स्नेहपूर्ण नमस्कार और विश्व योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: वाह सौम्या जी, तो शुरू करें अपनी बातचीत का सिलसिला।
2: बिल्कुल।
1: डॉक्टर सौम्या, आप एक डॉक्टर हैं और जाहिर सी बात है कि आप एक महिला भी हैं, तो डॉक्टर और एक महिला के नजरिए से आप महिला स्वास्थ्य को कैसे परिभाषित करती हैं?
2: मैं शुरुआत कुछ पंक्तियों से करना चाहूंगी।
1: बिल्कुल।
2: नारी केवल सहने की शक्ति नहीं है, नारी जीवन को गढ़ने की शक्ति है। जब वो अपने स्वास्थ्य को अपनाती है तो घर, समाज और आने वाली पीढ़ियों में स्वस्थ जीवन की रोशनी जलाती है। अक्सर जब महिला स्वास्थ्य की बात होती है तो हमारा ध्यान बीमारी, गर्भावस्था, मासिक धर्म या किसी आपातकालीन स्थिति की ओर चला जाता है। ये सभी विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन महिला स्वास्थ्य केवल बीमारी ही नहीं बल्कि अच्छा स्वास्थ्य यानी शरीर में ऊर्जा, मन में संतुलन, जीवन में सक्रियता और समय पर अपनी देखभाल करना है। इसीलिए आज हम डर या बीमारी की भाषा में नहीं बल्कि सजगता, स्वदेखभाल और स्वास्थ्य निर्माण की भाषा में बात करेंगे। और आज की इस चर्चा के माध्यम से मैं सभी सखियों के साथ अच्छे स्वास्थ्य के सीक्रेट मंत्र साझा करने के लिए बेहद उत्साहित हूँ।
1: बिल्कुल डॉक्टर सौम्या, हम भी बहुत बेताब हैं कि वो जो मंत्र आप बोल रही हैं वो क्या है। यहीं पर मैं इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए ये जानना चाहूंगी कि हम महिलाएं जो होती हैं वो घर, परिवार, बच्चे और काम की जिम्मेदारियों में इतनी उलझ जाती हैं कि खुद का ख्याल सबसे आखिर में आता है, तो क्या ये आदत हमारे स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकती है?
2: जी बिल्कुल, यह आदत हमारे स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में महिलाएं घर, परिवार, बच्चे, काम और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच अपने शरीर और मन की जरूरतों को अक्सर पीछे रख देती हैं। लेकिन स्वास्थ्य को लगातार टालते रहने का असर धीरे धीरे थकान, चिड़चिड़ापन, कमजोरी, तनाव और जीवन शैली से जुड़ी समस्याओं के रूप में दिखने लगता है। इसलिए अपनी सेहत को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं है, समझदारी है। और यह स्व देखभाल की शुरुआत होती है अच्छे स्वास्थ्य के पहले स्तंभ से, जो कि है नींद। अच्छी नींद शरीर और मन दोनों के लिए आवश्यक है। नींद के दौरान शरीर की मरम्मत होती है, हार्मोन संतुलित होते हैं, दिमाग तरोताजा होता है और भावनाओं को संभालने की क्षमता बेहतर होती है। नींद हमारी याददाश्त और सीखने की क्षमता के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। दिन भर में जो भी बातें हम सीखते हैं, पढ़ाई, काम की जानकारी, नए स्किल्स, इन सब को दिमाग नींद के दौरान व्यवस्थित और मजबूत करता है। लगातार कम नींद लेने से थकान, चिड़चिड़ापन, सिर दर्द, वजन बढ़ना, मधुमेह और रक्तचाप जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए कोशिश करें कि रोज लगभग 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद मिले। सोने और उठने का समय नियमित रखें। अच्छी नींद के लिए कुछ छोटी बातें जो मदद कर सकती हैं वो है, रात का भोजन सोने से लगभग 2 से 3 घंटा पहले ले लें। देर शाम के बाद चाय, कॉफी जैसे स्टिमुलेंस कम लें। सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल और स्क्रीन का उपयोग घटा दें। और सोने से पहले शरीर और मन को शांत करने वाली रूटीन बनाएं, जैसे कि हल्की स्ट्रेचिंग, गहरी सांसें लेना,

0: प्राणायाम, योग निद्रा या गाइडेड रिलैक्सेशन। साथ ही यदि किसी को बहुत अधिक खर्राटे आते हैं, नींद में बार बार सांस रुकने जैसा महसूस होता है, बार बार नींद टूटती है या पूरी रात सोने के बाद भी सुबह ताजगी महसूस नहीं होती, तो इसे सामान्य मानकर न टालें। ऐसी स्थिति में डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी नींद की गुणवत्ता से जुड़ी समस्याएं भी स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल सकती हैं।
1: तो ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर सौम्या कि नींद कितनी जरूरी है हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए, जिसे अक्सर जो हमारी सहेलियां हैं, सखियां हैं, वो नजरअंदाज करती हैं। और मेरे ख्याल से अमूमन ज्यादातर जो महिलाएं हैं वो जितनी उनको जरूरत है उससे कम नींद लेती हैं। डॉक्टर सौम्या, अक्सर जब सखियां मिलती हैं तो एक बात जरूर सुनने को मिलती है कि बहुत थकान रहती है, कमजोरी लगती है, तो इसकी वजह क्या हो सकती है?
0: मोनिका जी, थकान और कमजोरी बहुत आम शिकायतें हैं और इनके पीछे कई कारण हो सकते हैं। नींद की कमी, पोषण की कमी, अनीमिया, थायराइड की समस्याएं, विटामिन की कमी, तनाव, ओवरवर्क, फिजिकल एक्टिविटी की कमी या मेडिकल कंडीशन। इसलिए अगर थकान लगातार बनी रहे या रोजमर्रा के कामों को प्रभावित करे तो जांच और डॉक्टर की सलाह जरूर लें। लेकिन एक बहुत सामान्य और अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली वजह है पानी की कमी। इसलिए अच्छे स्वास्थ्य का दूसरा सीक्रेट मंत्र है पानी। हम अक्सर भोजन पर तो ध्यान देते हैं लेकिन पानी पीना भूल जाते हैं, जबकि हमारे शरीर का बड़ा हिस्सा पानी से बना होता है। पानी शरीर में तापमान, पाचन, किडनी, रक्त संचार, मांसपेशियों, ऊर्जा और दिमाग सबके लिए जरूरी है। सामान्यतः एक स्वस्थ व्यसक को दिन भर में लगभग 2 से 3 लीटर तरल पदार्थ की आवश्यकता हो सकती है। गर्मी, व्यायाम, बुखार, उल्टी या दस्त में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत और बढ़ जाती है। वहीं किडनी, हार्ट या लिवर की बीमारी वाले जो लोग हैं उनको पानी की मात्रा डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए। पानी की कमी केवल प्यास नहीं बल्कि डिहाइड्रेशन, थकान, सिर दर्द, चक्कर, ध्यान लगाने में कठिनाई, चिड़चिड़ापन, कब्ज, मुंह सूखना, गाढ़ा या कम पेशाब और सुस्ती जैसे लक्षण दे सकती है। हमारे दिमाग को भी पानी की जरूरत होती है, इसलिए पानी की कमी कंसंट्रेशन, मूड और डिसीजन मेकिंग पर भी असर डाल सकती है। इसलिए दिन भर पर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। मीठे पेय, कोल्ड ड्रिंक, पैकेट जूस या बहुत अधिक चाय कॉफी पानी का अच्छा विकल्प नहीं है। कई बार ये भी होता है कि हम प्यास को भूख समझ लेते हैं, तो इसलिए अगर हल्की भूख लगे और भोजन का समय न हो तो पहले एक गिलास पानी पीकर कुछ देर रुकें। अगर फिर भी भूख बनी रहे तो पौष्टिक स्नैक्स या भोजन ले सकते हैं।
1: अरे वाह डॉक्टर सौम्या, तो पानी इतना इम्पोर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है हमारे स्वास्थ्य के लिए, ये मेरे ख्याल से हमारी सखियों को पता चल गया होगा। तो डॉक्टर सौम्या, नींद हो गई, पानी हो गया एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अब चलते हैं भोजन की ओर। स्वस्थ रहने के लिए महिलाओं को अपनी थाली में कौन सी ऐसी चीजें शामिल करनी चाहिए जिससे उनका शरीर स्वस्थ रहे? क्योंकि अक्सर जो महिलाएं हैं वो ऐसा देखा जाता है कि भाई पहले तो हम घर परिवार को खिलाते हैं फिर हम खुद खाएंगे, तो ऐसे में अमूमन बचा खुचा या बासी भोजन भी वो करती हैं। तो आप ऐसे में हमारी सखियों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि उनका भोजन कैसा होना चाहिए?
0: बहुत ही सही बात कही आपने मोनिका जी। कई महिलाएं परिवार के भोजन का पूरा ध्यान रखती हैं लेकिन अपनी थाली को आखिरी में रख देती हैं।
1: बिल्कुल,
0: पोषण केवल पेट भरने का नाम नहीं है। अच्छा पोषण शरीर को ऊर्जा, ताकत, रोग प्रतिरोधक क्षमता, हार्मोनल संतुलन और उम्र बढ़ने पर सक्रिय रहने की क्षमता देता है। इसलिए अच्छे स्वास्थ्य का तीसरा सीक्रेट मंत्र है सही पोषण। पोषण को आसान भाषा में हम दो भागों में समझ सकते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी वे पोषक तत्व जिनकी शरीर को अधिक मात्रा में जरूरी होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमें ऊर्जा देते हैं, प्रोटीन शरीर की मरम्मत और मांसपेशियों के लिए आवश्यक है और हेल्दी फैट्स हार्मोन, ब्रेन और सेल के लिए जरूरी है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मात्रा में तो छोटे होते हैं लेकिन महत्व बहुत बड़ा होता है उनका भी। इसमें आएंगे आपके आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12, फोलेट, आयोडीन, जिंक इत्यादि। संतुलित भोजन के लिए ICMR तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन द्वारा विकसित मेरी आज की थाली अच्छा मार्गदर्शन देती है। आसान भाषा में कहें तो हमारी थाली में अनाज के साथ पर्याप्त दालें या प्रोटीन का सोर्स, सब्जियां, फल, दूध, दही जैसे विकल्प और थोड़ी मात्रा में स्वस्थ वसा शामिल होनी चाहिए। केवल चावल या रोटी अधिक और दाल सब्जी कम होगी तो पोषण अधूरा रह

0: सकता है।
1: बिल्कुल,
0: प्रोटीन पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। प्रोटीन केवल जिम जाने वालों के लिए नहीं है, यह मांसपेशियां, हड्डियां, त्वचा, बाल, इम्यूनिटी और हीलिंग के लिए जरूरी है। स्वस्थ सखियों को हर दिन लगभग 0.8 से 1.2 ग्राम प्रोटीन अपने वजन के हर किलो के लिए लेना चाहिए, यानी कि 60 किलो वजन वाले व्यक्ति को लगभग 48 से 72 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन लेना चाहिए। यह आवश्यकता उम्र, गर्भावस्था, स्तनपान, बीमारी और फिजिकल एक्टिविटी के अनुसार बदल सकती है। भारतीय भोजन में दाल, चना, राजमा, लोबिया, सोया, पनीर, दही, दूध, अंकुरित अनाज, मूंगफली, तिल, बीज और मेवे अच्छे प्रोटीन सोर्सेज हो सकते हैं। कोशिश करें कि हर मुख्य भोजन में कोई ना कोई प्रोटीन सोर्स जरूर हो। इसके साथ थाली को रंग बिरंगा रखें।
1: बिल्कुल,
0: हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, चुकंदर, टमाटर, कद्दू, शिमला मिर्च और मौसमी फल, जितने रंग उतने अलग अलग विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट मिलने की संभावना बढ़ती है। फाइबर, जिसे आम भाषा में हम

0: कोशिश करें कि हर मुख्य भोजन में कोई ना कोई प्रोटीन सोर्स जरूर हो। इसके साथ थाली को रंग बिरंगा रखें।
1: बिल्कुल।
0: हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, चुकंदर, टमाटर, कद्दू, शिमला मिर्च और मौसमी फल, जितने रंग उतने अलग अलग विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट मिलने की संभावना बढ़ती है। फाइबर, जिसे आम भाषा में हम रेशा कहते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमें मिलेगा साबुत अनाज, फल, सब्जियां, सलाद, बीज और मेवे से, और पाचन, कब्ज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर और आंतों के स्वास्थ्य, जिसे हम गट हेल्थ कहते हैं, ये इनमें मदद करता है। जूस की जगह कोशिश करें कि आप पूरा फल खाएं, ताकि आप उसका जो रेशा है वो हम व्यर्थ ना करें।
1: जी,
0: हमारे जो पारंपरिक भोजन होते हैं उनमें भी बहुत ज्ञान छिपा है। दही, छाछ, फर्मेंटेड या खमीर उठे हुए भोजन, मिलेट से बने पारंपरिक पेय और छत्तीसगढ़ का बोरे बासी जैसे भोजन गट हेल्थ, हाइड्रेशन और कूलिंग इफेक्ट के संदर्भ में उपयोगी हो सकते हैं, जो छत्तीसगढ़ी गर्मी के लिए बहुत लाभदायक है।
1: वाह, बहुत सुंदर। तो जितनी रंग बिरंगी थाली होगी उतना ही वो हमारे स्वास्थ्य को भी सुंदर बनाएगी, है ना? डॉक्टर सौम्या, एक लड़की से महिला फिर माँ बनने तक शरीर कई तरह के बदलावों से गुजरता है, तो हर उम्र में स्वस्थ रहने का क्या मंत्र है?
0: मोनिका जी, हर उम्र में स्वस्थ रहने का सरल मंत्र है शरीर को सक्रिय रखना, मांसपेशियों को मजबूत रखना और अपनी उम्र व जीवन स्थिति के अनुसार शरीर की जरूरतों को समझना और संतुलन बनाना। और इसीलिए स्वास्थ्य का चौथा सीक्रेट मंत्र है गतिविधि। चलना, सीढ़ियां चढ़ना, घर के काम करना, योग, नृत्य, खेल, साइकिल चलाना, शरीर को सक्रिय रखने के कई तरीके हैं।
1: बिल्कुल।
0: सामान्यतः व्यस्कों के लिए सप्ताह में लगभग 150 मिनट मध्यम तीव्रता की गतिविधि, यानी कि आप एक्सरसाइज करें पर थोड़ा बात कर सके उस स्पीड पे, ये एक अच्छा लक्ष्य माना जाता है। इसे रोज 20 से 30 मिनट में भी बांटा जा सकता है। लेकिन महिलाओं के लिए केवल चलना ही काफी नहीं है, ताकत भी जरूरी है। जब हम ताकत की बात करते हैं तो हमारे मन में झांसी की रानी की छवि आती है, साहस, संतुलन और शक्ति की छवि।
1: बिल्कुल।
0: आज हमें युद्ध तो नहीं लड़ना है, लेकिन हमें अपने जीवन की जिम्मेदारियां निभानी है।
1: वो भी एक तरीके से युद्ध ही बोला जाएगा।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: जी।
0: एंड इसीलिए शरीर में ताकत होना बहुत जरूरी है।
1: जी।
0: मांसपेशियां केवल शरीर दिखाने के लिए नहीं होती हैं, हमारी रोजमर्रा की स्वतंत्रता छिपी हुई है इनमें। सीढ़ियां चढ़ना, सामान उठाना, बच्चे को गोद में लेना, लंबे समय तक काम कर पाना, गिरने से बचना और उम्र बढ़ने पर भी अपना स्वयं काम कर पाना, ये सब हमें मांसपेशियां देती है। सप्ताह में कम से कम दो दिन या हर तीसरे दिन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी चाहिए। शुरुआत के लिए हम कुर्सी से उठना बैठना, दीवार पर पुशअप, पानी की बोतल के साथ हल्का व्यायाम, रेजिस्टेंस बैंड यूज कर सकते हैं, इनको हम यूज कर सकते हैं, और उद्देश्य ये है कि शरीर को धीरे धीरे सुरक्षित रूप से हम मजबूत बनाएं।
1: वाह, तो यहीं पर हम आते हैं योग दिवस की ओर, क्योंकि 21 जून को यानी कि आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग एक दोस्त बनकर एक महिला को स्वस्थ रहने में कैसे मदद कर सकता है?
0: बहुत सुंदर प्रश्न है। योग सच में महिलाओं के जीवन में एक दोस्त की तरह काम कर सकता है, क्योंकि योग हमें अपने शरीर से लड़ना नहीं, उससे दोस्ती करना सिखाता है। योग शरीर, मन और सांस के बीच मित्रता और संतुलन बनाने की प्रक्रिया है। जब हम योग करते हैं तो हम अपने शरीर की सुनना सीखते हैं, कहाँ तनाव है, कहाँ थकान है, कहाँ ताकत चाहिए और कहाँ आराम चाहिए। सांस पर ध्यान देने से मन धीरे धीरे शांत होता है। ध्यान और एकाग्रता से हम अपने भीतर से जुड़ते हैं। इस तरह योग हमें अपना ही मित्र बनना सिखाता है। योग का एक सामाजिक पहलू भी है। मनुष्य अकेले जीने के लिए तो नहीं बना है, हमारा तंत्रिका तंत्र संबंधों, सुरक्षा और सहयोग से शांत होता है।
1: बिल्कुल।
0: जब महिलाएं साथ में योगा करती हैं तो वह केवल व्यायाम नहीं रहता, वो समुदाय, सहयोग और अपनेपन का एक हिस्सा बन जाता है। एक दूसरे को देखकर प्रेरणा मिलती है, नई सखियां मिलती हैं, नियमितता बनती है और अकेलापन कम होता है। इसीलिए हमें अपने आसपास सहयोग का एक घेरा बनाना चाहिए, ऐसे लोग जिनसे हम खुलकर बात कर सकें, जरूरत पड़ने पर मदद मांग सकें और जिनके लिए हम भी सहारा बन सकें।
1: वाह।
0: योग हमें शरीर से मित्रता, मन से मित्रता, सांस से मित्रता और समुदाय से जुड़ाव, ये चारों बातें सिखा जाता
1: है। बहुत सुंदर विचार डॉक्टर सौम्या, यानी कि योग से हम रोग भगा सकते हैं। डॉक्टर सौम्या, योग क्या उन समस्याओं में भी मददगार हो सकता है जैसे कि

0: तनाव की अगर हम बात करें, मानसिक समस्याओं की बात करें, हार्मोनल बदलाव होते हैं सखियों में, मेनोपॉज से जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी सखियां हैं, वो गुजर रही हैं, तो ऐसे में भी क्या योग उनमें मददगार हो सकता है?
1: जी बिल्कुल, भगवद गीता में कहा गया है समत्वम योगम उच्यते, यानी संतुलन ही योग है। इसमें ताकत, लचीलापन, संतुलन, सांस पर नियंत्रण, ध्यान और मानसिक एकाग्रता, ये सभी पहलू शामिल होते हैं। तनाव, नींद की कमी, हार्मोनल बदलाव और मेनोपॉज जैसे जीवन चरणों में योग सहायक हो सकता है, क्योंकि यह शरीर को सक्रिय करता है, सांस को गहरा करता है, नर्वस सिस्टम को शांत करता है और मन को वर्तमान क्षण से जोड़ता है। कोई अगर स्वास्थ्य समस्या है तो उचित जांच, डॉक्टर की सलाह और उपचार के साथ योग को सुरक्षित तरीके से जोड़ा जा सकता है।
0: मतलब योग वो दोस्त है जो हमारे साथ चलकर हमारे जीवन को स्वस्थ बना सकता है।
1: बिल्कुल जी।
0: डॉक्टर सौम्या, आपने अभी स्वास्थ्य जांच की बात की, तो अक्सर हम देखते हैं कि ये वो सोच है जिसके बारे में हम सोचते हैं कि अभी क्यों, हमको क्या जरूरत है एक स्वास्थ्य जांच की, मुझे कोई समस्या थोड़ी है। तो क्या स्वस्थ महिला को नियमित स्वास्थ्य जांच कराते रहनी चाहिए?
1: बिल्कुल, अक्सर हम ये सोचते हैं कि तकलीफ होगी तो डॉक्टर के पास जाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन कई समस्याएं शुरुआत में चुपचाप बढ़ती रहती हैं और समय पर पकड़ में आ जाए तो उन्हें बेहतर तरीके से संभाला जा सकता है। इसलिए प्रिवेंटेटिव हेल्थ चेकअप, यानी बीमारी होने से पहले की जांचें स्वस्थ महिलाओं के लिए भी जरूरी हैं। इसे हम 5 हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला हिस्सा है पोषण की कमी। महिलाओं में आयरन की कमी और अनीमिया बहुत आम बात है। लगातार थकान, चक्कर, सांस फूलना, बाल झड़ना, बहुत अधिक कमजोरी या पीलापन महसूस हो तो इसे सामान्य मानकर न टालें। एक साधारण ब्लड टेस्ट जैसे हीमोग्लोबिन और जरूरत के अनुसार आयरन, विटामिन B12, विटामिन डी जैसी जांचें बहुत कुछ बता सकती है। दूसरा हिस्सा हम मानेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और मेटाबॉलिक हेल्थ, यानी कि जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां हैं जैसे लाइफ स्टाइल डिजीजेस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इनके बारे में
0: जी।
1: तो ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल की जांच 30 वर्ष की उम्र के बाद समय समय पर करानी चाहिए, भले ही कोई तकलीफ ना हो
0: जी।
1: क्योंकि कई बार ये साइलेंट होते हैं, कोई आपको दर्द नहीं होगा पर अंदर ही अंदर ये धीरे धीरे आपकी हार्ट, किडनी, आईज और ब्रेन पर असर डाल सकते हैं। यदि परिवार में डायबिटीज, बीपी, हार्ट डिजीज, थायराइड या ओबेसिटी का इतिहास हो तो और अधिक सजग रहना चाहिए। इनके अलावा 40 वर्ष के बाद साल में कम से कम एक बार बेसिक मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए, जिसमें बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, वजन, कमर का नाप, किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन, थायराइड और जरूरत के अनुसार बाकी अन्य जांचें शामिल हो सकती है। तीसरा अंग होगा इसका हड्डियां और जोड़ों का स्वास्थ्य। महिलाओं में उम्र बढ़ने के साथ, विशेषकर मेनोपॉज के बाद, बोन डेंसिटी कम हो जाती है। इसलिए कैल्शियम, विटामिन डी, धूप, प्रोटीन तथा नियमित गतिविधि, शक्ति अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है
0: जी।
1: अगर कमर दर्द, बार बार फ्रैक्चर, पोस्चर में बदलाव आ रहा है या जॉइंट में आपको लगातार दर्द महसूस हो रहा है तो डॉक्टर के पास बोन हेल्थ और बोन डेंसिटी के बारे में बात जरूर करें
0: जी।
1: चौथा पार्ट होगा इसका कैंसर स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन। सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय मुख का जो कैंसर होता है काफी हद तक रोका जा सकता है अगर हम जो वैक्सीन इसके लिए अवेलेबल है, जिसे HPV वैक्सीन कहा जाता है
0: जी,
1: उसका हम उपयोग करें। तो जिनके भी घर में 9 से 14 वर्ष की बेटियां हैं वे HPV वैक्सीन के बारे में डॉक्टर या नजदीकी जो भी आपका हॉस्पिटल हो उसमें जरूर जानकारी लें। और जो महिलाएं हैं जिनकी उम्र 26 वर्ष तक है वो भी इसे यूज कर सकती हैं। तो अगेन इसके लिए और जानकारी लेने की कोशिश करें और इसे अपनाने की कोशिश करें। इसके बाद भी 40 वर्ष के बाद स्क्रीनिंग जो होती है सर्वाइकल कैंसर के लिए, जिसे पैप्समेयर कहते हैं, वो करना जरूरी है। तो ये तो हो गया सर्वाइकल कैंसर के बारे में। ब्रेस्ट हेल्थ के लिए महिलाओं को अपने शरीर को समझना चाहिए। यदि स्तन में नई गांठ, निप्पल से पानी आना, त्वचा में गड्ढे, लालिमा, आकार में बदलाव या बगल में गांठ महसूस हो तो डॉक्टर से जांच कराएं। पांचवा स्तंभ होगा आंख और सुनने की क्षमता। 40 वर्ष के बाद आंखों की नियमित जांच जरूरी हो जाती है, जैसे चश्मे का नंबर, पास का कम दिखना, डायबिटीज या बीपी से जुड़ी आई कॉम्प्लिकेशंस और आंखों का प्रेशर। वैसे ही 50 और 60 वर्ष के उम्र में कैटरैक्ट या मोतियाबिंद

0: की जांच ध्यान में रखनी चाहिए। सुनने की क्षमता को भी नजरअंदाज ना करें। यदि बार बार लोगों से बात दोहराने को कहना पड़े, टीवी की आवाज बहुत तेज रखनी पड़े, भीड़ या शोर से बात समझने में दिक्कत हो या कान में आवाज घंटी जैसी अनुभूति हो तो कान की जांच और जरूरत पड़ने पर ऑडियोमेट्री करानी चाहिए। सार यही है, जांच डर के लिए नहीं सुरक्षा के लिए होती है। समय पर जांच, स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन हमें बीमारी से पहले सजग होने का अवसर देते हैं।
1: और ये दिन के कुछ चंद घंटे ही लेता है, लेकिन अगर हम ये नियमित जांच कराते रहें उम्र के हर पड़ाव पे, तो हम बड़ी समस्याओं से काफी हद तक अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: डॉक्टर सौम्या, सखियों के लिए चलते चलते मैं आपसे चाहूंगी कि एक आप संदेश दें जो उन्हें याद दिलाए कि दूसरों का ख्याल रखने के साथ साथ खुद का ख्याल रखना भी कितना जरूरी है।
0: मैं सभी सखियों से यही कहना चाहूंगी कि अपनी सेहत को आखिरी स्थान पर न रखें। आप केवल किसी की बेटी, बहन, पत्नी, माँ या सहकर्मी नहीं है। आप अपने आप में भी एक संपूर्ण व्यक्ति हैं। आपका शरीर, आपका मन, आपकी ऊर्जा और आपके सपने भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। एक प्रसिद्ध संस्कृत की उक्ति है, शरीर माघम घलु धर्म साधनम, यानी शरीर ही हमारे जीवन धर्म और कर्तव्यों को निभाने का पहला साधन है।
1: बिल्कुल।
0: इसीलिए अपने शरीर की देखभाल कोई विलासिता नहीं, जीवन की आवश्यकता है। आज विश्व योग दिवस के अवसर पर यह बात हमें और याद रखनी है कि योग हमें संतुलन सिखाता है, शरीर, मन और सांस का संतुलन, काम और आराम का संतुलन, दूसरों की देखभाल और अपनी देखभाल का संतुलन। जब महिलाएं स्वस्थ, सक्रिय और मानसिक रूप से संतुलित होती हैं तो वे अपने जीवन, सपनों और जिम्मेदारियों से अधिक मजबूती से जुड़ पाती हैं।
1: बहुत सुंदर डॉक्टर सौम्या, और इतने सुंदर तरीके से आपने जो स्तंभ हमारी सखियों को समझाए, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जितनी भी सखियां सुन रही हैं बिंदिया की दुनिया में, वो जरूर आज से सजग हो जाएंगी कि कैसे वो अपना ध्यान रखें जिससे कि वो खुश रहें और उनका परिवार भी खुश रहे। इतनी अच्छी जानकारी इतने सुंदर तरीके से समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: तो देखा सखियों आपने, घर की सबसे मजबूत नींव वही होती है जिसकी सेहत मजबूत हो। इसीलिए अपने लिए थोड़ा सा समय जरूर निकालें, नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं, संतुलित भोजन अपनाएं और योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना ना भूलें। और यही बात कितने सुंदर और सरल तरीके से हमको समझा रही थी डॉक्टर सौम्या अग्रवाल। स्वास्थ्य ही वो पूंजी है जो जीवन के हर रिश्ते और खुशी को संवारती है। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराती रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कान ही आपके पूरे परिवार की सबसे बड़ी ताकत है और आप भी हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं, बिंदिया की सबसे बड़ी ताकत हैं। तो अपना ध्यान रखिए और इसी के साथ हमको दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 2 बजे हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत कार्यक्रम में पहला गीत फिल्म नगीना से मोहम्मद अजीज की आवाज़ में। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: अरे सुमित, तुमने बाइक इधर क्यों मोड़ दी?
1: अरे इसी रोड पर ही तो हमको जाना है यार। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: हेलो
0: सुमित, ये तुम क्या कर रहे हो?
1: हेलो, अरे बात कर रहा हूँ यार, मुझे बात तो करने दे।
0: सुमित, तुम Hello? गाड़ी रोक कर भी तो बात कर सकते हो।
1: अरे छोड़ ना यार, मैं तो चलती गाड़ी में ही कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: कौन? संदीप।
0: सुमित देख के।
1: हाँ बोल यार।
0: सुमित
1: कब आना है?
0: अरे देख के सामने।
1: ठीक है, और कौन आएंगे?
2: सुमित आज इस दुनिया में नहीं है और उसका दोस्त घायल है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल ना करें। खुद के और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करें।
3: मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद बीमा कंपनी वाले क्लेम देने में बहुत देर कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं?
4: अरे जो सामान मैंने खरीदा वो तो खराब निकला, बेचने वाला इसे वापस नहीं ले रहा है, अब मैं क्या करूं?
5: मेरी बहन के ससुराल वाले उसे रुपयों के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं। इस मुसीबत से मैं उसे कैसे बचा सकती हूँ?

ऐसी कोई भी परिस्थिति कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकती है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए। हमारे संविधान में क्या है, किसी भी विवाद या परिस्थिति में समाधान का प्रावधान, जानने के लिए सुनिए आकाशवाणी रायपुर और प्रदेश के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर रविवार शाम 6:30 बजे समन्वित कार्यक्रम कानून की बात।

लीजिए आप सुनिए चित्रपट संगीत में अगला गीत फिल्म जाबांस से। गीत को गाया है किशोर और सपना मुखर्जी ने, गीत को लिखा है इंदिवर ने, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 2:15 हुए हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष एमबी कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से बंद किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों में लिस्ट ए प्रारूप का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है जो स्वस्थ संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्र से योग शुरू करने पर इसके अधिक लाभ मिलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। राष्ट्र राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। श्री मांडविया ने कहा कि योग न केवल भारत की विरासत है बल्कि विश्व को दिया गया एक अनुपम उपहार है।
3: योगा केवल हमारी विरासत नहीं है, दुनिया को दिया गया एक उपहार ही है। और इसलिए जब सारी दुनिया 21 जून को योगा दिन मनाती है, तब हम सभी भारतीय योग से जुड़े हर दिन में योगा करके अपने स्वयं को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए प्रयास करिए।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में भाग लिया। ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में लगभग 20,000 लोगों ने योग, प्राणायाम और राजयोग का अभ्यास किया। उधर पंजाब में विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों और संस्थानों ने योग सत्र आयोजित किए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जालंधर के निजी विश्वविद्यालय में आयोजित योग सत्र में भाग लिया। उन्होंने राज्य के लोगों, विशेषकर युवाओं से नशा न करने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने लोकभवन और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जुहू तट पर आयोजित योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया।
4: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर कहा कि योग जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम का प्रभावी माध्यम है और स्वस्थ रहने के लिए सभी को नियमित रूप से योग करना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बोरिवली में आयोजित योग सत्र में हिस्सा लिया। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने मुंबई में योगाभ्यास किया। IIT बॉम्बे, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के मुख्यालय सहित कई संस्थानों ने भी योग दिवस मनाया। किताबते आकाशवाणी समाचार मुंबई।
0: गोवा के तालेगांव स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में योग दिवस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक सहित छात्र, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी और योग अभ्यासकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में कॉमन योग प्रोटोकॉल पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने योग कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्यभर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। इधर राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में भी योग सत्र का आयोजन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस सत्र में भाग लिया। मंत्रालय में सचिव

0: जल कुमार ने कहा कि योग को केवल वार्षिक आयोजन तक सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि इसे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। वहीं बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास में भाग लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों पर 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाने के दौरान उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपये से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
2: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि DPR बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, के साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
0: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
3: मेरा पूरा भरोसा है NTA के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। निर्भय होके बैठे, चिंता मुक्त होके बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
0: श्री प्रधान ने बताया कि CBSE के शेष परीक्षा परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे।
3: CBSE की जो रिजल्ट बचा हुआ है, इसे CBSE के 17 लाख बच्चों से लगभग 15.5 लाख बच्चों की रिजल्ट आ चुकी है। जो बच्चे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था वो काम लगभग पूरा हो चुका है। CBSE जल्द ही उसको प्रकाशित करने वाला है।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6,550 रुपये के प्रोसेसिंग शुल्क पर 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इसे पूरी तरह से

0: कागजी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। श्री वेंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत की रूपरेखा तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: ईरान के प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि 60 दिनों के भीतर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका होर्मुज जलडमरों मध्य पर नए शुल्क लगा सकता है। बढ़ते तनाव के कारण शुक्रवार को प्रस्तावित वार्ता स्थगित कर दी गई थी। ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नाम मिनाब 168 रखा गया है, जो स्कूल पर हुए हमले में मारे गए लोगों की स्मृति में है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर कालीबफ करेंगे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: मुंबई में बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही, जिससे बस सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रहीं। हालांकि बेस्ट प्रशासन ने शहर में नीट पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 100 से अधिक बसों की व्यवस्था की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, केरलम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश की संभावना है। बिहार और तेलंगाना के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा विदर्भ में बुधवार तक लू चलने की संभावना व्यक्त की गई है। क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए के सामने 378 रन का लक्ष्य रखा है। दामबुला के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ए को शानदार शुरुआत मिली। टीम बिना कोई विकेट गंवाए 130 रन के पार पहुंची। वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 29 गेंदों में 94 रन बनाए। उन्होंने महज 11 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की है। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष M.B. कलीबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव और FM बैंड पर यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में पहला गीत कुमार सानू, आलिशा चिनॉय और सपना मुखर्जी की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी। संगीत है नदीम श्रवण का। बोल हैं समीर के।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार बारी बखरी के गोठ स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। और तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ संगी संगवारी मल्ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

चित्रपट संगीत आप सुन रहे हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म कभी हाँ कभी ना से। स्वर है कुमार सानू और अलका याग्निक के, गीत को लिखा है मजरूह ने और संगीत है जतिन ललित का।

चित्रपट संगीत में अगला गीत फिल्म होगी प्यार की जीत से। स्वर हैं जसपिंदर नरोला और रूप कुमार राठौर के। गीत को लिखा है समीर ने, संगीत है आनंद मिलिंद का।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट

0: वेब्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेब्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोट, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। औ तो

0: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक घर द्वार बारी बखरी के गोठ स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह और तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा ता आपो सुनाओ संगी संगवारी मल्ल तक सुनाओ घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक
1: लीजिए अब सुनिए अगला गीत आशा भोसले और विनोद राठौर की आवाज़ों में जिसे लिखा है जफर गोरखपुरी ने संगीत है अनु मलिक का फिल्म का नाम है बाजीगर

लीजिए, आप सुनिए चित्रपट संगीत में अंतिम गीत फिल्म दीवाना से कुमार सानू की आवाज़ में, जिसे लिखा है समीर ने और संगीत है नदीम श्रवण का।

0: चित्रपट संगीत समाप्त हुआ। मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्ज़ और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मीटर पर ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आप हमारा प्रसारण न्यूज़ ऑन AIR ऐप और DTH पर भी सुन सकते हैं। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3 बज चुके हैं। हमारी ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। शाम 4:58 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति।
1: स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
3: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्र से योग शुरू करने पर इससे अधिक लाभ मिलते हैं। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के

0: 2000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। वहीं बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत आईएनएस दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था। आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। उन्होंने बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। श्री वेंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत की रूपरेखा तैयार की जाएगी। वहीं ईरान के प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। दाम्बुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ए ने 8वें ओवर में 2 विकेट पर 48 रन बना लिए हैं। भारत के लिए वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 29 गेंदों में 94 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Naresh Mago. Prime Minister Narendra Modi today emphasized yoga's role in providing a pathway from mental wellness to physical wellness. The Prime Minister said this while leading the nation in observing the International Day of Yoga from Kolkata's Red Road. Participating in the Common Yoga Protocol session this morning, Mr. Modi performed yoga alongside thousands of practitioners at the iconic venue.
3: Yoga केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है। यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध, ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है, इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है।
2: President Draupadi Murmu performed yoga at the Garrison Ground in Jabalpur, Madhya Pradesh today. Addressing the event, the president said that yoga is a celebration of India's great tradition and it has shown humanity the path to a healthy, balanced and meaningful life. Vice President C.P. Radhakrishnan also performed yoga at the Spituk Stadium in Leh, Ladakh, along with hundreds of participants. Prime Minister Narendra Modi today commissioned 3 indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agrey in Kolkata. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach shipbuilders and engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare.

आपने ट्यून किया आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए फिल्मी तराने। पहला नगमा है फिल्म आ गले लग जा से। स्वर है किशोर कुमार और लता मंगेशकर का।

लीजिए सुनिए बाल कार्यक्रम रेडियो किड्स। आज जो चर्चा के विषय हैं, योग से स्वस्थ बचपन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में विशेष ये चर्चा रहेगी। और दूसरा जो चर्चा का विषय है वो है इंटरनेशनल फादर्स डे। लीजिए सुनिए कार्यक्रम रेडियो किड्स।

0: पैसे के पीछे दौड़ रहा मन है, रोगों से पीड़ित सबका तन है। योग को तुम अपनाओ, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। और दोस्तों, शरीर और आत्मा के लिए तोहफा है योग, खुद को खुद से मिलाने का मौका है योग। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विराट मोहन शर्मा और मेरे साथ हैं
1: आपकी दोस्त प्रिशा अग्रवाल।
0: तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम,
2: जिसका नाम है
3: रेडियो प्रेस।
1: पता है विराट, भारत की भूमि ऋषि मुनि देवों की है।
0: हाँ प्रिशा, इसलिए भारतीय संस्कृति विश्व में अपनी श्रेष्ठता और महानता के लिए प्रसिद्ध है। सभी सुखी रहे की भावना को लेकर ऋषियों और मुनियों ने मानव जीवन को सुखमय और स्वास्थ्य बनाने के

0: कई प्रयास किए हैं, जिसमें प्रमुख प्रयास है योग। और तुम्हें पता है, योग की कला का जश्न मनाने के लिए एक विशेष दिन की स्थापना का विचार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रस्तावित किया था। इस पहल के माध्यम से भारतीय प्रधानमंत्री हमारे पूर्वजों द्वारा दिए गए इस अनोखे उपहार को प्रकाश में लेना चाहते हैं। उन्होंने सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान इस सुझाव का प्रस्ताव दिया था। अपने संयुक्त राष्ट्र के संबोधन में उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि योग दिवस 21 जून को मनाना चाहिए, क्योंकि यह वर्ष का सबसे लंबा दिन है।
1: विराट, आपने मुझे और मेरे दोस्तों को बहुत अच्छी जानकारी दी है। क्या आप और जानकारी देना चाहते हो योग के बारे में?
0: हाँ हाँ बिल्कुल, जल्दी से बताओ।
1: योग का मतलब है जोड़ना, मतलब किसी अच्छे काम से अपने आप को जोड़ना। अपनी हेल्थ के लिए अपने शरीर और मन से किया गया काम होता है योग।
0: हाँ, इसलिए तो कहते हैं सुबह सुबह जो कसरत करता, सुबह सुबह जो कसरत करता, जीवन में वो आगे बढ़ता। विटामिन डी की कमी पूरी होती, जिस तन सूर्य की किरणें लगती। तुम्हें मालूम है प्रशा कि आजकल मनुष्य अनियमित दिनचर्या के कारण अनेक शारीरिक व मानसिक बीमारियों से ग्रस्त होता जा रहा है। इसलिए अपने स्वास्थ्य को सुधारने हेतु योग की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
1: हाँ विराट, मैं अपने पापा के साथ यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाती हूँ योग करने। मैंने देखा है पार्क, बगीचों, घर की छत पर लोग योग करते हैं। लोग योग संस्थाओं, टीवी, मोबाइल से सीख रहे हैं।
0: हाँ प्रशा, तुमने बिल्कुल सही बोला। विद्यालयों में बच्चों को योग शिक्षा दी जा रही है एवं योग कराया जा रहा है। योग स्वास्थ्य की कुंजी तो है ही, और यह भारतीय संस्कृति का अनुपम उपहार है। इसलिए तो कहते हैं मिलती ऊर्जा और सफूर्ति, मिलती ऊर्जा और सफूर्ति, दिन भर रहता शरीर एक्टिव। योग हमें सुंदर मार्ग दिखाता, रोगों से मिलता छुटकारा। दोस्तों, हमने योग दिवस पर तो बहुत जानकारी दे दी। चलो दोस्तों, आज हम एक मजेदार क्विज खेलते हैं जो योग पर आधारित है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपने योग ज्ञान की परीक्षा देने के लिए?
2: हाँ, हाँ।
0: तो चलिए पहला प्रश्न पूछते हैं, सबसे पुराना योग कौन सा है?
3: मैं बताऊं।
4: मुझे पता है मेरा।
0: हाँ हाँ प्रशा बताओ।
1: प्राणायाम।
0: बिल्कुल सही उत्तर। दूसरा प्रश्न, भगवान शिव को किस आसन में बैठना प्रिय है?
4: मुझे पता है विराट।
0: हाँ हाँ बताओ।
4: शिव जी आलती पालती कर बैठते हैं।
0: अरे आलती पालती मार कर तो बैठते ही हैं, लेकिन उस आसन का नाम क्या है?
4: अरे हाँ याद आया, पद्मासन।
0: बिल्कुल सही उत्तर दिया तुमने, स्तुति। तीसरा प्रश्न, योग के कितने मुख्य आसन होते हैं?
1: मुझे पता है विराट।
0: हाँ हाँ बताओ।
1: योग के प्रमुख 84 आसन होते हैं।
0: बिल्कुल सही उत्तर दिया तुमने। अच्छा स्तुति, मैंने तो अब इतने सारे प्रश्न पूछ लिए, क्या तुम कुछ प्रश्न या फिर पहेलियाँ लाई हो योग के ऊपर?
4: हाँ हाँ लाई हूँ।
0: तो जल्दी से पूछो।
4: हम इतनी देर से योग की बात कर रहे हैं कि योग क्या है?
0: हाँ हाँ स्तुति, मेरे को पता है, हमारे शरीर, मन और आत्मा को स्वस्थ बनाने में योग हमारी बहुत मदद करता है।
4: अगला सवाल, योग करने से क्या हासिल होता है?
5: मुझे पता है।
0: आर्ची, मैं देख रहा हूँ तुमने अभी तक एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, क्या तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर पता है?
5: हाँ मुझे पता है विराट।
0: तो बताओ।
5: योग करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुधरती है, तनाव कम होता है और ध्यान बढ़ता है।
0: बिल्कुल सही उत्तर दिया तुमने आर्शी।
4: अगला सवाल, योग दिवस कब मनाया जाता है?
1: मुझे पता।
0: हाँ हाँ शोमचंद बताओ।
6: 21 जून।
0: तुमने तो बिल्कुल सही उत्तर दिया शोमचंद। तो दोस्तों, अब मैं आप सब से एक एक आसन का नाम पूछूंगा, क्या आप तैयार हैं बताने के लिए?
2: हाँ, तैयार है।
0: तो प्रिशा बताओ किसी एक आसन का नाम।
1: सूर्य नमस्कार।

0: नमस्कार।
1: स्तुति तुम
2: ताड़ासन
1: और प्रीशा कश्यप तुम
3: प्राणायाम
1: और आर्षित तुम किसी एक आसन का नाम बताओ।
4: त्रिकोण आसन।
1: और इतिका तुम
5: पद्मासन।
1: अरे वाह, सबने बिल्कुल सही उत्तर दिया।
2: अगला सवाल, योग करने से क्या लाभ है?
1: मैं बताऊं क्या स्तुति?
2: हाँ हाँ बताओ विराट।
1: योग करने से हमारा शरीर मजबूत और लचीला बनता है, तनाव कम होता है और हमें शांति भी मिलती है। हमें स्वस्थ और खुश रहने में मदद मिलती है। शरीर अपना रोग मुक्त करें, कपाल भाति आप रोज करें। सभी आसन योग के असरदायक, अनुलोम विलोम अति लाभदायक।
6: ऐसे दोस्तों कहते हैं, योग करें हम योग करें, दूर सभी हम रोग करें। वरदान मिला जो हमको, हम उसका उपयोग करें। तन मन स्वस्थ बनाता है, आलस दूर भगाता है। सदा सुखी वह रहता है जो इसको करता है।

0: मन के।
1: हमारे स्टूडियो में एक साथी आए, चलिए पूछते हैं उनका नाम।
2: मेरा नाम इतिका है।
1: अब क्या सुनाने वाला है?
2: आज मैं हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता

0: कथा सुनाने जा रही हूँ,
1: तो चलिए सुनते हैं।
0: लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। धन्यवाद।
2: यह तो बहुत आनंद आया सुनने में।
0: धन्यवाद।
1: तो दोस्तों, मैं आज कुछ मजेदार पहेलियां लाया हूँ, क्या तुम चाहते हो कि वो पहेलियां मैं तुमसे पूछूं?
3: हाँ, हम चाहते हैं।
1: तो पहली पहेली, बोल नहीं पाती हूँ मैं और सुन नहीं पाती, बिना आँखों के हूँ अंधी पर सबको राह दिखाती हूँ, बताओ बताओ।
0: मैं बताऊँ? हाँ, इसका उत्तर पुस्तक है।
1: बिल्कुल सही उत्तर दिया तुमने। दूसरी पहेली, तीन अक्षर का मेरा नाम, बीच कटे तो रिश्ते का नाम, आखिरी कटे तो सब खाएं, भारत के तीन तरफ दिखाएं। स्तुति, क्या तुम्हें इसका उत्तर पता है?
4: हाँ हाँ विराट, मुझे इसका उत्तर पता है।
1: तो बताओ।
4: सागर।
1: अरे वाह, तुमने भी एकदम सही उत्तर दिया। अगली पहेली, सोने की वह चीज है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज्यादा है नहीं बहुत है उसका भार।
4: विराट, क्या मैं बताऊँ?
1: हाँ आरशी, बताओ।
5: इसका उत्तर चारपाई है।
1: तुमने तो बिल्कुल सही उत्तर दिया आरशी। अगली पहेली, नकल उतारे सुनकर वाणी, चुप चुप सुने सभी की कहानी, नील गगन है इसको भाए, चलना क्या उड़ना भी आए। स्तुति, क्या तुम्हें इसका उत्तर पता है?
4: हाँ हाँ विराट, मुझे इसका भी उत्तर पता है।
1: बताओ फिर।
4: तोता।
1: अरे वाह, तुमने तो बिल्कुल सही उत्तर दिया। अगली पहेली, ऐसा क्या है जिसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, प्रिशा क्या तुम्हें इसका उत्तर पता है?
2: हाँ
1: हाँ हाँ बताओ।
2: सांप।
1: अरे सांप कैसे हो सकता है इसका उत्तर? सांप नहीं होगा इसका उत्तर। सोम, क्या तुम्हें इसका उत्तर पता है?
6: सपना।
1: अरे वाह सोम, तुमने तो बिल्कुल सही उत्तर दिया। तो दोस्तों, अब चलते चलते मैं आप सबसे आखिरी पहेली पूछता हूँ, देखते हैं अब इसका उत्तर कौन देता है। वह क्या है जिसका नाम ले तो टूट जाती है?
6: क्या मैं बताऊँ?
1: हाँ हाँ बताओ।
6: खामोशी।
1: अरे वाह, तुमने तो बिल्कुल सही उत्तर दिया।

0: a lifetime of exploration.
1: Vishnu PS for Parikrama.
2: और श्रोताओं, अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। सबसे पहले बात फीफा वर्ल्ड कप की, जिसमें आज रात अमेरिका के अटलांटा में ग्रुप एच के मैच में स्पेन का मुकाबला सऊदी अरब से होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। एक और मुकाबले में अमेरिका के लॉस एंजलिस में ग्रुप जी के मैच में बेल्जियम का सामना ईरान से रात 12:30 बजे से होगा।
3: India have set a target of 378 runs for host Sri Lanka in the summit clash of the Tri-Nation Series at the Rangiri Dambulla International Stadium. In reply, Sri Lanka were 193 for 6 in 28.3 overs when reports last came in. Teenage sensation Vaibhav Suryavanshi smashed a half century in just 11 balls before striking 94 in just 29 balls.
2: और अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
4: We remember freedom fighter Tiku Ram, who was a resident of Sikar, Rajasthan. Tiku was a part of a gathering of Kisan agitators on the 21st of June 1934 to demonstrate against the increased land tax and its forcible collection by the British government.

0: We also remember Martyr Nawab Qadir Ali Khan. Qadir Ali was an eminent Amir of Nagpur. He took a leading part in the First War of Independence in 1857. Qadir Ali organized the rebels of his region, provided financial support to them, and led them in attacking the British establishments at several places.
1: He was caught by the company troops during their attack on the rebels and charged with treason and rebellion. He was sentenced to death and was executed by hanging on the 21st of June, 1862.
2: और इसके साथ ही श्रोताओं, आज हम याद कर रहे हैं विष्णु प्रभाकर को, जो हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, नाटककार, कहानीकार और जीवनीकार थे। उन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक और यात्रा वृत्तांत तथा बाल साहित्य सहित अनेक विधाओं में लेखन किया। उनकी रचनाओं में मानवीय संवेदनाएं, सामाजिक सरोकार और राष्ट्रीय चेतना का चित्रण देखने को मिलता था। और आपको बता दें कि उनके सबसे चर्चित कृति आवारा मसीहा, जो बांग्ला साहित्यकार शरद चट्टोपाध्याय की जीवनी है, इसके अलावा उन्होंने और भी कई सारी लेखनी की और उन्होंने आकाशवाणी और रंगमंच के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके साथ ही उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया। पद्म भूषण, मूर्ति देवी पुरस्कार, तमाम ऐसे अवार्ड्स थे जिनसे उन्हें सम्मानित किया गया।
3: Niccolo di Bernardo de Machiavelli passed on this day, 1527. He was a Florentine diplomat, author, philosopher and historian who lived during the Italian Renaissance. He is best known for his political treatise, The Prince, written around 1513, but not published until 1532, 5 years after his death, and he has often been called the father of modern political philosophy and political science.
2: इसके साथ ही श्रोताओं, आज हम विनीता सोरेन को भी याद कर रहे हैं, जो भारत की पहली आदिवासी महिला हैं जिन्होंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह कर इतिहास रचा था। और आपको बता दें कि झारखंड के सरायकेला जिले के केसोरासो गांव से उनका जन्म हुआ था, जहां पर वो एक साधारण किसान परिवार से आने वाली थी। और इसके बाद भी उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प के बल पर पर्वतारोहण के क्षेत्र में विशेष पहचान बताई। और विनीता सोरेन ने प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद कई अभियानों में भाग लिया। वर्ष 2012 में उन्होंने इको एवरेस्ट स्प्रिंग अभियान के तहत

0: तहत 26 मई 2012 को माउंट एवरेस्ट की ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया था।
1: लियोन यूरिस पास्ड ऑन दिस डे इन 2003। ही वाज अ बेस्ट सेलिंग अमेरिकन ऑथर ऑफ हिस्टोरिकल फिक्शन, बेस्ट नोन फॉर स्वीपिंग एक्सटेंसिवली रिसर्च्ड नॉवेल्स दैट टैकल्ड मेजर 20th century conflicts, the Holocaust and the Middle Eastern and Irish history. His work often explored resilience and ideologies, with his stories heavily influenced by his own life experiences and heritage.
0: इसके साथ ही आज हम मुद्रास का वास्तविक नाम उन्हें याद कर रहे हैं, सुभाष चंद्र था। उनका जन्म आज ही के दिन 1933 में लखनऊ में हुआ था। वे हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, उपन्यासकार, नाटककार, आलोचक और व्यंग्यकार थे, और उन्होंने अपने वैचारिक दृष्टि, सामाजिक सरोकार और मान्यताओं पर तीखी टिप्पणी की, और इसके लिए वे विशेष रूप से जाने जाते थे। उन्होंने साहित्य, रंगमंच, पत्रकारिता और सांस्कृतिक विमर्श के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके साथ ही उन्होंने आकाशवाणी और पत्रकारिता से भी जुड़कर कार्य किया। उनके प्रमुख उपन्यासों में अचला, शांति भंग और हम सब मनसाराम उल्लेखनीय है। नाटकों में उन्होंने तेंदुआ, मर्जीवा और आला अफसर विशेष रूप से चर्चित रहा, जिसके बाद उन्हें कई सम्मानों से सम्मानित किया गया, जिसमें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, भारतेंदु सम्मान और यश भारतीय सम्मान शामिल है।
1: Prince William, William Arthur Philip Louis, celebrates his birthday today. He is, of course, the heir apparent to the British throne. As the eldest son of King Charles III and Diana, Princess of Wales, he stands first in line to become the King of the United Kingdom and 14 other Commonwealth and realms, and also Karishma Group Captain, formerly Wing Commander Abhinandan Vardhaman, also celebrates his birthday today. He is an officer in the Indian Air Force, IAF, who became a national hero in 2019. And Vardhaman, during an aerial dogfight, he courageously shot down a Pakistani F-16 fighter jet before his own MiG-21 Bison was hit, forcing him to eject and land in Pakistan. His time in enemy captivity and his composed, resilient demeanor upon his release captivated the Indian public and highlighted military bravery. And also, Divakar Banerjee was born on this day in 1969. He is a highly acclaimed Indian film director, screenwriter, producer and advertisement filmmaker. He is widely recognized for redefining Indian independent cinema and bringing a sharp, realistic portrayal of the Indian middle class to Hindi films. Before joining the film industry, he was a successful ad filmmaker and copywriter. He eventually left advertising to co-found the production company Watermark, and he subsequently founded his own independent production house, Divakar Banerjee Productions.
0: इसके साथ ही श्रोताओं, आज हम जीत सिंह नेगी को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था। उन्हें उत्तराखंड का पहला लोकप्रिय लोक गायक माना जाता है। उन्होंने गढ़वाली लोक संगीत को नई पहचान दिलाने और उसे देश विदेश तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी मधुर आवाज और लोक जीवन से जुड़े गीतों ने उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया। जीत सिंह नेगी ने आकाशवाणी के माध्यम से अपने गीतों को व्यापक पहचान दिलाई। उनके प्रसिद्ध गीतों में तैके लानी रहना, बेडू पाको, तमाम ऐसे गाने शामिल हैं। वे केवल गायक ही नहीं बल्कि गीतकार और संगीतकार के रूप में सम्मानित भी थे। उनके योगदान के कारण गढ़वाली लोक संगीत को नई पीढ़ी में लोकप्रियता मिली और इसके चलते उन्हें कई सम्मान भी मिले, जिसमें उत्तराखंड गौरव सम्मान और गढ़वाली लोक संगीत के संरक्षण और संवर्धन के लिए विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया।
1: Yes, and Jean-Paul Sartre was born on this day in 1905. He was a towering 20th century French philosopher, playwright and novelist who serves as a central figure of existentialism, a philosophy emphasizing radical human freedom and responsibility. A dominant public intellectual in post-World War II Europe, he famously rejected the 1964 Nobel Prize in Literature. He argued that a writer should not allow themselves to be turned into an institution. And of course, Karishma, Rima Lagu also was born on this day. She was a celebrated Indian stage, film and television actress. She is best known for her endearing modern

0: screen mother, roles in blockbuster Bollywood movies like Maine Pyar Kiya, Hum Aapke Hai Kaun, and Kuch Kuch Hota Hai. So let's go ahead and listen to a dialogue from one of her movies.
1: Suman, zara chal to.
2: Kahan Aunty ji?
1: Chal zara Prem se uski shaadi ki baat karaye.
2: Ji, ji?
1: Haan, sochti hoon jitni jaldi ho sake is ghar mein bahu le aao. Chal aaja.
2: Ji.
1: Aaja.
3: Shit.
1: Prem?
3: Hi ma.
1: Daftar ja raha hai bete?
3: Haan, kyun?
1: Kuch nahi, naashta kar le. और थोड़ी देर बैठ हमारे साथ.
3: Sure, ma.
1: आओ. क्या हुआ?
3: ना, कुछ भी तो नहीं.
1: प्रेम, हम लोग तेरी शादी की बात करने आए हैं.
3: शादी?
1: हाँ, तेरे लिए लड़की ढूंढ ली है ना मैंने. क्या हुआ रे? जैसी तूने कहा था बिल्कुल वैसी है वो. वो लड़की सलवार कमीज चूड़ीदार वुड़ीदार कुछ नहीं पहनती. पहनती है तो बस जीन्स स्कर्ट मीडी मिनी बस.
3: लेकिन माँ, मेरी बात तो सुनना.
1: अरे घबरा मत, उसके बाल बिल्कुल बड़े नहीं है, छोटे छोटे हैं, पॉप कट. अरे वो ये है वो है खुश.
4: और श्रोता

मीडियम वेव 305.8 मीटर अर्थात 981 किलो हर्ट्स और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 26 है। ये नवाडीह, टुकुडाण, पेंडारी, बूढ़ा डांड, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफनगर में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये मिंढारी, फोकली महुआ, करमडीहा, कोटराही, भगवानपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 9 है। ये सकालो, किशुनपुर, घंघरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, खलीबा, पड़ौली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, लक्ष्मणगढ़, सुखरी भंडार, सायर, ससकालो, सत्तीमुड़ा, दांतीढाब, गढ़गांव, बैगहवा, चोरकी पानी, कंडराजा, घोड़ाघाट, नर्मदापुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, झिक्की, परसाडाण, पेटा, कुर्डेग, बिमड़ा, सामरबार, मैनी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 147 है। ये कूड़े केला, पुरुंगा, छाल, बोजिया, औरानारा, बेहरामार, लोटान, रुपुंगा, कोयलार, सागरपुर, ढोढ़ा गांव, केदा टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के कुदमुरा में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये चचिया

0: और गीत कुंवारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। गढ़घोरा वन मंडल के केंदई, जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर, कोयलारगढ़रा, परला, चोटिया, कापानवापारा, घुचापुर, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, आमाटिकरा, नवापारा, मड़ई, कोदवारी, कठमोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 26 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, कशडोल, राठरोड, झिंगोल, नागदरहा, पंडरी पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के बार नवापारा में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये पकरी, तेंदुचुआ, कोठारी, रामपुर, अचानकपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।

प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। पहले हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी आपको दे दें। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच ओल्ड ट्रेफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की ऑफ टू कमेंट्री सुनिएगा शाम 6:30 से 6:45 तक, शाम 7 बजे से रात 8:45 तक और रात 9:15 से खेल की समाप्ति तक। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 10:45 पर सुनिएगा शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में संपत लाल का तबले पर बजाया ताल तीन ताल। ये थी श्रोता हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब आपको कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें।

कल रात 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन, रात 9:30 पर आप सुनेंगी कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कल सुबह 7:05 पर सुनिएगा सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। इसमें आप सुनेंगे संगीत नाटक अकादमी द्वारा घोषित उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित छत्तीसगढ़ के घनश्याम साहू से दुर्गेश चक्रधारी की बातचीत। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम पल्लवी में वार्ता सुनिएगा जन कल्याण में नाटकों की भूमिका। वार्ताकार होंगे उमाकांत झा, सुशील यादव का काव्य पाठ। कहानी पाठ सुनिएगा, इसमें कहानी आप सुनेंगे वट वृक्ष। कहानीकार होंगी आशा झा, संपादक होंगे प्रकाश उदय। सुबह 9:00 विज्ञान लोक कार्यक्रम में सुनिएगा चिकित्सा क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का योगदान एवं नए आयाम, इस विषय पर वार्ता। वार्ताकार होंगे डॉक्टर केशवकांत साहू। सुबह 9:40 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम के कलाकार होंगे सलीम इकबाल। सुबह 10:00 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा सुनंदा पटनायक का गाया राग ललित में ख्याल।

11:05 पर आप सुनेंगे फोन करो छत्तीसगढ़ ही गीत सुनो। दिन में 12 बजे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT, शाम 5 बजे सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी सुनिएगा कल शाम 5:10 पर। इसमें आजकल में चर्चा का विषय होगा विश्व वर्षा वन दिवस, हेलो युवाणी और क्रम दृष्टिकोण। दिन में 12:30 पर लोकरंजनी कार्यक्रम के कलाकार होंगे मोतीलाल भीमटे और साथी। शहरी महिलाओं का कार्यक्रम बिंदिया कल दिन में 1:30 पर। इसमें आज की बात में चर्चा का विषय होगा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्त्रे तत्र देवता, जीवन में योग का महत्व। परिचर्चा सुनिएगा महिला सुरक्षा में परिवार और समाज की भूमिका। प्रतिभागी होंगे श्रीमती शताब्दी पांडे, रिचा साहू, संचालन करेंगी इंदु चटर्जी। इसके अलावा आप सुनेंगे गीत गजलों का कार्यक्रम तरन्नुम और कुछ टिप्स। शाम 6:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम के कलाकार होंगे चतुर सेन। किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल शाम 7:21 पर। इसमें आज की बात में चर्चा का विषय होगा फसल परिवर्तन का आधार श्री अन्न मिलेट। आज की सलाह में फल और सब्जी में पादप हार्मोन, इस विषय पर डॉक्टर गागेंद्र सिंह राजपूत, विषय वस्तु विशेषज्ञ पादप कार्यिकी उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय सांकरा की सलाह और आज का प्रश्न। ये थी श्रोताओं हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। युवा साथियों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
0: कहाँ?
4: एडमिशन कराने।
3: खाता हुआ एक्टिव।
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, कभी थोड़ा दाएं बाएं घूमो, कभी थोड़ा पेट सबसे पालो,
4: कभी सर नीचे कर, कभी पैर ऊपर उठा लो,
3: कभी शांत बैठ एकांत बना लो, योग करके जरा अपनी सेहत बना लो।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी, और मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त राजलक्ष्मी,
3: और मैं रोशनी पांडे। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की
4: बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, क्या आपने कभी ये नोट किया है कि आजकल इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में, जहाँ हम जल्दी करो में लगे रहते हैं, वहाँ खुद के लिए टाइम निकालना तो जैसे भूल ही गए हों। पेट दर्द, गर्दन में अकड़न, स्ट्रेस, ये सब मानो हमारी लाइफस्टाइल का ही हिस्सा है।
3: अरे भाई बिल्कुल, और इन सब का एक ही रामबाण इलाज है जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा से कहते आए हैं, वो है योग। लेकिन यार राजलक्ष्मी, हमेशा लोगों को लगता है कि योग बहुत मुश्किल चीज़ है, जैसे नाक पकड़कर बैठ जाना या पैर मोड़कर कोई भारी आसन करना।
4: अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं रोशनी, यही तो गलत फहमी है हम लोगों की। योग का मतलब कोई कठिन कसरत नहीं है, योग का सिंपल सा मतलब है जुड़ना, खुद से जुड़ना, अपनी सांसों से जुड़ना। अगर आप दिन में सिर्फ 10-15 मिनट भी अपनी सांसों पर ध्यान दें तो वो भी योग ही होगा दोस्तों।
3: अच्छा, मतलब अगर मैं ऑफिस में बैठे बैठे ही लंबी गहरी सांस लूं तो क्या वो भी योग है?
4: बिल्कुल,

0: इसे प्राणायाम कहते हैं। मान लो आप लैपटॉप पर लगातार काम कर रहे हैं और कंधे अकड़ गए, बस अपनी कुर्सी पर सीधे बैठे, गहरी सांस ले, कंधों को ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए उन्हें ढीला छोड़ दें। लो, हो गया योग। इससे ज्यादा भला आसान और क्या ही होगा रोशनी।
1: वाह, ये तो बहुत ही नॉर्मल और आसान है राजलक्ष्मी।
0: वही तो,
1: इसे तो कोई भी कभी भी कर सकता है। लेकिन एक बात बताओ, आजकल के यंगस्टर्स को कैसे समझाएं? उन्हें तो लगता है कि योग सिर्फ बुजुर्गों के लिए है।
0: अरे रोशनी, ये तो उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आज के जो कॉरपोरेट स्टार्स हैं, जो रात दिन कंप्यूटर पर काम करते हैं, उन्हें योग की सबसे ज्यादा जरूरत है।
1: बिल्कुल,
0: आप जिम जाए या ना जाए, लेकिन अगर आप फिट और शांत रहना चाहते हैं साथियों, तो योग आपकी मदद कर सकता है। ये आपको दिन भर ऊर्जावान बनाए रखता है।
1: इसलिए तो आज का दिन नई ऊर्जा, नई ताजगी लिए हुए है।
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, आज पूरी दुनिया एक साथ मिलकर योग कर रही है, क्योंकि शायद योग ही आज के समय की एक ऐसी क्रिया है जो हमारे मन को शांति दे सकती है। वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में इस साल की थीम है स्वस्थ बुढ़ापे और दीर्घायु के लिए योग। इसका मतलब है साथियों, योग हर उम्र के लोगों के लिए वरदान है, इस बात को समझना।
0: दोस्तों, ये हमारा फोन जिस पर हम दिन भर लगे रहते हैं, इस फोन को भी ठीक से चलाने के लिए बैटरी हमें चार्ज करनी पड़ती है।
1: बिल्कुल
0: ठीक वैसे ही हमारे शरीर और मन को तरोताजा रखने के लिए योग बहुत जरूरी है।
1: तो साथियों, आज से ही शुरुआत करते हैं
0: कि अपने 24 घंटे में से सिर्फ 10 मिनट योग के लिए निकालेंगे। शुरुआत सिर्फ एक लंबी गहरी सांस के साथ कीजिए। तो साथियों, आज का हमारा मैसेज ऑफ द डे ये है कि खुद से प्यार करो और थोड़ा समय अपने शरीर को दो, योग को दो।
1: इसी के साथ बस यही कहेंगे, हमेशा मस्त रहें,
0: स्वस्थ रहें
1: और मुस्कुराते रहें।

0: मार गोरी।
1: अरे हाँ चोरी चोरी,
0: मेरा दिल निशाना बना यारो।
2: दोस्तों अब वक्त हो चला है आज के हमारे अगले क्रम आज मेरी बारी है का, जिसमें आज बारी है रक्षा जायसवाल की।
3: नमस्कार दोस्तों, मैं आज मेरी बारी में आपके साथ हूँ रक्षा। हम सब ने कभी न कभी यह बात महसूस की है, वो गहरी सुरक्षित जगह जहाँ सब जाना पहचाना होता है, जहाँ कोई डर नहीं, कोई चैलेंज नहीं। हाँ मैं बात कर रही हूँ अपने कंफर्ट जोन की। ये जगह अच्छी लगती है, सेफ लगती है, पर क्या यही सब कुछ है? क्या जिंदगी सिर्फ सुरक्षा का नाम है? मुझे याद है जब मैंने पहली बार कुछ नया करने की कोशिश की, दिल में हजार सवाल थे, हाथ कांप रहे थे, क्या होगा अगर नहीं कर पाई, क्या लोग हंसेंगे? पर जब वो एक कदम उठाया तब पता चला कि डर सिर्फ दरवाजे तक होता है, अंदर जाओ तो रोशनी मिलती है। हर नया अनुभव, हर एक गिरना, हर एक संभलना, यही तो असली सीख है। जो सबक किताबों में नहीं मिलता, वो जिंदगी की ठोकरें चुपचाप सिखा जाती हैं। आज मैं अपनी जनरेशन से कहना चाहती हूँ, अपने आप को मौका दो, अपने ऊपर विश्वास रखो, वो करो जिसमें इंटरेस्ट है, वो इंसान से बात करो जिससे मिलना चाहते हो, वो स्टेज पे जाओ जहाँ जाने से डरते हो। कम्फर्ट जोन एक अच्छा घर है, पर अगर उसे जेल बना लो तो सपने उसी चार दीवारी में कैद हो जाते हैं। तो आज बस एक कदम बाहर निकलो, क्योंकि दुनिया बहुत खूबसूरत है।

आज मैं आप सभी दोस्तों से एक ऐसे विषय पर बात करने वाली हूँ जो हम सभी के जीवन से जुड़ा है। आज के इस बदलते युग में एक प्रश्न बार बार मन में उठता है, क्या सही राह पर चलना वाकई कठिन हो गया है? जब हम ईमानदारी से कोई कार्य करते हैं, सत्य बोलते हैं, नियमों का पालन करते हैं, तो कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि हम ही पीछे रह गए। यह अनुभव मन को विचलित करता है, पर यही प्रश्न पूछना हमारी सजगता की निशानी है। आज के समाज में लोकप्रियता को ही महत्व दिया जाता है और इसे ही सफलता का नाम दे दिया जाता है। जो व्यक्ति धैर्य के साथ सच्चाई की राह पर चलता है, वह कभी कभी अकेला अनुभव करता है, परंतु यह अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि उसकी दृढ़ता का प्रमाण है। इतिहास साक्षी है कि जिन्होंने सत्य और निष्ठा का दामन थामे रखा, समय ने उन्हें हमेशा ही सम्मान दिया। तो आज मैं आप सभी से, अपनी युवा पीढ़ी से यह निवेदन करना चाहती हूँ, परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने मूल्यों को ना छोड़ें। सही मार्ग लंबा अवश्य होता है, पर उस पर चलने का संतोष और आत्मसम्मान अतुलनीय होता है। याद रखिए, भीड़ की दिशा हमेशा सही नहीं होती, इसलिए हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए।

आज मैं आप सभी से उन पलों की बात करना चाहती हूँ जो बीत तो गए पर दिल से कभी नहीं गए। यादें, वो यादें जो हम चाह कर भी नहीं बुला पाते, फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी। कभी माँ के हाथ से खाना खाना, कभी नानी की लोरी, कभी बचपन के वो दोस्त जिनसे बिछड़े तो बिछड़े ही चले गए। यादें कोई बोझ नहीं होती, ये तो वो अनमोल खजाना है जो जिंदगी हमें चुपके से दे जाती है। समय के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, शहर बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, हम खुद भी बदल जाते हैं, पर कुछ पल ऐसे होते हैं जो मन के किसी कोने में हमेशा के लिए बस जाते हैं। स्कूल की वो आखिरी घंटी, किसी अपने की वो एक बात जो आज भी कानों में गूंजती है, बारिश में भीगना और घर वालों से डांट खाना, ये सब छोटी छोटी यादें ही तो हमारा असली धन है। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर आगे बढ़ते ही चाह में पीछे रह गए और उन पलों को भूल जाते हैं। कई बार तो ये भी सुना कि यादें हमें कमजोर बना देती है, पर यह हमें कमजोर नहीं बल्कि ये याद दिलाती है कि हम कहाँ से आए हैं, हमने कितना जिया और जिंदगी कितनी खूबसूरत रही। तो आज थोड़ा रुकिए, पुरानी यादों को मुस्कुरा कर याद कीजिए, क्योंकि यही यादें हैं जो हमें इंसान बनाती है।

0: इस गीत के साथ ही अब मुझे यानी रक्षा को दीजिए अनुमति। नमस्कार
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे क्रम आज मेरी बारी है में रक्षा जायसवाल के विचार और उनकी पसंद के गीत।
2: सुरमई शाम, कप में गर्मा गर्म चाय और रेडियो पर गूंजती नई धुने, इससे बेहतर भला और क्या ही हो सकता है रोशनी।
1: बिल्कुल श्रोताओं, आप सभी समझ ही गए होंगे आज है बेहद खास क्रम, क्रम नए तराने। तो चलिए शुरू करते हैं नए गानों की महफिल का ये सिलसिला और सुनते हैं इस क्रम का ये पहला गीत।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म लाल सिंह चड्ढा का ये खूबसूरत गीत, जिसे अपनी आवाज़ दी थी अरिजीत सिंह और शिल्पा राव ने। गीत के बोल लिखे थे अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत था प्रीतम का।
1: और फरमाइश थी हमारे इन श्रोता साथियों की, पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू, सुजाता शशांक सीमा साहू की, देवरी भाटापारा से मुकेश कुमार रजक, युवान हाविया तनु रजक, महादेव घाट अमलेश्वर से मिथिलेश ठाकुर, तारिणी सूरज ज्योति ठाकुर, बनियापारा धमतरी से रामचंद्र माखीजा, राहुल स्वाति सविता माखीजा, लोरमी ग्राम चचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला नेहा पुष्पराज ऋषभ मरावी की। राजलक्ष्मी, कहते हैं प्यार का पहला एहसास पहली नज़र की वो खामोशियाँ और दिल की धड़कने सब कुछ बदल देती हैं।
0: बिल्कुल, वो छोटी छोटी बातें, वो अनकही ख्वाहिशें और फिर दिल में उठने वाले वो लाखों सवाल।
1: कभी कभी हमें खुद ही समझ नहीं आता कि हम किसी के ख्यालों में इतना क्यों खोने लगते हैं। आज का ये गाना इसी खूबसूरत उलझन के नाम है। लीजिए सुनिए क्रम नए तराने की ये अगली प्रस्तुति।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और पलक मुच्छल की आवाज़ में फिल्म आशिकी 2 का गीत। गीतकार थे इरशाद कामिल और संगीत था जीत गांगुली का।
1: और पसंद करने वाले हमारे श्रोता साथी हैं कुल्हारी कोट पांडुका से नरोत्तम कश्यप, नीतू मोहनीश और अनुराग कश्यप, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह।

अध्यक्ष संजय अग्रवाल भी अति विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव दुर्ग जिले के खालसा पब्लिक स्कूल प्रांगण में आयोजित योगाभ्यास कार्यक्रम में शामिल हुए और योगाभ्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। इसी तरह उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कबीरधाम जिले के पीजी कॉलेज में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने नियमित रूप से योगाभ्यास पर जोर दिया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी जांजगीर चांपा जिले के भीमा तालाब के जाज्वल्य देव द्वार परिसर में सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान श्री चौधरी ने ग्राम कुटरा बोर्ड के युवा मलखम खिलाड़ी डिम्पी सिंह को स्वेच्छा अनुदान मद से 25,000 रूपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने नवागढ़, पामगढ़ और अकलतरा विकासखंड के लिए 3 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज छत्तीसगढ़ की सभी 33 जेलों में योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान हजारों बंदियों ने योगाभ्यास किया। केंद्रीय जेल रायपुर में आयोजित योग शिविर में 500 पुरुष और 150 महिला बंदियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में जेल महानिदेशक हिमांशु गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा जगदलपुर के शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रांगण में योग शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में एनसीसी, एनएसएस, पतंजलि योग समिति और युवाओं सहित लगभग 150 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसी तरह केंद्रीय संचार ब्यूरो अंबिकापुर द्वारा सरगुजा जिले के ग्राम सखौली स्थित उच्चतर माध्यमिक शाला में विशेष जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें छात्र छात्राओं, शिक्षकों और ग्रामीणों ने भाग लिया। इस दौरान रंगोली और प्रश्न मंच प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रदेश के अन्य जिलों में भी आज योग कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें मंत्री, सांसद और विधायक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा आज छत्तीसगढ़ सहित देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनः परीक्षा आयोजित की गई। यह परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू हुई, जो शाम 5:15 तक चली। परीक्षार्थियों को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश की अनुमति दी गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज एक दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। राहुल गांधी इस समय रायपुर जिले के अभनपुर में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में कांग्रेस के नवनियुक्त 41 जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। इस अवसर पर कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट सहित अनेक वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस का यह प्रशिक्षण शिविर आज से शुरू हुआ है, जो आगामी 10 दिनों तक चलेगा। शिविर में प्रदेश भर के पार्टी के जिला अध्यक्षों और संगठन पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बिलासपुर जिले के कोटा नगर पंचायत को अब नगर पालिका का दर्जा मिल गया है। इस संबंध में नगरीय प्रशासन विभाग ने राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दी है, जिसके अनुसार नगर पंचायत कोटा की सीमाएं ही नगर पालिका कोटा की सीमाएं होंगी। गौरतलब है कि उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने बिलासपुर जिले के कोटा नगर पंचायत को नगर पालिका बनाने की घोषणा की थी। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 युवकों की मौत हो गई। पहली घटना अंधियार खोर क्षेत्र में हुई, जहां एक अनियंत्रित ट्रैक्टर के पलट जाने से उसमें सवार एक युवक की दबकर मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कारियाम घाट के पास हुई दूसरी घटना में एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने सड़क किनारे खड़े एक युवक को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल इस युवक को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। नारायणपुर जिले में पुलिस ने एक अभिनव पहल करते हुए डीआरजी परिसर में मैत्री कैफे का शुभारंभ किया है। यह कैफे स्थानीय जनजातीय कला, बस्तर सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक स्थापत्य शैली पर आधारित है। इस कैफे का शुभारंभ करते हुए वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि विकास, रोजगार और विश्वास ही स्थायी शांति का आधार है तथा मुख्यधारा में लौटे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे प्रयास जरूरी हैं। गौरतलब है कि इस मैत्री कैफे का निर्माण नारायणपुर पुलिस के कर्मचारियों ने स्वयं किया है। इस कैफे के माध्यम से आत्मसमर्पित नक्सलियों को रोजगार देने की योजना है। और अब पेश है मौसम का हाल।
छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक मौसम

0: मिजाज बदला रह सकता है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि एक द्रोणिका के असर से उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं मध्य छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी के कारण आने वाले 2-3 दिन तक रायपुर और दुर्ग संभाग में लू चलने के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।
1: आज की स्थिति में एक द्रोणिका उत्तर छत्तीसगढ़ से तेलंगाना तक विस्तारित है और सीजनल ट्रफ जो है पंजाब से लेके बिहार तक विस्तारित है। इस प्रभाव से प्रदेश में आज मुख्य रूप से उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात, तेज हवा और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मध्य छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग 4 डिग्री से लेके 6 डिग्री अधिक है। इस प्रभाव से आज से लेके आगामी 3 दिन तक रायपुर और दुर्ग संभाग के जिलों के लिए ग्रीष्म लहर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
0: मौसम विभाग के अनुसार 23 जून के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ सकता है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य सरकार कल 22 से 26 जून तक सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा का आयोजन करेगी। इसके तहत 1,000 श्रद्धालुओं को गुजरात स्थित सोमनाथ धाम की यात्रा कराई जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल रायपुर रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कोरिया जिले के ग्राम नौगई में हुए तिहरे हत्याकांड के मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बीते 16 जून की रात आपसी रंजिश के चलते चारपहिया वाहन में आग लगाने की घटना में 3 लोगों की मौत हो गई थी। मामले में 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। और दुर्ग पुलिस ने साइबर ठगी से प्राप्त रकम के लेन देन में उपयोग किए गए म्यूल अकाउंट मामले में एक आरोपी को भिलाई से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खाते से 14 लाख रुपए से अधिक का संदिग्ध लेन देन पाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आज छत्तीसगढ़ सहित देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनः परीक्षा आयोजित की गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज रायपुर जिले के अभनपुर में आयोजित कांग्रेस के प्रशिक्षण कार्यक्रम में नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को दिया प्रशिक्षण। और मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक मध्य छत्तीसगढ़ के रायपुर और दुर्ग संभाग में लू के लिए जारी किया येलो अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
3: TLI है ना?
4: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
5: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में खेले जा रहे क्रिकेट मैच की आप जो कमेंट्री आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
6: कदेलों में सुलाऊंगा तुम
7: बन रहा है। ओवर टू यू कृष्ण कुमार जी।
8: या थैंक यू एंड गुड इवनिंग ऑल listeners across the country. A very, very, very important game this in the ICC T20 Women's World Cup. As important as you may probably want it to be, because remember that India and South Africa also played a bilateral recently, and also the ODI.
9: सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।
10: जय माला।

0: आजादी जरा याद करो कुर्बानी।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा। फौजी साथियों और श्रोताओं को नेहा शर्मा का नमस्कार।
2: आओ ननको भैया, कैसे हैं? होटल बढ़िया चलत है ना? ग्राहकी वगैरह ठीक है कि नहीं? रोको। अरे भैया, पहली जुन्ना तेल निकाल ले, तेकर बाद नवा तेल डालबे।
3: का है शिव भैया, तेल में तेल नहीं डालू तो जुन्ना तेल ला काय करू?
2: तहू यार,
4: रियूट कुकिंग ऑयल योजना ले बायो डीजल बनाए जाते, जेकर ले आप और आपके वातावरण सुरक्षित रहे।
5: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
1: जोश और कृतज्ञता से भर जाते हैं, ऐसी ही अदम्य साहस, जांबाजी और निडरता की कहानी रचने वाले एक वीर सैनिक की शौर्य गाथा आज हम लिए आए हैं। आप हैं देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित सिपाही पांडुरंग सालुंखे।

बचपन के बाद जीवन के खूबसूरत दिनों में किशोरावस्था को शामिल किया जाता है। ये एक ऐसा समय होता है जब व्यक्ति जितना साहसी होता है उतना ही भ्रमित भी। उसे अपने जीवन के प्रति एक अलग उत्साह होता है, साथ ही भविष्य की अनिश्चितताएं भी सामने होती हैं। शायद इसीलिए किशोरावस्था को अल्हड़ता का दूसरा नाम भी कहा जाता है। लेकिन ये स्थिति सभी के साथ नहीं होती। कुछ ऐसे युवा भी होते हैं जो कम उम्र में ही अपना भविष्य तय कर लेते हैं, बना लेते हैं एक ऐसा नाम जो साल दर साल लोगों की जुबान को पवित्र करता है। ऐसा ही व्यक्तित्व रहा सिपाही पांडुरंग सालुंखे का। महाराष्ट्र के सांगली जिले के एक गांव में 1 मई 1950 को बालकृष्ण सालुंखे के घर जन्मे सुपुत्र पांडुरंग सालुंखे। आप मात्र 19 वर्ष की आयु में ही देश प्रेम की राह पर चल निकले और बन गए मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की 15वीं बटालियन का हिस्सा और कहलाने लगे सिपाही पांडुरंग सालुंखे। मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट भारतीय सेना की एक ऐसी पैदल सेना रेजिमेंट है जो हल्के हथियारों के साथ युद्ध के मैदान में उतरती है। इस सेना के पास भले ही हथियारों के रूप में भार कम हो, लेकिन वो शत्रुओं पर हमेशा भारी पड़ती है, क्योंकि हल्के हथियारों के साथ भारी जोखिम उठाते हुए तीव्र गति से युद्ध मैदान में घुसकर शत्रुओं को परास्त करना इनका गुण है। 1768 में बनी ये रेजिमेंट सबसे पुरानी लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट ने स्वतंत्रता के पहले और बाद में कई युद्धों में अपना योगदान दिया है और तकरीबन 56 से भी अधिक युद्ध सम्मान इस रेजिमेंट के नाम हैं। अप्रैल 1952 में इसे सेकंड पैरा ट्रूप्स में बदला गया है। पैरा ट्रूप्स ऐसी सेना होती है जिन्हें पैराशूट्स की मदद से युद्ध क्षेत्र में उतारा जाता है, जो सीधे शत्रु सेना से भिड़ने को तैयार रहती है। आपको ये भी बता दें कि मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का युद्ध घोष है, बोला छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। यही युद्ध घोष करते हुए सिपाही पांडुरंग सालुंखे ने साहस की परिभाषा बदल दी।

1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध 3 से 16 दिसंबर तक लड़ा गया था। इस दौरान हमारे तीनों सेना के सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। तकरीबन 4090 भारतीय सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। 600 सैनिकों को विभिन्न सैन्य सम्मानों से नवाजा गया, जिनमें 4 परमवीर चक्र, 76 महावीर चक्र और 513 वीर चक्र शामिल हैं। इन महावीर चक्र विजेताओं में से ही एक हैं हमारी आज की शौर्य गाथा के नायक सिपाही पांडुरंग सालुंखे, जो शामिल थे उस 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री में, जिसे इस युद्ध में बैटल ऑनर बुर्ज और द थिएटर ऑनर पंजाब का सम्मान भी मिला।

0: विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा में समय है एक अंतराल का।
1: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला में एक ठन फॉर्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मनला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़किन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
2: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मां सुपर हिट।
3: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
0: होते ही संभावित हमलों को रोकने के लिए रक्षात्मक कार्यवाही शुरू कर दी गयी। इसके तहत 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री को मध्य के पास साकी नाले पर फतेहपुर लोपोक का भार सौंपा गया। इस इन्फेंट्री में ही शामिल थे सिपाही पांडुरंग सालुंखे। इस इन्फेंट्री ने छनकला, तुर और भिंडी औलख गांवों में निगरानी रखने के साथ ही वेरा में भी लड़ाकू दस्ता स्थापित कर दिया। मराठा लाइट इन्फेंट्री के इस कदम से फतेहपुर बुर्ज और घोगा इलाके की सीमा सुरक्षा बल पोस्ट को भी मजबूती मिली। यूं भी मराठा लाइट इन्फेंट्री अकेली नहीं थी, उनके साथ एक फील्ड रेजिमेंट और 66वीं आर्मर्ड रेजिमेंट की विजयंत टैंक स्क्वाड्रन भी थी। वहीं अमृतसर के दिशा में शत्रुओं को रोकने के लिए दूसरी बटालियन तैनात थी और तीसरी बटालियन को गुरदासपुर सेक्टर में मोर्चा दिया गया। इस तरह हम शत्रुओं के लिए पूरी तरह से तैयार थे।
4: बढ़े चलो।

0: सिंह से दहाड़ के जुल्म के पहाड़ पे चढ़े चलो, बढ़े चलो बहादुरो बढ़े चलो,
1: बढ़े चलो, बढ़े चलो।
0: पत्थर जो आए

0: तालिबान के अनुसार पाकिस्तान ने 3 और 4 दिसंबर की रात अपनी 2 बटालियन के साथ हमला बोला। 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री का मुकाबला 43वीं बलूच के साथ हुआ। देर रात शुरू हुए इस हमले में पाकिस्तान को बढ़त मिली और उसने घोगा, बहलोल, गुलगढ़ के साथ पूरे धुस्सी बंद पर कब्जा कर लिया, जिसमें दक्षिण छनकला से लेकर दक्षिण भिंडी औलख भी शामिल थे। सुरक्षा सीमा बल की फतेहपुर पोस्ट पर भी दुश्मनों का कब्जा था। भारतीय सेना के हाथ में गांव बने रहे, लेकिन एक बड़ा क्षेत्र दुश्मनों के कब्जे में था। युद्ध के मैदान में हार जीत बनी रहती है, लेकिन सबसे जरूरी होता है अपने हौसले और धैर्य को बनाए रखना। यहाँ हम ये नहीं देखते कि दुश्मन के हाथों में क्या है, बल्कि इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि हमारे पास मौजूद संसाधनों का उपयोग किस तरह किया जाए। यही वो गुण है जो हमारी भारतीय सेना के जवानों के अंदर मौजूद है।
1: आरंभ है प्रचंड बोल, मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। प्रचंड बोल, मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। आन आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल।

सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही

0: शक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।
1: आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड।

0: दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो ताल तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो।
1: आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड।

0: जयमाला, सैनिकों की शौर्य गाथा में समय है एक अंतराल का।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला, सैनिकों की शौर्य गाथा। इस श्रृंखला में आज देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित सिपाही पांडुरंग सालुंखे की शौर्य गाथा। पाकिस्तान की ओर से युद्ध आरंभ हो चुका था और एक बड़ा क्षेत्र भी उनके कब्जे में था। हमारे आज की शौर्य गाथा के नायक सिपाही पांडुरंग सालुंखे अपनी रेजिमेंट के साथ युद्ध मैदान में डटे हुए थे। आगे की रणनीति पर विचार हो रहा था तो 5 दिसंबर को 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री ने अपना प्रयास जारी रखा और एक छोटी ही सही लेकिन महत्वपूर्ण घटना हुई। दुग और औलख में ईस्ट बंगाल राइफल्स के करीब 150 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। वो अपने साथ पाकिस्तानी सेना से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी भी ले आए थे। सेना ने यह तय किया कि पाकिस्तान के कब्जे से धुस्सी बंद को वापस लेना है, किसी भी हार

15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट युद्ध के मैदान में डटी थी। इसका नेतृत्व कर रहे थे मेजर रणबीर सिंह, जो सेकंड इन कमांडर थे और कंपनी कमांडर का दायित्व भी निभा रहे थे। वो अपनी सेना के साथ बुर्ज की ओर आगे बढ़ने लगे। शत्रुओं को इसकी भनक लगते ही 6 दिसंबर को बुर्ज पोस्ट पर पाकिस्तानी सेना की ओर से दिन के उजाले में ही हमला होने लगा। ऐसे में मराठा लाइट इन्फेंट्री ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। इसकी उम्मीद शत्रु सेना को नहीं थी, वो इस हमले से सकते में आ गए। पीछे हटने के सिवा उनके पास कोई चारा ही नहीं था। मेजर रणबीर सिंह ने निर्णय लिया कि अब बुर्ज पर अधिकार करने में ज्यादा समय लगाना उचित नहीं होगा। अगर जरा सी भी देर की गई तो शत्रु एक बार फिर तैयार हो सकते हैं। एक ओर जहां शत्रु सेना एक छोटी सी जीत के जश्न में ही डूब गई थी, वहीं हमारी सेना के निर्णय से आप समझ सकते हैं कि अगर शत्रुओं को खदेड़ना हो तो एक छोटी जीत को अपने दूसरे प्रयास से बड़ी जीत में बदलने के बाद ही जश्न मनाया जा सकता है। पाकिस्तानी सेना को बुर्ज में मुंह तोड़ जवाब देने के बाद सिपाही पांडुरंग सालुंखे अपनी मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के साथियों के साथ अगले आदेश का इंतजार कर रहे थे। उनकी रेजिमेंट का नेतृत्व मेजर रणबीर सिंह के हाथ में था। मेजर रणबीर सिंह ने ये तय किया कि अब दुश्मन सेना को ज्यादा समय देना उचित नहीं है। अपनी अन्य साथी सेनाओं के साथ उन्होंने एक ऐसी रणनीति अपनाने का फैसला किया जो दुश्मन के लिए भ्रम की स्थिति पैदा करे। बिना देर करते हुए एक योजनाबद्ध हमला करने का फैसला किया गया, जहां दुश्मन को दोनों ओर से घेरने की योजना बनाते हुए टैंक टुकड़ी को पीछे से और बाकी आगे से हमला करने निकल चले। इससे शत्रु के आगे बढ़ने का रास्ता तो बंद होता ही था, साथ ही वो पीछे हटने लायक भी नहीं रह पाता।

शत्रु की कल्पना से परे एक ऐसा रास्ता निकालना जो उसके होश उड़ा दे, एक बेहतरीन नेतृत्व का उदाहरण है। ऐसे कई उदाहरणों की भरमार है हमारे सैनिकों की शौर्य गाथा।

बेहतरीन नेतृत्व तभी सफल हो पाता है जब उसके पास एक साहसी और निडर सेना मौजूद हो। मेजर रणबीर सिंह 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट और अन्य रेजिमेंट्स के साथ बुर्ज पर दुश्मनों को दोनों ओर से घेरने की योजना बना चुके थे। ऐसे में उन्हें अपने साथ मौजूद सभी सैनिकों पर पूरा भरोसा था। रेजिमेंट्स भी अपने साहस, पराक्रम और जज्बे का एक एक कतरा न्यौछावर करने को तैयार थे। मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट जिनकी रग रग में दौड़ता है कर्तव्य, सम्मान और साहस, जो हर बार शत्रुओं को ये याद दिलाते हैं कि वो भारत की सबसे पुरानी लाइट इन्फेंट्री हैं, जिनके युद्ध घोष से ही शत्रु के हृदय में भय की झंकार होती है। उसी 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में शामिल थे हमारी आज की शौर्य गाथा के नायक सिपाही पांडुरंग सालुंखे, जो अपने साथियों के साथ मेजर रणबीर सिंह के नेतृत्व में पूरी तरह तैयार थे शत्रुओं पर हमला बोलने के लिए। 6 दिसंबर को बुर्ज पर हमला शुरू हुआ। बंकरों में छुपी शत्रु सेना के साथ मराठा पैदल सेना ने आमने सामने की लड़ाई की। यहाँ तक कि हमारी सेना ने कुछ स्थितियों में शत्रुओं से सीधे हथियार छीन लिए और उन्हें हराया। ये एक बेहद क्रूर और मुश्किलों से भरी लड़ाई थी, क्योंकि हमारे सैनिक शत्रुओं के मोर्चे पर जाकर उनसे सीधे लड़ रहे थे। इस बीच पीछे से टैंक और पैदल सैनिक भी उनकी मदद के लिए आ रहे थे। शत्रु बुरी तरह से बौखलाया हुआ था। एक ओर उस पर सीधा हमला जारी था और दूसरी ओर उसे अपनी हार नजर आने लगी थी। ऐसी बौखलाहट में अक्सर आक्रामकता बढ़ती जाती है। सिपाही पांडुरंग सालुंखे भी यहाँ शत्रुओं से दो दो हाथ कर रहे थे। तभी उनकी नजर शत्रुओं के एक ऐसी चाल पर पड़ी जिससे हमारी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। शत्रु ने एक रॉकेट लॉन्चर पैदल सेना के साथ आ रहे भारतीय टैंकों की ओर मोड़ दिया था। अनहोनी किसी भी वक्त हो सकती थी। सिपाही पांडुरंग सालुंखे शत्रु सेना से बुर्ज पर अपने साथियों के साथ भिड़ रहे थे। इसी बीच दुश्मनों ने रॉकेट लॉन्चर पीछे से आती पैदल सेना और भारतीय टैंक की ओर मोड़ दिया। एक पल में ही बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। जैसे ही सिपाही पांडुरंग ने रॉकेट लॉन्चर को देखा, बिना वक्त गवाए वो उस ओर दौड़ पड़े। सिपाही पांडुरंग सालुंखे ने शत्रु सैनिक के हाथ से रॉकेट लॉन्चर छीन लिया और उस शत्रु सैनिक को मार गिराया। लेकिन शत्रु उनके इस कारनामे से बौखला गया और सिपाही पांडुरंग सालुंखे पर स्टेन गन से धुआंधार वार किया। गोलियों की इस बौछार से सिपाही पांडुरंग सालुंखे वहीं शहीद हो गए। लेकिन उन्होंने अपने इस बलिदान से अपने कई साथियों की जान बचा ली। यही नहीं, उनके इस बलिदान के कारण ही बुर्ज पर भारतीय सेना का कब्जा हो सका।

0: सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से, हाथ जिनमें हो जुनून कटते नहीं तलवार से।
1: सिपाही पांडुरंग सालुंखे ने जब बलिदान दिया तब वो मात्र 22 वर्ष के थे। इस छोटी सी उम्र में ही उन्होंने वो बड़ा काम किया जिनसे उनका नाम अमर हो गया। सिपाही पांडुरंग सालुंखे को उनकी इस असाधारण बहादुरी, अदम्य साहस और कर्तव्य निभाते हुए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए मरणोपरांत देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।

हम इस जांबाज सिपाही को नमन करते हैं। विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित सिपाही पांडुरंग सालुंखे की शौर्य गाथा। शोध आलेख और स्वर निहाल शर्मा का, प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम इंद्रधनुष साज और आवाज। बांसुरी पर हैं पारसनाथ। सबसे पहले सुनते हैं इस गीत की धुन।

आइए सुनते हैं अब इस गीत को फिल्म सनम तेरी कसम से, आवाज़ किशोर कुमार की, गीत के बोल गुलशन बावरा के और संगीत आर डी बर्मन का।

0: 101.6 MHz पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। रात के 8 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम सब रंग।
1: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला में एक ठन फॉर्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो, आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मनला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़कीन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
2: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मा सुपर हिट।
3: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
4: मम्मी मम्मी पापा आगे।
5: दक्ष, विराट, कन्हैया, तुहर मन भर मैं गरम गरम समोसा भजिया जलेबी लेके आया हूँ।
4: मम्मी प्लेट लाना।
6: प्लेट के का जरूरत है? तुहर ड्राइंग के कागज में खाओ। कतेक प्लेट ला, मैं मांजा धोत रहा हूँ।
7: ये मस्याही लगे है, समोसा खराब हो जाही, ये मैं नहीं खाना चाहिए।
6: ऐसने में खात खात उम्र बीत गए, कैसे जी?
5: हाँ जी,
4: कागज न्यूज पेपर माँ तेल्हा फुल्हा खाए पिए के गरम जिनिस ला नहीं रखना चाहिए।
7: एमा केमिकल वाला स्याही लगे रही थे, जिन हा गरम जिनिस संग रासायनिक क्रिया करके ओला जहरीला बना देते।
4: ये कर अलावा प्लास्टिक थर्माकोल या डिस्पोजल कप गिलास माँ चाय कॉफी पीना सेहत खराब करते।
3: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
1: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला में एक ठन फॉर्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो, आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मनला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़कीन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
2: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मा सुपर हिट।
3: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
8: आओ ननकू भैया, कैसे हैं? होटल बढ़िया चलत है ना? ग्राहकी वगैरह ठीक है कि नहीं? रोको। अरे भैया, पहली जुन्ना तेल लत निकाल ले, तेकर बाद नवा तेल डालबे।
9: का है शिव भैया, तेल में तेल नहीं डालूं तो जुन्ना तेल ला काय करूं?
8: तहूं यार,
10: रियूट कुकिंग ऑयल योजना ले बायो डीजल बनाए जाते, जेकर ले आप और आपके वातावरण सुरक्षित रहे।
3: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
0: कार्यक्रम सबरंग में आज स्वीकारिये जया का नमस्कार। दोस्तों, महज 3 अक्षरों का साधारण सा शब्द कोई इंसानी जज्बातों की पूरी कायनात को खुद में समेटे हुए एक गहरा एहसास है। जब मन में किसी का इंतजार होता है तो कोई एक अनकही उम्मीद बन जाता है। कभी ये शब्द किसी अजनबी के लिए मन में कौंधती एक अनजान अपरिचित सी हलचल है, तो कभी बेहद अपनों के बीच छिपा वो खास, जिसे कभी कहीं यूं ही कोई है का नाम दिया करते हैं हम। इसमें जहां असीमित संभावनाओं का आसमान है, कोई भी मंजिल दूर नहीं। दोस्तों, ढेरों आशाएं और अनगिनत उम्मीदों से भरा शब्द है कोई।

0: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फार्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़कीन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
1: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती सुपर हिट।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
3: मम्मी मम्मी पापा आगे।
4: दक्ष, विराट, कन्हैया, तुहर मन भर मैं गरम गरम समोसा भजिया जलेबी लेके आया हूँ।
3: मम्मी प्लेट लाना।
5: प्लेट के का जरूरत है? तुहर ड्राइंग के कागज में खाओ। कतेक प्लेट ला, मैं मांजा धोत रहा हूँ।
6: ये मस्याही लगे है, समोसा खराब हो जाए, ये मन नहीं खाना चाहिए।
5: ऐसने में खात खात उम्र बीत गए, कैसे जी?
4: हाँ जी,
3: कागज न्यूज पेपर माँ तेल्हा फुल्हा खाए पिए के गरम जिनिस ला नहीं रखना चाहिए।
6: एमा केमिकल वाला स्याही लगे रही थे, जिन हा गरम जिनिस संग रासायनिक क्रिया करके ओला जहरीला बना देते।
3: ये कर अलावा प्लास्टिक थर्माकोल या डिस्पोजल कप गिलास माँ चाय कॉफी पीना सेहत खराब करते।
2: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
0: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फार्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़कीन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
1: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती सुपर हिट।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
7: आओ ननकू भैया, कैसे हैं?

0: होटल बढ़िया चला थे ना, ग्राहकी वगैरह ठीक है कि नहीं? रोको। अरे भैया पहली जुन्ना तेल निकाल ले, देकर बाद नवा तेल डालबे।
1: काहे शिव भैया, तेल में तेल नहीं डालू तो जुन्ना तेल का करूँ?
0: तहू यार।
2: रियूट कुकिंग ऑयल योजना ले बायोडीजल बनाए जाते, जेकर ले आप और आपके वातावरण सुरक्षित रहे।
3: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
4: कोई खामोशी में भी बात कह जाता है, कोई हंसी में छुपा दर्द दिखा जाता है, कोई यूं ही दिल के करीब हो जाता है, कोई दूर रहकर भी यादों में बस जाता है। दोस्तों इस दुनिया में हर इंसान कोई बनना चाहता है, कोई बड़ा, कोई खास, कोई ऐसा जिसे लोग याद रखें। लेकिन आपने कभी गौर किया, जब हम जन्म लेते हैं तो हम बस कोई नहीं होते, हम किसी के लिए सब कुछ होते हैं। दोस्तों एक माँ के लिए हम कोई नहीं बल्कि पूरी दुनिया होते हैं। दोस्तों के लिए हम कोई नहीं, उनकी हंसी की वजह होते हैं। फिर धीरे धीरे हम खुद को साबित करने की दौड़ में, कोई बनने के चक्कर में अपनों के लिए कोई ही रह जाते हैं। सच है तो दोस्तों, कोई बनना इतना ज़रूरी नहीं जितना ज़रूरी है किसी के लिए कुछ बनना।

0: सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फॉर्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़किन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
1: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मा सुपर हिट।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
3: मम्मी मम्मी पापा आगे।
4: दक्ष, विराट, कन्हैया, तुहर मन भर मैं गरम गरम समोसा भजिया जलेबी लेके आया हूँ।
3: मम्मी प्लेट लाना।
5: प्लेट के का जरूरत है? तुहर ड्राइंग के कागज में खाओ। कतेक प्लेट ला, मैं मांजा धोत रहा हूँ।
6: ये मस्याही लगे है, समोसा खराब हो जाए, ये मैं नहीं खाना चाहिए।
5: ऐसने में खात खात उम्र बीत गए, कैसे जी?
4: हाँ जी,
3: कागज न्यूज पेपर मा तेल्हा फुल्हा खाए पिए के गरम जिनिस ला नहीं रखना चाहिए।
6: एमा केमिकल वाला स्याही लगे रही थे, जिन हा गरम जिनिस संग रासायनिक क्रिया करके ओला जहरीला बना देते।
3: ये कर अलावा प्लास्टिक थर्माकोल या डिस्पोजल कप गिलास मा चाय कॉफी पीना सेहत खराब करते।
2: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
0: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फॉर्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़किन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
1: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मा सुपर हिट।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
7: आओ ननकू भैया, कैसे हैं? होटल बढ़िया चलत है ना? ग्राहकी वगैरह ठीक है कि नहीं? रोको। अरे भैया, पहली जुन्ना तेल निकाल ले, तेकर बाद नवा तेल डालबे।
8: का है शिव भैया, तेल में तेल नहीं डालू तो जुन्ना तेल का करूँ?
7: तहू यार,
9: रियूट कुकिंग ऑयल योजना ले बायो डीजल बनाए जाते, जेकर ले आप और आपके वातावरण सुरक्षित रहे।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
10: दोस्तों, इंतजार की उम्र लंबी होती है। हम उम्र भर किसी न किसी कोई की राह तकते हैं। यह कोई जो हमारे वाक्यों को पूरा करेगा, जो हमारे आंसुओं का हिसाब नहीं बस उन्हें पोछने का जिम्मा लेगा। यह कोई एक मीठा दर्द है जो हमें जीवित रखता है। चौखट पर ठहरी हुई निगाहों में कोई है, बुझती हुई इन पनाहों में कोई है। कोई आए ना आए ये मुकद्दर की बात है, पर इंतज़ार की जुस्तजू में कोई है। दोस्तों, कोई साथ खड़ा हो, कोई पास हो, कोई मुश्किल में जरा कंधे पर हाथ रख दे, बस सारी उलझनें वहीं ख़त्म हो जाती हैं।

0: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फार्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़किन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
1: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मां सुपर हिट।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
3: मम्मी मम्मी पापा आगे।
4: दक्ष, विराट, कन्हैया, तुहर मन भर मैं गरम गरम समोसा भजिया जलेबी लेके आया हूँ।
3: मम्मी प्लेट लाना।
5: प्लेट के का जरूरत है? तुहर ड्राइंग के कागज में खाओ। कतेक प्लेट ला, मैं मांजा धोत रहा हूँ।
6: ये मुसिया ही लगे है, समोसा खराब हो जाही, ये मन नहीं खाना चाहिए।
5: ऐसने में खात खात उम्र बीत गए, कैसे जी?
4: हाँ जी,
3: कागज न्यूज पेपर माँ तेल्हा फुल्हा खाए पिए के गरम जिनिस ला नहीं रखना चाहिए।
6: एमा केमिकल वाला स्याही लगे रही थे जिन गरम जिनिस संग रासायनिक क्रिया करके ओला जहरीला बना देते।
3: ये कर अलावा प्लास्टिक थर्माकोल या डिस्पोजल कप गिलास माँ चाय कॉफी पीना सेहत खराब करते।
2: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
0: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फार्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़किन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
1: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मां सुपर हिट।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
7: आओ ननको भैया, कैसे हैं? होटल बढ़िया चलत है ना? ग्राहकी वगैरह ठीक है कि नहीं? रोको। अरे भैया, पहली जुन्ना तेल लत निकाल ले, तेकर बाद नवा तेल लत डारबे।
8: का है शिव भैया, तेल में तेल नहीं डालू तो जुन्ना तेल ला काय करू?
7: तहू यार,
9: रियूट कुकिंग ऑयल योजना ले बायो डीजल बनाए जाते जेकर ले आप और आपके वातावरण सुरक्षित रहे।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़।

0: व राज्य जनहित में जारी।
1: दोस्तों, कुछ रिश्ते नाम से नहीं, एहसास से पहचाने जाते हैं। कोई है जो स्वयं धूप में चलकर हमारे लिए छांव जुटाता है, जो अपनी इच्छाओं को चुपचाप किनारे रखकर हमारे सपनों को पंख देता है, जो हर छोटी बड़ी हमारी चिंताओं को अपने भीतर समेट लेता है, वही जो जीवन का सबसे मजबूत सहारा होता है। माना उसके प्रेम में शब्द कम होते हैं, लेकिन समर्पण असीम होता है। हमें गिरने पर वो संभालता है, असफलता में हौसला बढ़ाता है और हर सफलता में पीछे खड़ा मुस्कुराता है। उसकी आंखें अक्सर अपनी थकान छिपाती हैं, लेकिन हमारे चेहरे की उदासी कभी उससे छिप नहीं पाती। जीवन की कठिन राहों पर एक वृक्ष की तरह वो खड़ा रहता है, जिसकी जड़ें त्याग और शाखाएं स्नेह में डूबी होती हैं। हम बड़े होते जाते हैं, पर उनके मन में हमारे लिए चिंता और दुआएं कभी छोटी नहीं होती। उनके मौन में पूरा संसार बसता है, सुरक्षा का, विश्वास का और निस्वार्थ प्रेम का। ऐसे अनमोल व्यक्तित्व को संसार केवल एक ही नाम से जानता है, वो है पिता।

दोस्तों, ये था आज का सबरंग। इसे आपके लिए पेश किया जया ने। तो दीजिए अब कार्यक्रम से अनुमति। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरंग। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है।

FM बैंड 101.6 MHz पर। 8:30 हुए हैं। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से रिले करते हैं।

श्रोता, ये गीत आपने सुना फिल्म धड़क 2 से, आवाज़ अरिजीत सिंह की थी। गीत के बोल सिद्धार्थ गरिमा के और संगीत श्रेयस पुराणिक का।

श्रोता ने गीत आपने सुना फिल्म बागी 4 से, आवाज़ जोश ब्रार की थी। गीत के बोल परंपरा टंडन के, संगीत कुमार और जोश ब्रार का था।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: थोड़ी देर में समाचार प्रस्तुत किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश सैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पलायम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता और भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर त्रिकोणीय राष्ट्र ए श्रृंखला अपने नाम की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे शामिल हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जल मार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्धपोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं और भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योग अभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है, इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में

0: योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
1: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई।
2: परीक्षा में शामिल 10,000 से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। परीक्षा केंद्रों पर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर और राज्य पुलिस की मदद से दो स्तरीय तलाशी व्यवस्था लागू की गई थी। सीसीटीवी निगरानी के लिए कंट्रोल और कमांड सेंटर, एनटीए मुख्यालय, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 34 केंद्रीय संस्थानों, सभी राज्यों तथा जिलाधिकारी कार्यालयों में स्थापित किए गए थे। एनटीए ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7,00,000 पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और कई रेलवे स्टेशनों पर उन्नत यात्री सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि देश भर में रेल अवसंरचना और सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
3: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, उसके साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर इस वर्ष दिसंबर तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ये समझौता अगले वर्ष फरवरी या मार्च तक लागू हो सकता है। आज मुंबई में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय कारोबारियों को यूरोप के लगभग पूरे बाजार तक बेहद कम या शून्य सीमा शुल्क पर पहुंच मिलेगी और इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मुंबई स्थित एक फर्म के साझेदारों से जुड़े कई परिसरों और अन्य स्थानों पर 62,42,00,000 रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी के संबंध में तलाश अभियान चलाया है। सीबीआई ने कहा कि मुंबई में इंडियन बैंक की एसएएम शाखा की शिकायत पर इस महीने की 18 तारीख को मामला दर्ज होने के बाद तलाश अभियान चलाया गया। एजेंसी ने फर्म और उसके साझेदारों, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। ये वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस

0: कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। अमेरिका और ईरान के बीच पहले ही 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम की बात कही गई है, लेकिन इसराइल इस सीधे समझौते का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसने लेबनान में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला पर हमले जारी रखे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्किन ने स्पष्ट किया है कि यदि बातचीत सफल होती है और प्रारंभिक समझौता लागू होता है तो कतर के पास ईरान की फ्रीज की गई 6 अरब डॉलर की धनराशि ईरान को वापस दिए जाएंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तरकश कल मॉरिशस के पोर्ट लुइस पहुंचा। ये जहाज दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपने परिचालन अभियान के तहत तैनात है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस तैनाती का उद्देश्य समुद्री सहयोग को मजबूत करना और भारत तथा मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। राजस्थान, बिहार, झारखंड और ओडिशा में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब बात खेलों की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने एफआईएच महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 311 रन पर ही सिमट गई। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 158 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सर्वाधिक 31 रन की पारी खेली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट UG पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पालियम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म रॉकस्टार से, आवाज़ें हर्षदीप कौर और साथियों की थी। गीत के बोल इरशाद कामिल के और संगीत ए आर रहमान का।

अभी आप विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम सुन रहे थे। एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। रात के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।

कुछ एक नाम ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय सिनेमा को नई पहचान दी। उनका नाम जुबां पे आते ही सुरों की एक मधुर धारा मन में बहने लगती है। ये केवल संगीतकार नहीं बल्कि भावनाओं को सुरों में ढालने वाले एक संवेदनशील कलाकार रहे। उनकी धुनों में प्रेम की कोमलता है, विरह की कसक है और जीवन की अनगिनत अनुभूतियों की गहराई है। खास तौर पर गजल आधारित संगीत को जो ऊंचाई प्रसिद्ध संगीतकार मदन मोहन ने दिलाई वो आज भी अद्वितीय है। जी हाँ श्रोताओं, आज कार्यक्रम एक ही कलाकार के कुछ सुरीली मनमोहक संगीत यात्रा, इन कलाकार की बातें होंगी और बहुत से गीत हम सुनेंगे। पहले एक प्यारा सा गीत आपको सुनवाते हैं।

दोस्तों, 25 जून 1924 को बगदाद में जन्मे मदन मोहन का बचपन भारत से दूर आरंभ हुआ। उनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल फिल्म जगत से जुड़े प्रतिष्ठित व्यक्तित्व थे, लेकिन बेटे का मार्ग उसके संगीत के प्रति लगाव और मेहनत ने रच दिया।

लाहौर और मुंबई में अपनी शिक्षा पूर्ण करते हुए मदन मोहन के भीतर संगीत के प्रति अद्भुत आकर्षण जागने लगा। बचपन से ही वे ऑल इंडिया रेडियो के कार्यक्रमों में भाग लेने लगे। हालांकि संगीत की उन्होंने औपचारिक शिक्षा नहीं ली, फिर भी सुरों की समझ मानो उन्हें प्राकृतिक रूप से मिली।

दोस्तों, युवावस्था में मदन मोहन साहब ने द्वितीय लेफ्टिनेंट के रूप में कुछ समय देश की सेवा भी की, लेकिन उनका मन तो बंदूक की आवाज़ों से अधिक संगीत के सुरों में बसता था। उन्होंने सेना की नौकरी छोड़ दी और संगीत में अपना जीवन समर्पित कर दिया। मुंबई में मदन मोहन लखनऊ के ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े। वहां उन्हें बेगम अख्तर, उस्ताद फैयाज खान, उस्ताद अली अकबर खान और तलत महमूद जैसे दिग्गज कलाकारों का सानिध्य भी मिला और संगीत की बारीकियां उन्होंने सीखी और संगीतकार के रूप में उन्हें एक नई दिशा मिली।

दोस्तों धीरे धीरे उन्हें फिल्मों में संगीत देने का अवसर मिलने लगा और उनकी धुनों ने सुनने वाले के दिलों पर अपना स्थान बनाना शुरू भी कर दिया। जो एक अनूठी बात मदन मोहन जी में थी वो थी उनकी गजलनुमा शैली। लता मंगेशकर की आवाज़ और मदन मोहन की धुनों का संगम

मानो अद्भुत संगीत का अनुभव देता। कुछ एक गीत आपके भी जहन में बसे होंगे दोस्तों। एक गीत जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं, यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धो लिए, वो चुप रहें तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम। बहुत ही ऐसे खूबसूरत गीत हैं मदन मोहन साहब के। मोहम्मद रफ़ी उनके बहुत प्रिय गायक रहे। फिल्म लैला मजनू में संगीत को रचते हुए उन्होंने कहा था कि मजनू की आवाज़ सिर्फ रफ़ी ही देंगे। सचमुच फिल्म का संगीत बेहद लोकप्रिय हुआ और रफ़ी साहब की आवाज़ ऋषि कपूर की पहचान बन गई।

संगीतकार मदन मोहन ने कभी भी लोकप्रियता के लिए समझौता नहीं किया। दोस्तों, उन्होंने हमेशा संगीत की गुणवत्ता को सर्वोच्च माना। मदन मोहन का संगीत उस दीपक की तरह है जिसकी लौ कभी नहीं बुझ सकती। वक्त बदला, संगीत की शैलियां बदलती गईं, लेकिन मदन मोहन के संगीतबद्ध गीत, उनकी लोकप्रियता और उन गीतों को दिल में बसाने वाले कभी नहीं बदले। वर्ष 1971 में फिल्म दस्तक के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ

दोस्तों, मदन मोहन की एक और खास बात कि वे गीत के शब्दों की आत्मा को समझते थे, इसलिए उनकी धुनें केवल कानों को नहीं बल्कि हृदय को भी छू जाती हैं। इनकी धुनों में दर्द भी था, उम्मीद भी, विरह भी और प्रेम भी। उनका संगीत किसी एक दौर का नहीं बल्कि हर दौर का संगीत है। उन्होंने एक ओर जहां पुराने गीतों के लिए धुनें रची, वहीं वीर जारा जैसी फिल्मों में संगीत देकर अपना जादू बिखेर दिया। गीतकार जावेद अख्तर के लिखे गीत एक बार फिर उन्होंने दुनिया को महसूस करा दिया कि सच्चा संगीत कभी पुराना नहीं होता। ये किसी भी कलाकार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उसके जाने के बाद भी वो गीत इतिहास में, लोगों के दिलों में और उनकी जुबां पर बसते रहें, नई पीढ़ी के दिलों पर भी वो राज करते रहें। मदन मोहन का संगीत केवल संगीत नहीं बल्कि उनकी भावनाओं को रचने का एक प्रयास है और आज वे हर दिल में बसते हैं अपनी सुमधुर और बेहतरीन धुनों के जरिए। 14 जुलाई 1975 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन छोड़ गए हमारे लिए अपनी खूबसूरत गीत।

तो दोस्तों ये था आज का कार्यक्रम एक ही कलाकार, जिसे हमने केंद्रित किया था मशहूर संगीतकार मदन मोहन जी पर। तो बस आज के सफर में इतना ही, इजाजत दीजिए, जया को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 10 बजे हैं, विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले करते हैं।

0: छाया गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वज्रतंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। अच्छा लगता है जब कोई अपना पुकारता है नाम लेकर, अपना ही नाम खास हो जाता है हमारे लिए। इंतजार करना पड़ता है उस मासूम लम्हे के लिए, पर वो लम्हा जब आता है जिंदगी में तो बीतता नहीं, वो ठहर जाता है, वो लम्हा बर्फ हो जाता है हमेशा के लिए। उस लम्हे की खुशबू महका देती है जिंदगी को। अभी तक हम उस लम्हे में जी रहे हैं जब पहली बार तुमने हमें नाम लेकर पुकारा था।

चंद लम्हों में सारी जिंदगी जी लेते हैं हम, जैसे खिड़की से बारिश देखते हैं जब, और बूंदों को महसूस करते हैं अपने चेहरे पर, जैसे समंदर के किनारे बैठकर जब बतियाते हैं लहरों से, जैसे किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर होता है एहसास कि कितना विराट है ये संसार और कितने छोटे हैं हम इन चंद लम्हों में, जैसे हम जी लेते हैं सारा जीवन।

0: तस्वीरों के रंग धुंधले पड़ जाते हैं, पर लम्हों के रंग कायम रहते हैं। काली सफेद तस्वीरों के रंग भले भूरे या धूसर पड़ जाएं, पर ये तस्वीरें जब आती हैं सामने तो छपाक से हम डुबकी लगा लेते हैं बीते हुए वक्त में। पुराने एल्बमों से इसीलिए तो प्यार होता है हम सबको। किसी फुर्सत के दिन जब खोलते हैं पुराना कोई एल्बम, तो बीते वक्त के गलियारों में खूब टहलना होता है। यूं आती है बीते हुए दिनों की याद, जैसे अभी कल ही तो जिया था हमने ये सब।
1: फिर आने लगा याद वही।

जो काम पुरानी तस्वीरें करती हैं वही काम करते हैं पुराने गाने। कोई एक गीत, कोई एक सुर, कोई एक पंक्ति हमें ले जाती है कई बरस पीछे। अंताक्षरी वाला वो दिन, वो तुमसे चुपके से नजरें मिलाना, वो फिल्मी गानों के बहाने सबके सामने अपनी बातें कहना। कितने शरारती थे ना हम हमेशा से, अब देखो ना ये बजा पुराना गाना और ये चल पड़े हम बीते वक्त की यादों के रास्ते पर।

लोग जमा करते हैं जाने कौन कौन सी महंगी चीजें, जेवर। लोग परदेश जाते हैं खूबसूरत जगहों पर। दुनिया चीजों के प्यार में मुब्तिला हो जाती है। जिंदगी वो है जिसमें चीजें नहीं जज्बात जमा किए जाएं। जिंदगी वो है जिसमें हो प्यार की रोशनी। जिंदगी वो है जिसमें दो दिल एक ही लय और ताल पर धड़कते हों, जिसमें हम एक दूसरे के लिए जीते हों।

तुम्हारे देख भर लेने से दुनिया खूबसूरत लगने लगती है हमें। जरा सोचो, एक निगाह, एक मुस्कान भी बदल सकती है किसी की दुनिया। प्यार हो जाना दुनिया की सबसे खूबसूरत घटना है, और प्यार में जीना सबसे खूबसूरत बना देता है जिंदगी को। आओ हम इस संगदिल दुनिया में प्यार के नर्म फूल खिलाएं।

0: खबर मिल।
1: फिल्म भूल न जाना, संगीतकार दान सिंह।
2: एक चमेली के मंडवे तले, एक चमेली के मंडवे।
1: फिल्म चा चा चा, संगीतकार इकबाल कुरैशी।
3: फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम।
1: फिल्म ये दिल किसको दूं, संगीतकार इकबाल कुरैशी।

0: फिल्म माई लव, संगीतकार दान सिंह। फिल्म ठाकुर जरनैल सिंह, संगीतकार गणेश।
1: तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार।
0: फिल्म सखी रॉबिन, संगीतकार रॉबिन बनर्जी। आज का छाया गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इसमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट, INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों

0: को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर मालिक गलीवफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघाची कर रहे हैं। यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने एफआईएच महिला प्रो लीग में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। लाल रिम सियामी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of maritime strength in the modern world, stressing that strong maritime capabilities are a deciding factor for countries' economic and strategic influence. He stated that India fully understands this reality and is preparing itself accordingly.
2: 2014 तक भारत करीब 700 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादों का निर्यात करता था। आज यह आंकड़ा बढ़कर करीब 40,000 करोड़ रुपए पहुंच रहा है। भारत में बने रक्षा उपकरण अब दुनिया के 80 से अधिक देशों तक पहुंच रहे हैं। 12 साल में जो प्रगति हुई है वो ये बताती है कि जब नीति स्पष्ट हो तो देश में कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है।
1: The Prime Minister commissioned 3 indigenously designed and built naval ships, an advanced stealth frigate INS Dunagiri, a large survey vessel INS Sanshodhak and an anti-submarine warfare shallow watercraft INS Agre at the Shyama Prasad Mukherjee port in Kolkata today. Mr. Modi noted that more than 200 MSMEs contributed to their construction, generating substantial employment and economic activity across the country. Highlighting recent achievements, the Prime Minister said more than 40 indigenously built warships and submarines have been inducted into the Indian Navy over the past few years. The National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026

राठौर जी, हेलो। हाँ, टॉक स्टूडियो से टाइम मिला लीजिएगा, 5:29, 8, 9, 10 और 11 सेकंड। PC1, वर्क स्टेशन 1।